हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की तीसरी तिथि यानी 24 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 और 29 सेकंड्स हुए हैं। अब हमारी आज की

ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अगले प्रसारण के लिए अब हम आपको लिए चलते हैं विविध भारती मुंबई, प्रतीक्षा के बस चंद लम्हे और हमारे साथ।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के

0: से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबुधाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन से बात की है और अमरीकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों के मुद्दे पर कितनी प्रगति हो पाती है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में हाल ही में वार्ता हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरला, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ आज बारिश की संभावना जताई है। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती।

आज का कथन। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना। स्वयं पर विश्वास सदैव रखना चाहिए। ये था आज का चिंतन। लीजिए सुनते हैं भक्ति रचनाएं वंदनवार में।

आप सुन रहे हैं विविध भारती झरोका में। लीजिए सुनिए आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस का भाग 229 6:35 से। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार, कलाकार एसएल कंडारा। इस कार्यक्रम का सातवां भाग आज आप सुनेंगे समय सुबह व शाम 6:45 से। सात बजे लेकर आएंगे भूले बिसरे गीत 7:30 से हम है राही प्यार के। आठ बजकर 15 से और दिन में 2 से त्रिवेणी आप सुनेंगे। चित्रलोक का समय होगा सुबह 8:30 से और रात्रि 8:15 से। 9:30 से आज के फनकार केंद्रित होगा अभिनेत्री करिश्मा कपूर पर। 10 से पिटारा में सेलुलॉइड के सितारे, गीतकार शायर और लेखक शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग आज आप सुनेंगे। समय 10 11 से लेकर आएंगे रंग तरंग और 12:05 से समय होगा यादों की महफिल का। एक बजे से वक्त होगा सुरीला सफर का। 2:30 से सदाबहार नगमे आप सुनेंगे।

चार बजे से पिटारा में आज के मेहमान चित्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत का भाग आप सुनेंगे। संपादन सहायक काजल भद्रागे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। वक्त हमने बताया चार बजे दिन में। पांच बजे से छाया गीत, 5:30 से तराने नए पुराने लेकर आएंगे।

6:35 से वक्त होगा भक्ति रचनाओं का संध्या रंजन में। 7 बजे से फौजी साथियों के लिए जयमाला लेकर हाजिर होंगे। सात बजकर 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग सुनिएगा। 8 बजे से हवा महल में सुनिएगा झलकी वो कैसी होगी, लेखक सुधा जौहरी, निर्देशक H.S. व्यास। 9 बजे से प्रोग्राम होगा आपके लिए। 9:30 से आज के फनकार और 10 बजे से छायागीत आप सुनेंगे। 10:30 से ढलती जाए रात। 'झरोखा' में अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

श्री राम के मन में ये सोच व्याप्त है कि राजा जनक समेत भरत सभी माताएं अयोध्या तथा जनकपुरवासी दुखी हैं और व्यर्थ ही चित्रकूट में वनवास के कष्ट भोग रहे हैं। उनकी चिंता सुनकर वशिष्ठ जी मिथिलापति से सबकी दुविधा समाप्त करने का आग्रह करते हैं। मुनिवर के वचन सुनकर जनक जी का ज्ञान और वैराग्य तिरोहित हो गए। वो प्रेम और मोह के वशीभूत हो गए। उन्हें लगा कि यहाँ आकर उन्होंने अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ ने तो पुत्र विरह में अपने प्राण त्याग दिए और वे उन्हें और गहन वन में भेजकर अपने प्राण भी नहीं त्याग सकेंगे। मिथिलापति को नहीं समझ में आता कि अब क्या किया जाए। अतः क्या किया जाए इसका निर्णय उन्होंने भरत पर छोड़ दिया। भरत ने कहा, सारा जगत जानता है कि सेवा धर्म अत्यंत कठिन है। स्वामी धर्म और स्वार्थ एक दूसरे के विरोधी हैं। बैर अंधा होता है और प्रेम में बुद्धि साथ छोड़ जाती है। अतः मुझसे न पूछकर श्री राम की रुचि का ध्यान रखते हुए वही करना चाहिए जो सर्वसम्मत तथा सबके लिए हितकारी हो।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओ, आइए जानते हैं आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा। श्रोताओ, 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, 7 बजे आप सुनेंगे राष्ट्रीय हिंदी समाचार, 7:05 पर आप सुन पाएंगे हरियाणवी गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग, 7:40 पर कार्यक्रम होगा सुप्रभात, 7 बजे आप सुन पाएंगे समाचार प्रभात। आठ बजकर 15 मिनट पर आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार, जिनका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। 8:30 पर विविध भारती से कार्यक्रम होगा। प्रातः 9:30 पर आप सुनेंगे भारत की गूंज, जिनका प्रसारण विविध भारती से होगा।

10 बजे आपका पसंदीदा कार्यक्रम नमस्ते हिसार, जिसका प्रसारण आकाशवाणी के हिसार केंद्र से होगा। 11 बजे आप सुन पाएंगे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम एनसीईआरटी एपिसोड 1308। 11:30 पर आप सुनेंगे रंग तरंग विविध भारती से। दोपहर 12 बजे आप सुनेंगे यादों की महफिल, जो विविध भारती से रिले किया जाएगा।

दोपहर 12 बजे आप सुनेंगे यादों की महफिल, जो विविध भारती से रिले किए जाएंगे। 1:05 पर हिंदी प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 1:10 पर आप सुनेंगे गीतमाला, जो विविध भारती से प्रसारित होंगे। दोपहर 2 बजे राष्ट्रीय हिंदी समाचार, जो कि विविध भारती से रिले किए जाएंगे।

2:30 पर आप सुन पाएंगे सदाबहार नगमे फिल्मी गीत, जिनका प्रसारण विविध भारती से होगा। 3 बजे कार्यक्रम होगा सखी सहेली। 4 बजे आप सुन पाएंगे आज के मेहमान विविध भारती से। 5 बजे सदाबहार गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा ओल्ड इज गोल्ड, जिसका प्रसारण आकाशवाणी के हिसार केंद्र से होगा।

6 बजे प्रसारित होंगे हिंदी समाचार। 6:05 पर कार्यक्रम रूपरेखा हो रहेगी। 6:10 पर प्रादेशिक समाचार होंगे, जिनका प्रसारण आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से होगा। पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत। 6:30 पर युवा वर्ग के लिए कार्यक्रम होगा युवा उमंग, जिसका प्रसारण आकाशवाणी के हिसार केंद्र से होगा। 7 बजे कार्यक्रम होगा खेती किसाना से ती, जिसमें आप खरीफ फसलों के लिए उत्तम बीजों के चयन के बारे में जान पाएंगे। 7:30 पर हरियाणवी लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा म्हारे गांव। 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम। 8:30 पर कार्यक्रम होगा हरियाणा के गलियारे से। पर राष्ट्रीय हिंदी समाचार होंगे, जो विविध भारती से रिले किए जाएंगे। 9 बजे आप सुनेंगे विविध भारती से आपके लिए चित्रलोक। 10:45 पर कार्यक्रम होगा व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने, जिसका प्रसारण आकाशवाणी के हिसार केंद्र से

ग्यारह बजकर 5 मिनट पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय हिंदी समाचार। श्रोताओ, 5 बजे आप सुनेंगे थारी म्हारी पसंद।

श्रोताओ, ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। आइए जानते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा। 6:55 पर आप सुन पाएंगे संस्कृत समाचार। 7:00 प्रातः आप राष्ट्रीय हिंदी समाचार सुन पाएंगे। 7:05 पर आप सुन पाएंगे हरियाणवी गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग। 7:40 पर आप कल सुन पाएंगे कार्यक्रम सुप्रभात। पर आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार। 8:30 पर प्रातः आप सुन पाएंगे विविध भारती से कार्यक्रम। प्रातः 9:30 पर आप सुनेंगे भारत की गूंज। 10:00 प्रातः आप सुन पाएंगे आपका पसंदीदा कार्यक्रम नमस्ते हिसार। 6:20 पर आप इश वंदना पर आधारित कार्यक्रम भक्ति संगीत सुन पाएंगे। युवा उमंग आप सुन सकते हैं 6:30 पर। किसान वाणी के तहत फोन इन कार्यक्रम सुनेंगे 7:00। 7:30 पर सुन पाएंगे आप हमारे गांव। व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने कार्यक्रम आप सुनेंगे कल रात 8:00। ईमेल्स पर आधारित कार्यक्रम आप सुन पाएंगे कल रात।

रात्रि 10 बजे श्रोताओं, ये थे आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा। अभी चंद लम्हों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार। FM बैंड 102.3 आकाश मेगाहर्ज आकाशवाणी के हिसार केंद्र से आप सुन पा रहे हैं आज के कार्यक्रम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर जोर दिया।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की।

0: के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद किया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। सरकार ने कहा है कि E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में तकनीकी खराबी की कोई भी व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। अमेरिका के ह्यूस्टन में हुए मुकाबले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी हो गए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है, FM बैंड 102.3 MHz पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम लोकरंग।
2: ओपी मैयर का संगीत।

बहुत पुराने टाइम की बानगी रागनी गीत संगीत किस्सा ई रांझा। अपने टाइम पे ये गीत बड़े मशहूर हुए। गुलाब सिंह और कुसुम तंवर की गीत रागनी बहुत अच्छे तरीके से सुनी जाए। फिर आज के लोक रंग कार्यक्रम के कलाकार हैं गुलाब सिंह और कुसुम तंवर, कार्यक्रम की पहली पेशकश।

सोच कुछ हीरे के बारे में। हाय सोच कुछ।

ओ सादक पीर बड़ा प्रोपकारी, तन धाम ऐसे सब दुनियादारी।

ओ बाजरा सतरे नाम का ढोल रया तू सत

ये सुनी भाइयों, आज आपने किस्सा ई रांझा में थे गीत रागनी कार्यक्रम हरियाणवी लोक रंग में। हमारा एक प्रयास है कि किस्से कहानी गीत रागनी और वानगी आपके लिए लेके आवे ताकि आपका बहुत बढ़िया मनोरंजन हो जाए। इसी के साथ है आज का हरियाणवी लोक रंग कार्यक्रम समाप्त हुआ। सारे बन भैया ने राम राम।

0: रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा। सुनो ना,
1: हाँ
0: सुनो ना,
1: हाँ
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: हर सुबह एक मौका है
3: खुद को कल से बेहतर बनाने का।
2: कोई है जो आपको एहसास दिलाता है
3: कि आप में दम है कुछ कर दिखाने का।
2: कीजिए अपने दिन की बेहतरीन शुरुआत
3: आकाशवाणी हिसार के साथ।
4: राम सियाराम, सियाराम जय जय राम।
2: सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात
3: रोज सुबह 7:40 पर
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
0: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
0: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 870-001-4242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 870-001-4242। सुनो ना,
1: हाँ
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
0: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
0: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 870-001-4242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 870-001-4242। सुनो ना,
1: हाँ
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
5: श्रोताओं, इन संदेशों से पहले आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंग। FM बैंड 102.3 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हिसार के प्रसारण। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुप्रभात।

एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का यह हिसार केंद्र है। आप सुन रहे हैं आपकी रेडियो साथी सुषमा डूडी के साथ कार्यक्रम सुप्रभात। श्रोताओं, चलिए जानते हैं आज का पंचांग।

आज 24 जून 2026 बुधवार ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। आज सूर्योदय हुआ प्रातः 5:25 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 7:28। दोस्तों, अब जानते हैं आज के मौसम का मिजाज। 24 जून को मौसम सामान्यतः गर्म तथा आंशिक रूप से बादल युक्त रहने का अनुमान है। कहीं कहीं हल्की वर्षा होने की संभावना है। दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। आसमान मुख्यतः आंशिक रूप से मेघाच्छादित रहेगा।

दोस्तों आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के हिसार केंद्र से। चलिए जानते हैं आज का सुविचार। संगत का असर इत्र की दुकान जैसा और कोयले की खान जैसा होता है। इत्र की दुकान से खुशबू और कोयले की खान से कालापन अपने आप साथ आ जाता है। कहने का मतलब है, मनुष्य का चरित्र और विचार उसकी संगति से बनते हैं। यदि हम अच्छे, सकारात्मक और संस्कारी लोगों के साथ रहते हैं तो उनके गुण हमारे जीवन में भी आने लगते हैं। वहीं बुरी संगति धीरे धीरे हमारी सोच, व्यवहार और भविष्य को प्रभावित कर देती है। इसलिए मित्रों का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि संगति ही व्यक्ति को ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकती है और पतन की ओर भी ले जा सकती है। गलत संगत की पहचान यह है कि वह पहले आदत बनती है, फिर सोच बदलती है और अंत में पूरा जीवन बदल देती है। तो श्रोताओं, याद रखिए, जीवन में सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि अच्छी संगति से भी मिलती है। इसलिए ऐसे लोगों का साथ चुनिए जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, न कि भटकाव की ओर ले जाए।

आइए श्रोताओं, अब करते हैं रामचरितमानस के पद का वाचन। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा, विप्रवन सुरभवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। राजाओं ने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे और ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जह लगी कहे पुराण, श्रुति एक एक सब जाग, बार सहस्त्र सहस्त्र नर्प किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सभी यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया।

0: आई श्रोता, अब लेते हैं हरियाणवी भाषा का कठिन शब्द। श्रोता, हरियाणवी भाषा के शब्द के अपने भीतर गांव की मिट्टी की खुशबू और लोक
1: की सादगी समेटे हुए होते हैं। ऐसा ही एक शब्द है बुरकणा। बुरकणा का अर्थ है किसी चीज को

हल्के हल्के छिड़कना, बिखेरना या फैलाना, यह सब पानी या किसी बारीक चीज को थोड़ी थोड़ी मात्रा में चारों ओर फैलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ग्रामीण जीवन में इस शब्द का विशेष महत्व है। किसान जब खेत में बीज फैलाता है तो कहा जाता है कि यह बीज बुरक रहा है। इसी तरह रसोई में जब खाने पर मसाला, नमक या घी हल्के से डाला जाता है, तब भी बुरकना शब्द का प्रयोग किया जाता है।

कार्यक्रम सुप्रभात। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हिसार के प्रसारण। लीजिए श्रोताओं, अब आपको लिए चलते हैं समाचार प्रभात के लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र प्रतीक्षा के बस चंद लम्हे और हमारे साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। कहा, पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने

0: परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
1: रास लफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
1: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार।

0: कक्ष से जया भारती।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मानसून के कमजोर रहने की आशंका है।
3: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं ऐसे 76 जिले हैं, और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
1: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है। खबर को शीर्षक दिया है दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून। जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात

तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हो, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से

0: मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लापान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। कहा, पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

आज की त्रिवेणी में पड़ोसियों की चर्चा। वर्तमान समय में अधिकांश लोग अपने कामकाज और नौकरियों के कारण प्रायः एकल परिवारों में रहते हैं। यहाँ पति पत्नी और एक या दो बच्चों का परिवार होता है। सगे संबंधी दूसरे शहरों या गांवों में छूट जाते हैं। ऐसे में पड़ोसी ही सुख दुख के साथी होते हैं। वैसे भी ये सच है कि किसी भी बड़ी मुसीबत में पड़ोसी ही मदद के लिए सबसे पहले काम आते हैं। पड़ोसियों से हमें हमेशा मृदु व्यवहार और सहयोग का भाव बनाकर रखना चाहिए। अगर पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार है तो जीवन की मुसीबतें बहुत आसान हो जाती हैं।

हम में से बहुत सारे लोग पढ़ाई लिखाई करने, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने अथवा दूसरे क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए किराए के मकान लेकर रहते हैं। ऐसे लोगों को पड़ोस में बहुत सजग रहना चाहिए। उन्हें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वे यहाँ केवल अपना करियर बनाने के लिए आए हैं। उन्हें रास्ते से भटकाने के लिए पड़ोस में बहुत से आकर्षण मौजूद होते हैं।

ऐसा नहीं है कि पड़ोसी केवल मुसीबत में ही काम आते हैं, वे हमारे किसी पार्टी या शादी समारोह में भी बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। कई बार दोनों की छतों का उपयोग करके हम छोटी मोटी पार्टी के लिए एक अच्छा स्पेस निकाल सकते हैं। अच्छे पड़ोसी अपनी छत का उपयोग और कई रोचक कार्यों के लिए कर सकते हैं, जैसे

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

हाफ गर्लफ्रेंड इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे ऐश किंग की आवाज में, और आप सुन रहे हैं चित्रलोक इस वक्त विविध भारती से। अगला गीत आपको सुनवाते हैं।

राहत फतेह अली खान और सुजैन डी मेलो की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे वीर फिल्म से। गुलजार ने इसे लिखा, संगीत साजिद वाजिद का। वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: अरिजीत सिंह को आप सुन रहे थे। इस गीत में राबता फिल्म का नाम था, अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा और प्रीतम का संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

टू स्टेट्स, ये था फिल्म का नाम। अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीपदा की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। शंकर एहसान लॉय का संगीत और अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा।

0: जब भी मैट, इस फिल्म से गीत आप सुन रहे थे मोहित चौहान की आवाज में, इरशाद कामिल ने इसे लिखा, प्रीतम का संगीत।
1: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक विविध भारती से।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में बाबूलाल चतुर्वेदी का यहाँ प्रोग्राम चार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने भी फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गाते नहीं, एक लाइन सुनाया जाता है, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पूरे पकाए दूर के। मैं उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पूरे पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने कूदे प्याली में।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: आज के फनकार।

करिश्मा कपूर फिल्म इंडस्ट्री के एक बेहद सम्मानित कपूर परिवार की सदस्य हैं। परदादा पृथ्वीराज कपूर, दादा राज कपूर, पिता रणधीर कपूर।

करिश्मा कपूर परिवार की ऐसी पहली महिला सदस्य हैं जिन्होंने फिल्मों में प्रवेश किया। हालांकि इससे पहले उनकी मां बबीता और चाची नीतू सिंह भी फिल्मों से जुड़ी थीं, लेकिन कपूर परिवार से जुड़ने के बाद उन्होंने फिल्मों से नाता तोड़ लिया। और जब करिश्मा ने फिल्मों में काम करने की बात अपने परिवार के सामने रखी तो उनकी ये बात मानने के लिए कोई राजी नहीं हुआ, और तब उनका साथ दिया उनकी माँ ने, और इस तरह करिश्मा आ गई फिल्मों में। तब उनकी पहली फिल्म आई प्रेम कैदी।

करिश्मा को अपने फिल्मी करियर को संवारने में उनकी माँ बबीता ने हर कदम पर उनका साथ दिया और करिश्मा ने भी अपनी मेहनत और लगन से साबित कर दिया कि फिल्मों में आने का उनका फैसला गलत नहीं था।

करिश्मा कपूर के शुरुआती फिल्मी करियर में आने वाली ज्यादातर फिल्में गोविंदा के साथ आईं और बाकी की फिल्मों में भी करिश्मा के डांसेस और खूबसूरती का करिश्मा उनकी एक्टिंग पर हावी रहा।

करिश्मा कपूर एक संवेदनशील अभिनेत्री हैं, ये बात बताने का मौका करिश्मा को नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो खुद भी कहीं ना कहीं ऐसे मौके की तलाश में थी और आखिर ये मौका उन्हें दिया श्याम बेनेगल ने। फिल्म थी जुबैदा।

0: अपने अभिनय का एक और रूप उन्होंने दिखाया शाहरुख और माधुरी के साथ। फिल्म थी दिल तो पागल है।
1: मुझको हुई ना खबर।

करिश्मा कपूर की कुछ और चर्चित फिल्में थीं अनाड़ी, खुद्दार, राजा बाबू, कुली नंबर वन, बीवी नंबर वन, शक्ति, राजा हिंदुस्तानी, साजन चले ससुराल। आइए सुने कुछ सुरीली झलकें।

करिश्मा के करिश्माई हुस्न और जादुई अदाकारी का दीवाना तो पूरा जमाना है, और शायद ये बात वो भी अच्छी तरह जानती हैं, इसीलिए फिल्मों से नाता तोड़ना वो भी नहीं चाहेंगे।

0: रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के लिए आलेख और स्वर अमरकांत का था। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती FM बैंड 102.3 MHz पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हिसार। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नमस्ते हिसार।
1: बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
2: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
1: क्या ये जांच उपलब्ध है?
3: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
4: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
3: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
4: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
5: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

हैं श्रोताओं, इस खूबसूरत सुबह में आप सभी का दिल से स्वागत है आपकी अपनी रेडियो दोस्त नीलम के साथ। श्रोताओं, सुबह के 10 बज रहे हैं और समय है आपके मनपसंद कार्यक्रम नमस्ते हिसार का। श्रोताओं, चलिए जानते हैं हिसार और आसपास की खबरों के बारे में।

हिसार प्रदेश में मौसम लगातार परिवर्तनशील बना हुआ है। बुधवार से सक्रिय होने वाले नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 24 जून को हरियाणा NCR में बूंदाबांदी तथा तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार जुलाई के पहले 10 दिनों के दौरान अच्छी बारिश के संकेत बन रहे हैं।

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए जिले में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस बार जिले के 37 परीक्षा केंद्रों पर कुल 22,429 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा का आयोजन 4 और 5 जुलाई को 3 स्तरों में किया जाएगा। डीईओ राम रतन ने बताया कि परीक्षा के निष्पक्ष एवं सुचारू संचालन के लिए जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहे हैं।

पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली के दूसरे चरण की शुरुआत के साथ अब रजिस्ट्री और इंतकाल की प्रक्रिया आपस में जुड़ गई है। रजिस्ट्री के बाद अलग से इंतकाल करने के लिए आवेदन नहीं करना होगा। उपायुक्त महेंद्र पाल ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित इंतकालों का आगामी 15 दिनों में निपटारा किया जाए। बातों का सिलसिला आपके साथ यूं ही जारी रहेगा। सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, ज्ञान वो दीपक है जो जितना जलता है उतना ही उजाला फैलाता है, और इसी उजाले को थोड़ा और बढ़ाने के लिए अब समय हो चला है आपसे सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न पूछने का, और जिनका जवाब आप हमें हमारे व्हाट्सएप पर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9729253272। नंबर एक बार फिर से नोट कर ले, 9792253272। और जो श्रोता हमें दोनों सवालों के जवाब सबसे पहले सही भेजेंगे, उनकी पसंद का गाना यहाँ सुनवाया जाएगा उनके नाम के साथ।

तो जानिए आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है कौन सा है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? और आज का दूसरा प्रश्न है, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ध्यान से सुनिएगा दूसरा प्रश्न भी, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके सही जवाबों का। तब तक आप सुनिएगा ये गाना।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
5: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में एचआईवी और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
4: क्या ये जांच उपलब्ध है?
6: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में एचआईवी और सिफिलिस

एफएमएन 102.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। अभी समय सुन रहे हैं हम नमस्ते हिसार। श्रोताओं, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे वीर योद्धा से जिनका जीवन साहस, त्याग और अदम्य देशभक्ति की प्रेरक गाथा है। नाइक दीपचंद भारतीय सेना के वीर सैनिक और कारगिल युद्ध के योद्धा हैं। वे 1999 के कारगिल युद्ध में शामिल हुए थे और अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। नाइक दीपचंद, इनका जन्म हरियाणा के हिसार जिले के पावड़ा गांव में 5 अप्रैल 1975 को हुआ था। बचपन में वे अपने दादा से 1965 और 1971 के युद्धों की कहानियां सुना करते थे। इन्हीं कहानियों से प्रेरित होकर उन्होंने सेना में जाने का निश्चय किया और सन 1994 में भारतीय सेना में भर्ती हुए। नाइक दीपचंद की पहली पोस्टिंग फिरोजपुर में हुई। सन 1998 में इन्हें श्रीनगर भेजा गया। 1999 के कारगिल युद्ध में इन्होंने टोलोलिंग की महत्वपूर्ण लड़ाई में भाग लिया। इनके बारे में हम और भी जानकारी देते चलेंगे। अभी सुनते हैं प्यारा सा गीत।

नाइक दीपचंद जी आर्टिलरी रेजिमेंट ने युद्ध के दौरान लगभग 10,000 गोले दागे और कई बार अपनी तोपों की स्थिति बदलकर दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन पराक्रम के दौरान एक विस्फोट में नाइक दीपचंद जी ने अपने दोनों पैर और एक हाथ खो दिया। इसके बावजूद इनका हौसला कभी नहीं टूटा। सेना से सेवानिवृत्ति के बाद दीपचंद जी ने आदर्श सैनिक फाउंडेशन के माध्यम से शहीदों और घायल सैनिकों के परिवारों की सहायता की और फाउंडेशन के जरिए ही शहीदों का सम्मान और युवाओं में देशभक्ति जगाने का काम किया। 2026 में इन्होंने पूर्व सैनिकों के कल्याण और कारगिल विजय दिवस कार्यक्रमों के संबंध में महाराष्ट्र के राज्यपाल से भी मुलाकात की। नाइक दीपचंद जी का जीवन हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी साहस, दृढ़ निश्चय और देश प्रेम के बल पर आगे बढ़ा जा सकता है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का हिसार केंद्र एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर, और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते हिसार।

तो श्रोताओं, आपको इंतजार होगा आज के प्रश्नों के जवाब का। और हमारा पहला सवाल था, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? और इसका सही जवाब है चंद्रमा। और हमारा दूसरा सवाल था, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? और इसका सही जवाब है अभिनव बिंद्रा। तो श्रोताओं, अब जानते हैं उन श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें इन दोनों प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। और वो हैं हमारे भोंडा होशनाक, फतेहाबाद से परमानंद, नंदिनी, आदर्श, शुभम। ये वो श्रोता हैं जिन्होंने हमें सबसे पहले इन सवालों के जवाब दिए हैं। और दूसरे श्रोताओं जिन्होंने सही जवाब दिया है वो हैं मालियान सरधना, मेरठ से अनिल जैन, संयम मुस्कान, मास्टर जिव्यम जैन। गांव गोंदर करनाल से किरणपाल, बुम्बक, तेजपाल, कृष्णपाल, सुमन, पूनम, सोनिया, रोशनी देवी, भगत सिंह, बुम्बक। और वो श्रोता जिन्होंने हमें सबसे पहले जवाब दिया, आइए सुनते हैं उनकी पसंद का ये गाना।

FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के हिसार केंद्र से आप सुन रहे हैं आपके रेडी दोस्त इंद्रजीत सिंह को। तो श्रोताओं, आपको मालूम ही है कि ये समय होता है रोचक जानकारियों का, जो कि हमारे ज्ञान वर्धन में सहायक होती हैं। तो ऐसी ही रोचक जानकारियों में पहली जानकारी सुनकर आप हैरान होने वाले हैं। क्या आपको पता है कि मनुष्य का दिमाग दिन के मुकाबले रात में सोते समय ज्यादा सक्रिय होता है? और इसी के साथ दूसरी जानकारी में आपको बता दें कि एक सामान्य व्यक्ति की छींक लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाहर निकलती है। और अब तीसरी जानकारी, शारीरिक बनावट के कारण सुअरों के लिए आकाश की ओर ऊपर देखना बिल्कुल असंभव है। और इसी के साथ आपके ज्ञानवर्धन में चौथी जानकारी हम लेकर आए हैं। रोम दुनिया का वो शहर है जिसकी आबादी ने सबसे पहले 10 लाख का आंकड़ा पार किया था।

और अब पांचवी जानकारी आपको बता दें कि टाइटैनिक की चिमनियां इतनी बड़ी थीं कि इनमें इनमें से दो ट्रेनें आसानी से गुजर सकती थीं।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते हिसार। रोचक जानकारियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो की चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1467 मीटर है। यह पंचकुला की मोरनी की पहाड़ियों में स्थित है। दूसरी जानकारी, टाइपराइटर सबसे लंबा शब्द है जो कि कीबोर्ड पर एक ही लाइन पर टाइप होता है। आगे चलते हैं। डॉल्फिन सबसे बड़ा समुद्री स्तनधारी जीव है, यह कोई मछली नहीं है। अगली जानकारी, वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यह जम्मू एंड कश्मीर के बांदीपुर जिले में स्थित है। अगली जानकारी, औसतन मानव एक दिन में लगभग 150 से 200 बाल गिराता है।

0: नया बेहतर है क्योंकि तुम
1: ही हो, किंतु पुराना बेहतरीन
0: नया श्रेष्ठ है
2: केसरिया तेरा,
1: किंतु पुराना श्रेष्ठता
0: नया उत्कृष्ट है
2: तेरी गलियां,
1: किंतु पुराना अनमोल
0: नया अनूठा है,
1: किंतु पुराना अनुपम।
0: सुनिए 80 और 90 के दशक के बेहतरीन नगमे
1: कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड में
0: हर बुधवार शाम 5 बजे
1: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते हिसार और अब रोचक जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि हम सभी दिन रात जिस पृथ्वी पर रहते हैं वह अपनी धुरी पर लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। इतना ही नहीं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी लगभग 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चक्कर लगा रही है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इतनी तेज गति के बावजूद भी हमें इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। एक और दिलचस्प बात आपको बताते चलें कि अगर आप कभी रात के समय आसमान में टिमटिमाते तारों को देखें तो याद रखिए कि उनमें से कई तारों की रोशनी हम तक पहुंचने में वर्षों लगाती है। यानी हो सकता है कि जिस तारे को आप आज देख रहे हों उसकी रोशनी कई साल पहले वहां से चली गई हो। प्रकृति और ब्रह्मांड ऐसे ही अनगिनत रहस्यों से भरे हुए हैं। जितना हम इनके बारे में जानते हैं उतना ही हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है और नई जिज्ञासाएं पैदा हो जाती हैं। तो श्रोताओं, इसी रोचक जानकारी के साथ अब बढ़ते हैं संगीत की दुनिया की ओर। पेश है एक खूबसूरत गीत जो आपके मन को भाने के लिए आतुर है।

एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का हिसार केंद्र। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम एपिसोड नंबर 1313।

जोहार। सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, नीलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीन बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से ही नहीं लेकिन व्यवहार से भी दिया जाता है। इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से हमारा आभार। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, महताब जाटव, मिराज जाटव और अल्ताफ जाटव। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू। जेल रोड कानपुर से सरफुद्दीन फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम कुटरिया। भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल। तो श्रोताओ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि हम हर बार कहते हैं, इस बार भी कहेंगे कि जुड़े रहिए आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। और आइए अब चलते हैं आज की श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओ, जहां तक गुफाओं की बात है, लगभग सभी अजंता और एलोरा की गुफाओं से परिचित हैं, लेकिन उमंग कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य है उन जानकारियों को उपलब्ध कराना जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जी, तो श्रोताओं, कल हमने बात की थी भीम बैठका की गुफाओं के बारे में। आज हम बात करेंगे कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। कुटुम्बसर की गुफाओं को भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहां स्थित हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं स्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर। ये गुफाएं भूमि से लगभग 35 से 40 मीटर नीचे हैं। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं, लेकिन श्रोताओं, जब भी हम ऐसे स्थानों की बात करते हैं तो ये जिज्ञासा जरूर मन में आती है कि इनकी खोज कैसे हुई। तो आपको बता दें कि कुटुम्बसर गुफा का जनजातीय नाम गोपनसर था। सन 1951 की बात है, कुछ स्थानीय चरवाहे एक साही का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां ढेर सारी झाड़ियां थी, पत्थर भी थे। जब उन्होंने झाड़ियों को थोड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार है। जी, चरवाहे उस गुफा की बनावट देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां चट्टानों के आकार विचित्र थे। वे अद्भुत आकार के थे, जैसे किसी ने उन्हें तराश कर बनाया हो। तो आइए जानते हैं कि उन पत्थरों को तराशने वाला कौन था। श्रोताओं, यही तो खास और बड़ी अनोखी बात है कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। जब विशेषज्ञ यहाँ पर आए तो उन्होंने पता लगाया कि चट्टानों को तराशने वाली प्रकृति ही थी। यहाँ पानी हमेशा टपकता रहता है। पानी के लाखों वर्षों से टपकते रहने के कारण इन चट्टानों को आकार मिला। यहाँ की चट्टाने चूना पत्थर से बनी है। श्रोताओं, इन गुफाओं में कुछ आकृतियां तो ऐसी है जो किसी पशु, मुख्य रूप से हाथी, बाघ, विशाल मानव आकृति और शिवलिंग की तरह भी दिखाई देती हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, कैसे इन आकृतियों को प्रकृति ने लाखों वर्षों से पानी की बूंदें टपकाकर बनाया। अद्भुत है ना। जी, किसी ने लिखा है कि यदि प्रकृति को शिल्पकार के रूप में देखना है तो कुटुम्बसर की गुफाओं में जरूर जाइए। इन गुफाओं के ऊपर भूमि में कई भूमिगत जल के झरने हैं जहां से निरंतर पानी की बूंदें गिरती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में अनेक दुर्लभ जीवों के जीवाश्म भी ढूंढ रहे हैं। एक बात और आपको बता दे श्रोताओं कि इन गुफाओं के अंदर हमेशा घुप अंधेरा रहता है। वहां जाने के लिए पर्यटक गाइड्स और शक्तिशाली बैटरियों वाले लैंप्स लेकर ही जाते हैं। अंदर पानी बहता रहता है, लेकिन एक बड़ी रोचक बात है इन गुफाओं की। आपको बताएं क्या है वो? वो ये कि यहां के पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं वे अंधी होती हैं, देख नहीं पाती। यहाँ के अन्य जलज प्राणी भी देख नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है श्रोताओं कि भला ऐसा क्यों है? ना ये बड़ी अजीब बात। जी हाँ श्रोताओं, वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ हमेशा अंधकार रहता है। इससे संभवतः मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो हैं, लेकिन उनमें देखने की क्षमता का विकास नहीं हुआ, या फिर धीरे धीरे देखने की क्षमता समाप्त हो गई। एक सिद्धांत यह भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखें पूर्ण विकसित नहीं हुई, लेकिन दूसरी इंद्रियां अधिक विकसित हो गईं। मछलियां पानी में कंपन, स्पर्श और रासायनिक संकेतों जैसे गंध इत्यादि के माध्यम से रास्ता और भोजन तुरंत पहचान लेती हैं। इसलिए श्रोताओं, कुटुम्बसर की मछलियों को दुनिया भर में ब्लाइंड केव फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, इन गुफाओं की एक और बड़ी

0: खास बात है, यहाँ के कुछ भागों में यदि फुसफुसा करके भी कुछ कहा जाए तो बड़ी दूर तक ये आवाज सुनाई पड़ती है। श्रोताओं, यहाँ पर कार्यकर्ता इको या गूंज का सिद्धांत। श्रोताओं, ये कहा जा सकता है कि ये गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के जंतु विकासवाद और भूविज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत की एक और रहस्यपूर्ण और अनोखी गुफा कुटुम्बसर के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? आप हमें हमारे IVRS नंबर 8804405559 पर या ईमेल पर यानी audio@ceet.nic.in पर इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज के हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम लीव्स ऑन द ट्री आर फॉलिंग। श्रोताओं, अंग्रेजी का यह सुंदर गीत पतझड़ और वसंत के मौसमों के बीच की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है और विशेषकर संदेश देता है कि हमें प्रकृति का अवलोकन करके उनके सौंदर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करके हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज।
1: चिल्ड्रन, हैव यू एवर सीन द लीव्स ग्रोइंग इन द ट्री? द न्यू टेंडर लीव्स स्पर्टिंग आउट फ्रॉम द ब्रांचेस like the flowers blossoming? Yes, we want to see them as the flowers blossom and leaves grow. But we never see them growing closely. Here is a song which makes you feel that you notice the growing of leaves and blossoming of flowers. Come on, let's sing the song to know and notice. But before we sing it, let's recite the song. Repeat after me, all right?
2: Yes!
1: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
2: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
1: The leaves on the trees are turning green. Grow, grow, grow.
2: The leaves on the trees are turning green. Grow, grow, grow.
1: Very nice. The flowers on the trees are beautiful. Beautiful, beautiful.
2: The flowers on the trees are beautiful. Beautiful. Beautiful.
1: The flowers on the trees are beautiful. Busy, busy bees.
2: The flowers on the trees are beautiful. Busy, busy bees.
1: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
2: The leaves on the trees are falling down. Falling down, falling down.
1: The leaves on the trees are falling down. Yellow, red and brown.
2: The leaves on the trees are falling down. Yellow, red and brown.
1: Yes, and now the leaves on the trees have fallen down. Fallen down. Fallen down.

0: इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
2: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को शत प्रतिशत चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
3: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
2: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
3: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
1: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपने कर्मस्थली के रूप में चुना।
2: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
1: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्म जगती तलतासु पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
2: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति

सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा,

0: तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
1: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
0: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
1: से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
2: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
1: रांची आकर वे कुछ समय के लिए सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
2: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
3: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
0: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
3: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
0: जी मैं प्रस्तुत हूं।
3: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 2 पदों की इसी समय सप्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
0: जी अवश्य।
1: फादर कामिल बुलके ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी। इस यूरोपीय श्वेत वर्णीय ईसाई पुरोहित को डॉक्टर वर्मा ने प्रारंभ में नौसिखिया समझा था, लेकिन जब उन्होंने व्याख्या पढ़ी तो
3: ओह अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
0: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा। जी।
1: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुलके ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
2: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुलके चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी

0: अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
1: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुल्के ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
2: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति?
3: आइए आइए फादर बुल्के। मुझे बताया गया है कि राम कथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
2: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
3: जी जी,
2: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
3: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
2: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही राम कथा की उत्पत्ति और विकास है।
3: जी,
2: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं राम कथा

0: फारसी भाषाओं में भी पीएचडी स्तर तक पढ़ाई होनी शुरू हो गई।
1: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
2: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं है, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
0: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
1: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कम्बन द्वारा तमिल में रचित कम्ब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुल्के को जानने लगी।
0: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
2: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
0: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
1: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
0: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुल्के बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। उन्होंने लिखा था,
2: जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है ईसा मसीह, हिंदी और तुलसीदास ये वास्तव में मेरी आध्यात्मिक साधना के 3 प्रमुख घटक हैं और मेरे लिए इन 3 तत्वों में कोई विरोध नहीं है बल्कि गहरा संबंध है। मैं ईसा मसीह का परम भक्त हूं, हिंदी मेरा अनुराग है और गोस्वामी तुलसीदास मेरी प्रेरणा।
0: कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जब लोग उन्हें फादर कहते तो वे किंचित संकोच से बोल उठते,
2: फादर अंग्रेजी शब्द है, यदि मुझे कामिल बाबा कहो तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
0: 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
1: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि

0: रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
1: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
2: डॉक्टर कामिल बुल्के, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम एपिसोड नंबर 1313। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब अगले प्रसारण के लिए आपको लिए चलते हैं विविध भारती मुंबई। प्रतीक्षा के बस चंद पल और हमारे साथ।

शेर पे मुकर्रर की आवाज आई तो फिर शेर दोबारा पढ़ दिया गया। उसके बाद फिर मुकर्रर की आवाज आई तो गाने वाले ने फिर दोबारा शेर पढ़ा। उसके बाद फिर मुकर्रर की आवाज आई तो गाने वाले ने तीसरी दफा फिर पढ़ा, लेकिन फिर मुकर्रर की आवाज आई तो गाने वाला बोलता है कि साहब मुझे अगला शेर भी पढ़ने दीजिए अभी। तो ऑडियंस में से आवाज आती है कि जब तक आप इसको सुर में नहीं पढ़ेंगे हम मुकर्रर ही बोलते रहेंगे।

0: हम सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में इस नगमे को, जिसे खयाम ने संगीतबद्ध किया और मधुकर राजस्थानी ने जिसे लिखा है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा

0: कि आप तो बादशाह व्यंग बोल लेते हैं, ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक बेटी की यादों में उसके पिता
3: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
2: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
3: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
3: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
2: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं अगला नगमा सुधा मल्होत्रा की आवाज में। पीरजादा सफक लखनवी ने इसे लिखा है और जगजीत सिंह ने इस नगमे को संगीतबद्ध किया है।

हम सुन रहे थे नाम फिल्म का यह गीत पंकज उदास और साथियों की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के संगीत से जुड़ा हुआ यह गीत। आइए सुनते हैं अगला नगमा, यानी आज के कार्यक्रम रंग तरंग का यह आखिरी गीत है जिसे हमने चुना है वेलवेट वॉइस हरिहरन एल्बम से, जिसे गाया और संगीतबद्ध किया है हरिहरन ने और इसे लिखा है मुशीर ने। चलिए सुनते हैं ये नगमा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, हम थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सह अध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को वहां से निकालेगा। संगठन के महासचिव

0: आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए एक नया परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर रखने को कहा गया है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में।

हम सुन रहे थे गीतबाजी फिल्म से गीता दत्त की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल और संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। आज के कार्यक्रम यादों की महफिल में आइए याद करते हैं गीता दत्त को उनके गीतों के साथ। तो चलिए सुनते हैं उनके ही द्वारा गाया गया ये और एक और गीत।

0: हम सुन रहे थे प्यासा फिल्म का यह गीत गीता दत्त की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल और सचिन देववर्मन के संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। यादों की महफिल में और भी नगमे हम सजाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
4: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
3: सखी सहेली?
4: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
3: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
5: सखी सहेली।
0: और कार्यक्रम यादों की महफिल में लेते हैं एक छोटा सा विराम।

आइए सुनते हैं गीता दत्त के द्वारा गाया हुआ, जिसमें मोहम्मद रफी और साथियों ने उनका साथ दिया है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत, और फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेस 55।

0: हम सुन रहे थे आर पार फिल्म का ये गीत गीता दत्त की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर का संगीत। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई, बहाने खिली तनिया,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं,
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली।

की धड़कन कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज सजाई है यादों की महफिल गीता दत्त के गानों के साथ। तो आइए सुनते हैं फिल्म सीआईडी का यह गीत जिसे लिखा है मजरूर सुल्तानपुरी ने, संगीतकार हैं ओपी नैयर और गाया है गीता दत्त ने।

பிள்ளை நாம சின் சின்

भूख तुम अंतर छू छू छू सिंध बाद देखे लड़कू मेरा नाम चिंग चिंग चू

हम सुन रहे थे हावड़ा ब्रिज फिल्म का यह गीत, गीता दत्त की आवाज में कमर जलालाबादी के बोल और ओपी नैयर के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अगला गीत, जो कि है 12 o'clock फिल्म से। गीता दत्त की आवाज है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और ओपी नैयर का संगीत।

زندگی.

हम सुन रहे थे ये गीत श्रीमती 420 फिल्म से गीता दत्त की आवाज में जानिसार अख्तर के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं एक और गीत गीता दत्त की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत।

हम सुन रहे थे ये गीत आज के इस कार्यक्रम यादों की महफिल में गीता दत्त की आवाज में, और आज हम उन्हें याद कर रहे हैं उन्हीं के गीतों के साथ। तो आइए सुनते हैं अनुभव फिल्म का यह गीत, जिसे गाया है गीता दत्त ने, लिखा है गुलजार ने और कनु रॉय ने इसे संगीतबद्ध किया है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सुरीला सफर, एक सफर जहां हम अपनी यादों को भी याद करते हैं और बड़े प्यारे से गीतों और जज्बातों के साथ बात करते हैं। आज सुरीला सफर की इबारत कुछ अलग तरीके से हम लिखकर लाए हैं और उस इबारत पर आप सभी ने बहुत सारे संदेश भेजे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और अब हम चलते हैं उस इबारत की ओर जो हमने आपको सौंपी थी। इबारत कुछ ऐसी है कि फिल्में बदलती हैं, किरदार बदलते हैं, मगर कुछ फैशन ऐसे होते हैं जो समय नहीं इतिहास बन जाते हैं। और जब बात फैशन की हो तो हिंदी सिनेमा का जिक्र भला कैसे ना हो। दशकों से हमारी फिल्में सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती, वे ट्रेंड भी गढ़ती हैं, सपने भी बुनती हैं और अलमारियों का रंग रूप भी तय करती हैं। कभी अनारकली की अनारकली कुर्तियां दिलों पर राज करती हैं, तो वक्त का हेयर कट युवाओं के आईने का सपना बन जाता है। ब्रह्मचारी की सादगी भरी साड़ी हो या बॉबी का चंचल पोल्का डॉट्स, हर दौर ने अपने हिस्से का एक फैशन इतिहास लिखा है। कुर्बानी के जंपसूट ने आत्मविश्वास को नया रूप दिया, तो चांदनी के शिफॉन की साड़ियों ने हवाओं को भी रुमानी बना दिया। रंगीला का रंग हो या तेरे नाम के राधे का अंदाज, हर गली में उनकी झलक दिखाई देती थी। देवर की भाभी की बहन की बैंगनी साड़ी से लेकर जिपी महंत के बेफिक्र और सुकून भरे कपड़ों तक, फिल्मों ने हमारे वार्डरोब भी नहीं हमारी सोच को भी सजाया है। और फिर ये जवानी है दीवानी की साड़ियां जो आज भी अनगिनत अलमारियों में अपनी जगह बनाए हुए हैं, वहीं डोला रे डोला की भव्य साड़ी, वह तो मानो हर फैशन प्रेमी के सपनों की अलमारी में टंगी हुई एक अधूरी ख्वाहिश है। तो आइए यादों की इस रैंप वॉक में आप भी शामिल हो जाइए। बताइए कौन सा फिल्मी फैशन को अपनाया था आपने, कौन सा अंदाज आज भी आपके दिल के किसी भी कोने में सजा हुआ है। तो ये दो प्रश्नों के उत्तर आप बहुत देर से दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे इस बात की ख्वाहिश है। पर हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा अच्छा लिखा है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। हमारे श्रोता लिखते हैं, आज तो फैशन का जलवा ही है, शुरुआत से लेकर आज तक हर 20 साल बाद पलट कर आती है, तो हर चीज जो पुरानी फिल्मों में दिखाई देती थी आज वो ही चलन में है। बड़े प्रिंट वाले कपड़े साड़ियां, बालों की भी वही फैशन। पर एक बात है, साड़ी नहीं बदलती, वो विभिन्नता लेकर आती है, पर कुछ साड़ियां राज्यानुसार वो की वो ही रहती है। जैसे महाराष्ट्र की पैठणी नवारी, बंगाल की बंगाली, तमिल की कांजीवरम, गुजरात की बांधनी और सभी परंपरा।

ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मॉनसून के कमजोर रहने की आशंका है।
1: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे, क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले, मतलब जहां

0: 25 से 50 प्रतिशत सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं, ऐसे 76 जिले हैं और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले, इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
1: हरियाणा के सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई विभागीय उच्च अधिकार प्राप्त खरीद समिति की बैठक में प्रदेश में आगामी मॉनसून को देखते हुए बाढ़ नियंत्रण के लिए कई निर्णय लिए गए। बैठक में विभागीय उच्च अधिकार प्राप्त खरीद समिति के सदस्य और प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक के दौरान समिति ने जल भराव और बाढ़ जैसी स्थितियों से निपटने के लिए पाइपों तथा उच्च शक्ति वाले पंपों की खरीद से संबंधित सभी 16 एजेंडा को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। इन उपकरणों और सामग्रियों की खरीद पर प्रदेश सरकार द्वारा 30 करोड़ रुपए से अधिक की राशि व्यय की जाएगी। मंत्री ने कहा कि सरकार के इस कदम से प्रदेश के संवेदनशील और निचले इलाकों में जल निकासी व्यवस्था को भारी मजबूती मिलेगी। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ नियंत्रण से जुड़ी सभी सामग्रियों की आपूर्ति समय पर सुनिश्चित की जाए। भारतीय सूचना सेवा के सेवामुक्त अधिकारी श्री जीएस टिवाना की आज 88 वर्ष की आयु में कनाडा में निधन हो गया। उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दी। वे 1998 में दूरदर्शन जालंधर से निदेशक समाचार के पद से सेवामुक्त हुए थे। हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने अधिकारियों को बरसात के मौसम के दौरान हर हाल में सभी प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय औपचारिकताएं पूरी कर लेने के निर्देश दिए हैं, ताकि मौसम अनुकूल होते ही सड़क निर्माण एवं सुधार कार्यों को तेजी से शुरू किया जा सके। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखा जाए। श्री रणबीर गंगवा लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप राज्य के सभी 22 जिलों में विकसित की जाने वाली आदर्श सड़क परियोजनाओं के साथ साथ अन्य परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। श्री रणबीर गंगवा को अधिकारियों ने बताया कि इन दो सड़कों की कुल लंबाई लगभग 115 किलोमीटर होगी। इन सड़कों को सौंदर्यकरण, आधुनिक सुविधाओं और सड़क सुरक्षा के लिहाज से प्रदेश की आदर्श सड़कें बनाया जाएगा। अधिकारियों ने जानकारी दी कि चयनित 8 सड़कों का विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सर्वेक्षण जुलाई माह में पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही जुलाई तक आदर्श रोड परियोजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी भी मिलने की संभावना है, जिसके बाद निर्माण कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। अधिकारियों ने वर्ष 2026-27 के कार्य की प्रगति को लेकर बताया कि प्रस्तावित 1633 सड़कों में से 1042 सड़कों के अनुमान तैयार कर भेजे जा चुके हैं, जबकि शेष सड़कों की प्रक्रिया भी तेजी से पूरी की जा रही है। अंबाला जिला रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा कल अंबाला शहर के पंचायत भवन में सुबह 9 बजे से दिव्यांगजनों के लिए विशेष मापन एवं उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। रेडक्रॉस सोसाइटी से कार्यक्रम के जिला संयोजक सुनील कुमार ने बताया

30 सड़कों में से 1042 सड़कों के अनुमान तैयार कर भेजे जा चुके हैं, जबकि शेष सड़कों की प्रक्रिया भी तेजी से पूरी की जा रही है। अंबाला जिला रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा कल अंबाला शहर के पंचायत भवन में सुबह 9 बजे से दिव्यांगजनों के लिए विशेष मापन एवं उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। रेडक्रॉस सोसाइटी से कार्यक्रम के जिला संयोजक सुनील कुमार ने बताया

हम सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में यह गीत साहिल लुधियानवी के शब्दों से सजा और संगीतकार रवि ने इसे संगीतबद्ध किया। और हमने आपसे पूछा था एक प्रश्न कि ये कौन सी फिल्म का गीत है और बहुत सारे लोग बड़े प्रसन्न हैं इस गीत को सुनकर। हमें भी प्रसन्नता होती है जब आपके मन का कुछ हम सौंप पाते हैं। तो हमारे श्रोता ने लिखा कि उन्हें बहुत पसंद है ये गीत और ये है वक्त फिल्म का खूबसूरत सा गीत। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया बातें आप लिखते जा रहे हैं। और हमारे श्रोता ने बताया कि दिल को छू लेने वाला ये गीत है। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि साड़ी की फैशन रैपिंग सब चल रही है और बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे एक और श्रोता ने लिखा कि उन्हें पैंट पहनना अच्छा लगता है और स्पोर्ट्स लुक में दिखना अच्छा लगता है। तो बढ़िया बात है, अगर आपको स्वयं को उसमें देखकर अच्छा लगता है तो अवश्य वैसे दिखें। और हमारे श्रोताओं ने कहा कि एक श्रोता ने कहा कि फैशन तो रोज बदलते हैं, इसलिए इसमें ना ही फंसो तो अच्छा है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। ये बात भी आपकी सही है कि वैसे जिसको जो अच्छा लगे सो वही करें, ये ज्यादा अच्छा होगा। हमारे श्रोता लिखते हैं पहले फिल्मों में देखा है कि हीरोइन कुर्ता साइड से बंद होता था और टाइट भी बहुत होता था और उनका बैक वाला हिस्सा अलग से दिखाई देता था। जी, ये फैशन का ट्रेंड बदलता जा रहा है। और यही फैशन वाली बात में हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैं तो बचपन से बचपन तक फैशनेबल हूँ, चाहे कुछ भी हो। पिता की पहली संतान थी तो 70 के जमाने में फ्रॉक वेल बॉटम दिखते थे। बचपन से लेकर 10वीं तक 12वीं तक फ्रॉक्स मिडी फ्रॉक्स पहने थे, साथ में को कलर की सैंडल गॉगल्स फ्रेम वाले अब तक नहीं छूटे, बस सैंडल छोड़ के पैर तोड़ने क्या इसलिए वो सैंडल नहीं पहनती, HMT टाइटन की घड़ी के साथ। अब बालों का बताएं रीना राय वाली स्टाइल अपनाई है तो सामने के कटवा के कानों के पीछे रखवाए थे, बाबा के हाथ से कई बार मार भी खाई लेकिन फैशन नहीं छोड़ी, क्या बात है। और हमारे श्रोता ने लिखा कि फैशन से याद आई 1983 में जितेंद्र और श्रीदेवी की मवाली फिल्म आई थी, फिल्म देखी, उनके गाने की ड्रेस पसंद आई, अगली दीपावली पर वही ड्रेस अपनी दीदी को दिखाकर बनवा ली और इन्होंने उस ड्रेस को पहना, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। और हमारे श्रोता ने कहा कि अनारकली के बारे में वो लिखती हैं कि वार्डरोब भरा रहता है और शिफॉन असल की साड़ियां बनारसी कॉटन, क्या ये तो बात सही है कि अलग ही बात है। उन्हें घूंघट में फिल्म घूंघट की वीना रॉय की शिफॉन की लहरिया साड़ी पहनती है जो इन्हें पसंद आ गई थी हमारे एक श्रोता को, और शादी के बाद उन्होंने वही साड़ी बाजार में दिख गई, झट से खरीद लिया और पहनकर सबको बताई कि घूंघट वाली ही वीना रॉय ने पहनी है। और रंगोली चित्रहार में उस गाने को देखती है तो उन्हें अपनी वो साड़ी याद आ जाती है, क्या बात है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के कस्बा नुमा शहर में रहते थे, महिलाएं आपस में मिलकर मैटनी शो फिल्म देखने जाया करती थी, बगल वाली एक मुंह बोली बुआ थी वह उनके साथ गई, साधना और अनीता का पहना हुआ घाघरा सेट अच्छा लगा, अब उसके डिजाइन को कैसे आंखों में बसा जाए, तो फिर से वह जुगाड़ करके लगातार 3 बार उस फिल्म को देखने गई, तब उन्हें डिजाइन एकदम से वही गरारा बनाया था अपने लिए, और जब कॉलेज पहनकर गई तो बड़ी फक्र से कहती थी यह मैंने महबूब की हीरोइन में जो पहनी उसी को देखकर बनाया। बहुत बढ़िया बात है, ये भी अपने आप में प्यार है। और 10 साल पहले बहन की हेयर स्टाइल पापा ने चेंज करवाई थी, साधना कट करवाई थी, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। अब यही श्रोताओं की बातों के बीच में मुझे एक बात याद आती है कि एक बार पढ़ा था कहीं कि

तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको

हम सुन रहे थे मोहम्मद रफी सुमन कल्याणपुर की आवाज में हसरत जयपुरी के बोलों को, और हमने आपसे पूछा ये प्रश्न कि ये किस फिल्म का गीत है, तो आपने तो बहुत जल्दी पहचान लिया। हमारा गीत शुरू नहीं हुआ उसके पहले हमारे पास संदेश आ गया था कि ये बहुत बढ़िया गीत, ब्रह्मचारी फिल्म का ये गीत है, आपने पसंद किया। उसके साथ ही हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था, हमने कहा था कि आंख बंद कीजिए और बताइए कौन सी हीरोइन दिखाई दे रही है। तो एक श्रोता तो लिखते हैं, मुझे हर हीरोइन की सूरतें एक जैसी सुंदर दिखती हैं। सही बात है, इसमें आपके घर में रहने वाली हीरोइन भी होनी चाहिए।

0: उसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं श्रीदेवी, मीना कुमारी, किसी को श्रीदेवी की ड्रेसेस याद आ गई, किसी को, अच्छा हमारे एक श्रोता लिखते हैं बंद आंख से मैसेज कैसे लिखें आंख खोलने के लिए, तो कहीं हाँ हाँ आप आंख खोल सकते हैं और आंख खोलकर संदेश भेज सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे श्रोताओं को किसी को साधना पसंद आई है, किसी को हेमा मालिनी, किसी की नजरों में कृति सेनन भी है, और कोई कहता है शिल्पा शेट्टी की फिटनेस जो है वो उन्हें प्रेरित कर रही है आंख बंद करने पर, किसी को मधुबाला दिखाई देती है, तो ब्रह्मचारी में मुमताज की साड़ी किसी को याद आ रही है, किसी को हरे रंग के दुपट्टे याद आ रहे हैं, तो किसी को कुछ नया बड़ा खूबसूरत सा दिखाई दे रहा है जो याद आ रहा है। देखिए ये जो बात है ना, ये बात हमें हमारे सेंसेस से जोड़ती है कि हमें किसका क्या पसंद आ रहा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बंगाली सीनियर सिटीजन अपने हर वैवाहिक सांस्कृतिक फंक्शन में धोती कुर्ता पहनते हैं। जी बिल्कुल, और उसका उसी का प्रयोग कई सारी फिल्मों में भी किया गया है, इस बात को हम मानते हैं। चुन्नी बाबू को ये याद कर रही हैं, जैकी श्रॉफ को उनके धोती दुपट्टे के साथ में। हमारे श्रोता कहते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती के कपड़ों की बहुत नकल करी है उन्होंने, टाइट पैंट, टाइट शर्ट, हील वाले शूज और उन्हीं की तरह इतरा के चलना। अच्छा, और किसी ने लिखा है कि हमें तो काजोल याद आई देखकर। जी ये देखने की बात है, सोचने की बात है कि हमें कब कौन कहां कैसे याद आता है। पर हमारे श्रोता लिख रहे हैं कुछ और कि मेरे दोनों लड़कियां और पत्नी जब कभी बाहर घूमने जाती हैं तो सलवार सूट और जीन्स पहनाकर ले जाती हैं बेटियां माँ को, क्योंकि घूमने फिरने में आसानी होती है, बस और ट्रेन में चढ़ने उतरने में आसानी होती है, हालांकि वो घर पर तो साड़ी ही पहनती हैं। और हमारे श्रोता बड़ी अच्छी बात लिख रहे हैं, लिखते हैं कि कभी कभी हम ओल्ड फैशन समझकर ड्रेस अलमारी के कोने में रख देते हैं, जो बाद में कभी नए फैशन के रूप में लौटता है तो फिर हम उसे फिर से ड्राई क्लीन कराकर पहन लेते हैं। कितना बढ़िया आइडिया दिया है आपने वस्त्रों के फिर से उपयोग का। हमारे श्रोता लिख रहे हैं आज का टॉपिक बड़ा अच्छा है, अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले तो भाषा के साथ कपड़े, बोली, सब कुछ बदला हुआ दिखाई देता है, फैशन बदलता है, लोगों की संस्कृति, आराम और व्यक्तित्व को दर्शाता है। आजकल सस्टेनेबल फैशन यानी पर्यावरण के अनुकूल कपड़ों का चलन है, लेकिन फैशन सिर्फ महंगे कपड़े नहीं होना चाहिए बल्कि अपनी पसंद और बॉडी टाइप के हिसाब से कोई भी स्टाइल आप चुन सकते हैं। हमारे एक श्रोता ने पूछा है शर्मिला के जूड़े सबसे अलग थे, पता नहीं सच होते थे या विक पहनती थी, हालांकि उनके बाल तो बड़े दिखाई देते हैं पर कौन जाने उनके जूड़े असली थे या वो विक पहनती थी, ये बात तो हमें भी नहीं पता। पर चलिए, पसंद तो सबकी अपनी अपनी है। तो अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ। इसके गीतकार का नाम बता दीजिएगा, इस गीत के गीतकार कौन है, फिल्म बॉबी से लिया गया ये गीत है। दूसरा प्रश्न, जैसे मैं हमेशा दो प्रश्न आपको देती हूँ, दूसरा प्रश्न ये है कि आप घूमने तो गए होंगे, भारत की कई जगह पर घूमे भी होंगे, कहीं कश्मीर, कहीं मनाली या दक्षिण भारत में, या कहीं तो घूमे होंगे। जहां भी घूमने गए वहां पर सामान्यतः ऐसा होता है कि फोटोग्राफर कुछ कपड़े अपने पास रखते हैं, उन्हें आप ऊपर से पहनते हैं, फिर आपकी एक फोटो खिंच जाती है और उसे यादों के तौर पर आप अपने पास सहेज कर रखते हैं। हुआ होगा ना, ऐसी कौन सी ड्रेस है जो आपने पहनी थी कभी और उसके साथ फोटो खिंचाई थी, भारत के या विदेश के कहीं भी आप गए हो घूमने के लिए और वहां की ड्रेस पहनकर फोटो खिंचाई हो आपने, आपके परिवार में किसी ने, तो जरूर साझा कीजिएगा और बताइए अगले गीत के गीतकार कौन है।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम।
3: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप,
2: पहले आप,
3: पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम,
2: पहले तुम,
3: पहले तुम,
2: पहले तुम
3: में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

हम सुन रहे थे बॉबी फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर शैलेंद्र सिंह की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ और आप सबने सही पहचाना आनंद बख्शी के बोल। अब एक रोचक जानकारी इस फिल्म को लेकर इसकी ड्रेसेस को लेकर मिली कि इस फिल्म के जो कपड़े हैं लुक्स हैं उनको मुख्य रूप से राज कपूर ने खुद ने डिजाइन और स्टाइल किया था पर इसमें इनका साथ करने वाले बिन रामानी जिन्होंने वार्डरोब स्टाइल सजाई थी सत्यवान और बी आर लक्ष्मण इसके टेलर थे और उन्होंने पूरे इन ड्रेसेस को बनाया था। कितना दिमाग

कितनी सोच लगती है एक फिल्म की एक ड्रेस को बनाने के लिए, ये भी अद्भुत कला है अपने आप में। और इस कला को भी हम सब याद रखते हैं, और जब हम याद रख ही रहे हैं तो हमें याद है कि हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था, और वो प्रश्न बड़ा प्यारा सा था, बड़ा रोचक सा था कि आपने कभी कोई ऐसी तस्वीर खिंचाई है क्या। तो हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे अच्छे उत्तर दिए कि वो एक बार शिमला गई थी, बहनों के साथ फोटो खिंचाई थी, वह उनके पास में है, कोई असम घूमने गया था तो फोटो खिंचाई थी, उसे संभाल कर रखा है, कश्मीरी लिबास में 300 रुपए के फैशन के साथ रोजी रोटी भी चलती है और उन्होंने वहां जाकर फोटो खिंचाई थी, क्या बात है। मणिपुर में भी फोटो खिंचाई हमारे एक श्रोता ने, उनकी जेठानी, किसी की जेठानी कश्मीर गई थी तो वहां के कपड़े पहनकर उन्होंने फोटो खिंचाई और पर्स वहीं भूल कर आ गई, जो कि उन्हें बाद में मिला नहीं, इस बात का जिक्र भी वो कर रही है। उसके साथ ही हमारे श्रोता बताते बहू जापान गई थी तो वहां की पारंपरिक पोशाक किमोनो में फोटो खिंचाई थी, वही पोशाक जो आशा पारेख ने सायोनारा वाले इस गीत में पहनी थी। इसके साथ ही हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी जानकारी दी, वो कहते हैं बॉबी के इस गाने में अकार्डियन जो है वो स्वर्गीय सुमित मित्रा ने बजाया था। जी बहुत रोचक जानकारी आपने दी है। हमारे श्रोता ने बताया कि छठी कक्षा में थे तब उन्होंने बॉबी देखी थी, और श्रोता बता रहे हैं कि संदर्भ मुझे याद आता है जब बॉबी पिक्चर लगी थी तो ये लोग ये नहीं पूछते थे कि बॉबी देखी या नहीं, लोग ये पूछते थे कितनी बार बॉबी फिल्म देखी। बिल्कुल सही बात है, हमारे श्रोता ने किसी ने कश्मीर में फोटो खिंचाई है और किसी ने बहुत सारी चीजें बताई हैं, तो बताया बहुत सारी बातों को। उन्हें एक श्रोता लिखते हैं कि उन्हें सबसे अच्छा ड्रेस सैनिकों का लगता है, उन्हें देखते ही अपने आप हाथ सैल्यूट करने लग जाते हैं, क्या बढ़िया बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि डल झील में उन्होंने फोटो खिंचाई थी, और हमारी श्रोता बताती है बॉबी फिल्म का याना, इसकी ड्रेस मैंने और मेरी दीदी ने एक बार बनवाई थी, नोट बैंकी टॉप पहनते थे, स्काउट पहनते थे, और फोटो भी उन्होंने इस बात को लेकर खिंचाई है। तो ये सारे हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिए हैं, और इन श्रोताओं की उत्तरों के साथ में हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ। और हमारे श्रोता बता रहे हैं कि फैशन हर वक्त बदलता रहता है, और स्कूल कॉलेज भी मैं भी बहुत फैशनेबल रहे हैं, वो बड़े बाल रखते थे, स्टाइलिश कपड़े पहन के स्कूल जाते थे, कई बार स्कूल में गुरुजी से पिटाई भी होती थी। हाँ वो दौर बड़ा अच्छा था जब गुरुजी पीटा करते थे, और हमारे गुरुजी तो कहते थे गुरुजी मारे धम्म धम्म विद्या आवे छम छम, शायद आती होगी इस बात से ऐसा हम मानकर चलते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि फैशन कभी पुराना हो नहीं सकता, फैशन एक शब्द है, और उसके साथ में उनका उन्होंने ब्लाउज की बड़ी अच्छी वो बताई है कि पहले पफ वाली बाह और जो दादी नानी पहनती थी वो वाले ब्लाउज अब फिर से आ गए हैं। हाँ कॉलेज में पैरेलल पहनते थे, प्लाजो पहनते थे, अब वापस आ गए हैं, और रेखा की दो चोटी वाले बालों की स्टाइल बहुत लोकप्रिय है। जी इतनी अच्छी बातें आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं। अब एक बात और हमारे मन में आती है कि जो कपड़े होते हैं वो कभी कभी बड़ी तरीके से दिखा देते हैं, जब रंगमंच में आप होते हैं या फिल्मों में होते हैं तो कपड़े आपकी स्टाइल को बताते हैं कि अगला मूड क्या है। अब हम अगर अगली फिल्म का ये गाना ले लें तो इसमें जो कपड़े हैं उन कपड़ों को मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया है, और उन्होंने पहले जो एक्ट्रेस है यानी हीरोइन जीत यानी करीना कपूर के कपड़ों को बड़ा बेफिक्री वाले कपड़ों में दिखाया है, और थोड़ी देर बाद जब उनका दिल टूट जाता है तो सलवार सूट में दिखाया है। कपड़े भी आपकी संजीदगी को दिखा देते हैं। वैसे ही अभिनेता आदित्य यानी शाहिद कपूर को भी पहले बड़े संजीदा कपड़ों में और बाद में बेफिक्री में दिखा दिया है। तो ये दोनों चीजें आपके मूड को भी यानी आपकी फिल्म की कहानी को भी दिखाते हैं, तो कपड़े कुछ इस तरह से दिखाते भी हैं। तो चलिए सुनते हैं अगला ये गीत, बताइए इसके गायक कलाकार कौन है, और एक बात और, सबसे सुकूनदायक वस्त्र कौन सा है जो पहनकर आप अपनी पूरी जिंदगी रह सकते हैं, सबसे सुकूनदायक वस्त्र आपका कौन सा है। अगर हमसे पूछा जाए या आपसे पूछा जाए तो हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे हमें सलवार सूट में बड़ा आराम मिलता है, सुकून मिलता है। आपको ऐसा कौन सा वस्त्र है जिसमें आराम मिलता है, बताइएगा।

हम सुन रहे थे जब वी मेट फिल्म का यह गीत इरशाद कामिल के बोल प्रीतम के संगीत के साथ, और हमने आपसे पूछा किसके गायक कलाकार कौन है, आपने सही पहचाना उस्ताद राशिद खान। और इसके साथ हमारे श्रोताओं से हमने एक और प्रश्न पूछा था कि आपको ऐसा कौन सा वस्त्र है जो बड़ा कंफर्टेबल लगता है, बड़ा सुकूनदायक होता है तो वो आप पहनते हैं। तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें हल्के रंग की सूती साड़ी जो है वो उन्हें पसंद है। इसके साथ ही कोई लिखता है कि हाई हील वाले जूते, हीरो जूते पहनते थे वो उन्हें बहुत पसंद थे, उन्होंने मंगाए भी थे, जिप वाले जूते, हाँ एक चैन वाले जूते हुआ करते थे, अभी भी फैशन में है, लड़कियां पहना करती हैं उस फैशन को आजकल। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें सुकून और आरामदायक जो है वो साड़ी ही लगती है और उनके ऊपर भी अच्छी लगती है। वैसे एक बात कही जाए तो भारतीय महिलाओं के ऊपर साड़ी बहुत अच्छी लगती है, सुंदरता बड़ी सुंदरता के साथ दिखाई देते हैं। उसके साथ कई लोगों ने साड़ी को बोला, किसी ने कुर्ती प्लाजो को बोला। जब भी मैट पे करीना कपूर ने पटियाला सूट पहना है जो देखते बनता है, जी बिल्कुल। कुछ हमारी एक और श्रोता लिखती है, कुछ कुछ होता है, मैं भी काजोल ने शुरू में डंगरी पहनी और बाद में खूबसूरत साड़ियां, मूड के मुताबिक उसको पहना गया था। जी बिल्कुल, यही तो बदलाव दिखाने का एक बड़ा अच्छा तरीका होता है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं, ये बात तो कई लोगों ने लिखी कि सफेद कुर्ता पजामा और बिल्कुल ढीला पहनने में बहुत सुकून होती है, पर गंदा भी तो बहुत होता है ना पर ठीक है, सबकी अपनी पसंद है। लॉन्ग टी शर्ट और पटियाला वाला फैशन इससे ही आया था। हमारे कुछ श्रोताओं का ऐसा कहना है कि उनका कोई गीत सुनने में नहीं आया, तो मैं क्षमा चाहूंगी, सुनते जाइए, ये गीत भी तो अच्छे ही हैं, कभी कभी ऐसा भी होना अच्छा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें गाउन पहनना अच्छा लगता है लेकिन किसी और के सामने जाना अच्छा नहीं लगता, गाउन उन्हें बड़ा कंफर्टेबल लगता है। जी बिल्कुल, हल्का फुल्का सा वस्त्र होता है। कोई अपनी पत्नी के कपड़ों के बारे में बता रहा है कि उन्हें सलवार सूट पसंद है, और कोई अपने बारे में बता रहा है, कोई कह रहा है लुंगी अच्छी लगती है पहनने में, तो किसी ने बताया बनियान और वो पट्टे वाला हाफ पैंट जो होता है वो लोगों को पसंद आता है, किसी को सूती कुर्ती और लेगिंग पसंद है, तो किसी को एक लोअर टी शर्ट में वो किसी भी फैशन में किसी भी कार्यक्रम में भी जा सकते हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें लोग बता रहे हैं। हमारी एक श्रोता लिखती है कि उनका विवाह जो है वो चित्तौड़गढ़ में हुआ था, ससुराल भी वही है, तो उनकी पत्नी के साथ चित्तौड़गढ़ गए थे और वहां बहुत सारी फोटो खिंचाई थी जिसका उन्हें याद है। एक श्रोता लिखते हैं, हमारे एक समय था जब ग्राहक डिजाइन देखने के लिए फिल्म दिखाने के लिए आता था और कहता था ये वाली डिजाइन बना दो, यानी हमारे जो कपड़े सिलने वाले थे उनको फिल्में देखनी पड़ती होंगी उस समय पे, क्योंकि वो डिजाइन बनानी होती थी। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हमारे श्रोता लिखते हैं। ऋषि कपूर की स्वेटर और देवानंद की मफलर का फैशन लाकर छा गए थे। जी बिल्कुल, और देवानंद के तो कपड़ों पर बैन भी लगा था शायद, ऐसा कुछ किस्सा भी सुनने में आता है, शायद आपको भी पता हो, किसी को लोअर टी शर्ट में आराम मिलता है और किसी को शर्ट में, किसी को सलवार कुर्ता, किसी को कुछ, हर किसी का अपना अलग विधान है कि उसे ये पसंद है। और अब हम चल रहे हैं आज की शाम के, आज के इस कार्यक्रम के कुछ अंतिम गीतों की तरफ, और ये अगला गीत आप सुनिए और बस बता दीजिए ये कौन सी फिल्म से है। और इस फिल्म के बारे में एक बड़ी रोचक सी जानकारी हमें कहीं से मिली थी, तो वो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं कि इस फिल्म के लिए, चांदनी के लिए भी कपड़े जो बनाए थे भानु अथैया ने बनाए थे, और नीता लुल्ला ने भी इसमें बहुत मदद की थी उन कपड़ों को बनाने के लिए, और बड़ा स्टाइल फेमस हो गया था, मतलब वो बड़ी अच्छी साड़ियां थी और लोगों ने उस समय बहुत पहनी भी ये साड़ियां। तो चलिए सुनते हैं इस गीत को और बताइएगा ये इस गीत के संगीतकार कौन है, नाम पूरा लिखिएगा संगीतकार का।

और इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं पर समाप्त होता है, परंतु हम आपके साथ वो साझा करना चाहेंगे जो आपने बताया है। जी, हमने पूछा था कि इसके गीत संगीतकार कौन है, पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। ये दोनों बातें आपने हमें बताई, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और आज के दिन हमने बहुत सारी फैशन डिजाइन और इन सब की बात की। हमारे श्रोता ने बताया कि पहले तो लड़कियां पैसे भी देती थी कि जाकर आप यह फिल्म दिखाइए मास्टर जी, और फिर वैसा कपड़ा बना दीजिए। तो ये इतनी अच्छी रोचक जानकारियां हमें मिली, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। सदा मंगल हो, नमस्कार, प्रणाम, सदा खुश रहिए।

आज की त्रिवेणी में पड़ोसियों की चर्चा। वर्तमान समय में अधिकांश लोग अपने कामकाज और नौकरियों के कारण प्रायः एकल परिवारों में रहते हैं। यहाँ पति पत्नी और एक या दो बच्चों का परिवार होता है। सगे संबंधी दूसरे शहरों या गांवों में छूट जाते हैं। ऐसे में पड़ोसी ही सुख दुख के साथी होते हैं। वैसे भी ये सच है कि किसी भी बड़ी मुसीबत में पड़ोसी ही मदद के लिए सबसे पहले काम आते हैं। पड़ोसियों से हमें हमेशा मृदु व्यवहार और सहयोग का भाव बनाकर रखना चाहिए। अगर पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार है तो जीवन की मुसीबतें बहुत आसान हो जाती हैं।

हम में से बहुत सारे लोग पढ़ाई लिखाई करने, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने अथवा दूसरे क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए किराए के मकान लेकर रहते हैं। ऐसे लोगों को पड़ोस में बहुत सजग रहना चाहिए। उन्हें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वे यहाँ केवल अपना करियर बनाने के लिए आए हैं। उन्हें रास्ते से भटकाने के लिए पड़ोस में बहुत से आकर्षण मौजूद होते हैं।

वे हमारे किसी पार्टी या शादी समारोह में भी बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। कई बार दोनों की छतों का उपयोग करके हम छोटी मोटी पार्टी के लिए एक अच्छा स्पेस निकाल सकते हैं। अच्छे पड़ोसी अपनी छत का उपयोग और कई रोचक कार्यों के लिए कर सकते हैं, जैसे

एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक

0: यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहअध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहअध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई।

0: 1-2-8-1-0-9-1-1-5 दूसरा नंबर है +9-8-9-1-2-8-1-0-9-1-0-9 तीसरा नंबर +9-8-9-1-2-8-1-0-9-1-0-2 और चौथा नंबर है +9-8-9-9-3-2-1-7-9-3-5-9 इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
2: 4 महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही, हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रुपए की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गई। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
3: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहाँ से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल

0: विस्तार और यहाँ के कर्मचारी और यहाँ के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग, उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए लक्ष्मी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहाँ जहाँ मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आरके आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर 9 स्टेशन है।
1: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला के पास निर्माणाधीन गोदाम के छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिले के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
2: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले 1 से 2 दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा

सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले एक से दो दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा

0: कि बच्चे स्कूल जाते हैं या हमारे घर की जो महिलाएं हैं, पुरुष भी जब ऑफिस जाते हैं, तो अचार और परोठा एक ऐसा भोजन है जो लगभग हर लोग लेके जाते हैं अपने
1: और
0: टिफिन
1: कभी
0: में।
1: कभी ऐसा होता है ना कि सब्जी थोड़ी सी फीकी बन गई है तो उसमें जो अचार है ना वो उसका स्वाद बहुत बढ़ा देता है खाने का,
0: हाँ,
1: है
0: और
1: ना।
0: कई बार ये भी होता है कि जब घर की गृहिणियां सब्जी बनाने में थोड़ी सी आलस बरत लेती है ना, तो दाल और अचार से काम हमारे घर के पुरुष चला लेते हैं, पता
1: या
0: है।
1: फिर कभी सब्जी कम पड़ गई
0: हाँ
1: तब भी अचार से काम चला सकते हैं।
0: और यार प्याज का सलाद खाना हो ना, तो
1: हाँ
0: उसमें भी अचार डालकर,
1: खा
0: आहा,
1: सकते हैं।
0: मस्त।
1: और साथ में मुरब्बे, वो मीठे मीठे मुरब्बे तो बहुत है, उसमें आम का मुरब्बा बनता है, फिर करौंदे का मुरब्बा बनता है, आंवले का मुरब्बा बनता है, अलग अलग तरह के मुरब्बे बनते हैं जो भी हर घर की शान होती है।
0: शान होते हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद जब हम व्यंजनों पर आएंगे ना, तो हमारे श्रोता या हमारी सखियां और सखा तब तक आचार और मुरब्बे पर अपनी जो है रेसिपी लिखकर भेज चुके
1: कि
0: होंगे।
1: आपके घर में किस तरह का मुरब्बा या किस तरह का अचार बनता है, कोई मीठा अचार बनाते हैं, कोई तीखा बनाते हैं, कोई कद्दूकस करके अचार बनाते हैं, तो कौन से तरह का अचार आपके घर में पसंद किया जाता है उस पर हमें लिखकर भेजिए।
0: बिल्कुल। और इसके अलावा हमारे क्या और विषय हैं आज के?
1: शब्द हमारा विचार आपके, इसमें विषय है संयम,
0: संयम,
1: जिसे
0: क्या
1: कहना
0: बात
1: बहुत
0: है।
1: आसान है और उसे अपनाना बहुत ही मुश्किल काम।
0: बहुत मुश्किल है, और वैसे हमारे श्रोताओं ने संयम पर बहुत कुछ लिखकर भेजा भी है, लेकिन हम तो ये जानना चाहते हैं सोनाली, हमारी सखाओं से, हमारी सखियों से, कि जब आपके जीवन में संयम बरतने की बारी आई तो आपने कहाँ कहाँ संयम खो दिया था।
1: या फिर झुंझला उठे।
0: वही बात कि मसलन आपको बाजार जाना है, किसी पार्टी में जाना है, और आपकी धर्मपत्नी ने तैयार होने में थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया और आप
1: बस
0: झुंझला गए।
1: संयम टूट गया।
0: बिल्कुल। या
1: और
0: फिर ट्रैफिक में जब आप
1: फंस गए हो और सामने वाली, आपको पता ही नहीं है कि सामने की यानी दो गाड़ियां छोड़ के उसके आगे की गाड़ी बंद पड़ गई है और आप जोर जोर से हॉर्न देते जा रहे हैं कि ये क्यों नहीं चला रहा है, क्यों नहीं चला रहा है, नहीं क्या हो रहा है।
0: और दुनिया भर की बातें हमारे मन से निकलती हैं उस वक्त, है ना, जब हम फंस जाते हैं तो हम धैर्य खो देते हैं, संयम खो देते हैं ना। और भी बहुत से ऐसे विषय हैं जहां हम अपना आपा खो देते हैं, तो हमारे श्रोताओं से हम चाहते हैं वो लिखें। संयम
1: अपने
0: क्या
1: उदाहरण
0: है?
1: लिखें।
0: हाँ, संयम तो सबको पता है क्या है, लेकिन संयम की डेफिनेशन नहीं लिखनी है, हमें ये बताना है कि हमने जिंदगी में कब कब संयम रखा और ये कितना काम आया,
1: और कब कब खो दिया संयम,
0: वो तो बताना ही है, क्योंकि इसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी
1: दोनों भी
0: है ना।
1: जी। और साड़ियों का संसार, इसमें हम इलकल साड़ी कर्नाटक के बारे में जानकारी देंगे और हमारे बहुत सारे कुछ श्रोताओं ने लिखकर भी भेजी है साड़ी जानकारी।
0: बहुत अच्छी साड़ी होती है इलकल साड़ी
1: बहुत
0: कर्नाटक
1: नरम
0: की।
1: मुलायम बहुत सुंदर
0: तो
1: साड़ी।
0: सोनाली, इस बार हम जब बाजार जाएंगे ना तो ये साड़ी खरीद कर लाएंगे,
1: बिल्कुल खरीदेंगे,
0: है
1: और
0: ना।
1: इतने सुंदर कलर होते हैं इलकल साड़ी के।
0: क्या बात है। तो और देखिए, सोशल मीडिया पर वाद विवाद और समय की बर्बादी हम बहुत करते हैं,
1: बहुत ही ज्यादा। यानी हमने सोशल मीडिया ऐप खोले कि उसमें कोई एक विषय पे या कोई एक रील पे इतने लोग लिखते हैं, उसमें घंटों बाद, और फिर लोग वो मैसेज भी पढ़ते हैं किसने क्या लिखा, किसने क्या लिखा, उस पे भी 250-300 हजारों के लाइक्स होते हैं।
0: हाँ,
1: तो ये समय की बर्बादी ही है।
0: बिल्कुल, मिलता कुछ नहीं है, है ना, लेकिन हम अपने विचार वहां थोप देते हैं।
1: हाँ,
0: और अनावश्यक कई बार क्या होता है, साधारण सी न्यूज होती है उसको हम बहुत बड़ी बना देते हैं और बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना देते हैं, या फिर कोई बहुत बहुत ही सेंसिटिव घटना हो गई है किसी की जिंदगी में, उस पर हम अपने विचार अनाप शनाप थोप देते हैं।
1: और कभी कभी ऐसा होता है मंदाकिनी जी, आपस में लड़ाई भी हो जाती है लोगों की, ये तुमने ऐसे क्यों लिखा, तुमने ऐसे क्यों बोला, ये तो ऐसा है वैसा है, और इसमें हमारा बहुत सारा वक्त
0: समय, और सोचिए दिमागी हालत कैसी हो जाती है उसके बाद,
1: अगर हमें क्रोध आ गया तो हम खुद का बहुत नुकसान कर लेते।
0: बिल्कुल। तो सोशल मीडिया पे लिखते वक्त पहले तो हमें खुद ही सोच लेना चाहिए कि हम लिख क्या रहे हैं, फिर ये भी उम्मीद कर लेनी चाहिए कि किस तरह के विचार आने वाले हैं। इन सब में अपना समय बर्बाद करने की बजाय हम कुछ क्रिएटिव लिखें। हाँ, कुछ मुद्दों पर आप आवाज उठाएं, लेकिन उस आवाज का असर दूर तक होना चाहिए,
1: और बस मैसेज किया और छोड़ दिया, उसके लिए पूरा दिन बर्बाद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है
0: कि किसने क्या लिखा और किसने लाइक किया किसने नहीं किया। हम नाराज हो जाते हैं, पर अब हमारे श्रोता नाराज होने वाले हैं अगर हमने गाना नहीं सुनाया।
1: सुनवा देते हैं।

0: तो चलिए दरिया में फेंक दी हमने चाबी, पर हमने अपनी अलमारी की चाबी संभाल के रखना है जिसमें बहुत सारी साड़ियां होती हैं।
1: हाँ वही तो मैं कहने वाली थी कि दरिया में चाबी फेंक दोगे तो हम अपनी साड़ियां और अपने कपड़े कैसे निकालेंगे भाई।
0: भाई हमारी जो अलमारी होती है उसमें अलग

0: अलग तरह की अलग अलग प्रांत की साड़ियां होती है। तो कर्नाटक की साड़ी इल्कल अगर आपने नहीं खरीदी है तो आपको जरूर
1: खरीदनी पड़ेगी, है
0: ना। बहुत सुंदर साड़ियां होती है। और भारत की संस्कृति में साड़ियों का वैसे विशेष स्थान होता है। हर प्रदेश की साड़ी अपने रंग, बुनाई और परंपरा के कारण अपनी अलग पहचान रखती है, और इन्हीं में से एक है इल्कल साड़ी, जो कर्नाटक राज्य की प्रसिद्ध पारंपरिक हथकरघा साड़ी है। ये साड़ी अपनी सुंदर बनावट, पारंपरिक रंगों और अनोखी बुनाई के लिए जानी जाती है।
1: हाँ बिल्कुल सोनाली, और इल्कल साड़ी का जो संबंध है वो कर्नाटक के बागलकोट जिले के इल्कल नगर से है, और इसी स्थान के नाम पर इसका नाम इल्कल साड़ी पड़ा। और ये कर्नाटक की ग्रामीण संस्कृति और हथकरघा परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: और इल्कल में साड़ी बुनने की परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है। स्थानीय बुनकर परिवारों ने इस कला को वर्षों की मेहनत और अनुभव से जीवित रखा है। पहले ये साड़ियां विशेष रूप से महिलाओं के पारंपरिक पहनावे का हिस्सा थी, लेकिन आज देश विदेश में भी इनकी मांग
1: हो गई है। बिल्कुल सही कहा, और इल्कल साड़ी की सबसे बड़ी पहचान है इसकी अनोखी बुनाई तकनीक। इसमें साड़ी के जो मुख्य भाग है, बॉर्डर है और पल्लू को एक विशेष तरीके से तैयार किया जाता है, और पारंपरिक रूप से इसमें टोपे तेनी तकनीक का उपयोग किया जाता है, जो इसे अन्य साड़ियों से अलग बनाती है।
0: और पारंपरिक इल्कल साड़ियों में सूती और रेशमी धागों का सुंदर मेल देखने को मिलता है। साड़ी का मुख्य भाग अक्सर सूती धागों से और पल्लू और बॉर्डर रेशमी धागों से बनाया जाता है, और इसकी हल्की और आरामदायक बनावट इसे रोजमर्रा के पहनावे के लिए भी उपयुक्त बनाती है।
1: हाँ बिल्कुल, और इल्कल साड़ियों में लाल रंग मिलता है, हरा है, नीला है, बैंगनी और मरून जैसे पारंपरिक रंग जो है बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, और इसके पल्लू पर सुंदर धारियां और पारंपरिक आकृतियां भी बनाई जाती हैं, बॉर्डर पर विशेष डिजाइन इसकी पहचान बनाते हैं, और कई साड़ियों में मंदिर कला या ज्यामितीय पैटर्न की झलक भी देखने को मिलती है।
0: और एक इल्कल साड़ी केवल एक कपड़ा नहीं है मंदाकिनी जी, बल्कि बुनकरों की कला, धैर्य और मेहनत का परिणाम होती है। हथकरघे पर बैठकर बुनकर धागों को जोड़कर एक सुंदर कलाकृति तैयार करते हैं, और इस काम में अनेक बुनकर परिवारों की आजीविका भी जुड़ी हुई है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और इल्कल साड़ी जो है कर्नाटक की एक पहचान है और उसकी परंपरा का प्रतीक है। विवाह के अवसरों, त्योहारों या विशेष अवसरों इसमें पहनने की परंपरा रही है, और ये साड़ी जो है भारतीय हस्तशिल्प की सुंदरता और सादगी को भी दर्शाती है।
0: और आज इल्कल साड़ी पारंपरिक रूप से कई नए डिजाइनों में भी उपलब्ध है। आधुनिक रंगों और नए पैटर्न के कारण युवा पीढ़ी में भी इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, और ये भारतीय हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, ताकि जो हमारे ग्रामीण तबके के लोग हैं उन्हें उनकी जो है
0: घर चल सके,
1: उनको एक आजीविका का साधन मिल सके। और इल्कल साड़ी केवल पहनने का वस्त्र नहीं, जैसा भी आपने कहा था, ये कर्नाटक की मिट्टी, वहाँ की संस्कृति और बुनकरों के कौशल की कहानी मानी जाती है, और इसके हर धागे में सोनाली परंपरा की गर्माहट है और कलाकारों के हाथों की मेहनत छिपी होती है, और ये भारतीय हथकरघा विरासत का एक सुंदर उदाहरण है जिसे सहेजना हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी है।
0: ये बिल्कुल हमें जिम्मेदारी हम महिलाओं को उठाना चाहिए कि जब भी कभी कर्नाटक घूमने गया तो आपको इल्कल साड़ी जरूर खरीदना चाहिए। और फिर और क्या होता है ना मंदाकिनी जी, हम साड़ियां तो खरीद ले आते हैं लेकिन उसे पहनते नहीं है।
1: हाँ।
0: तो साड़ियों को पहनना भी उतना ही जरूरी है कि कोई भी त्योहार हो, उत्सव हो या फिर कोई पार्टी हो, तो साड़ियां जरूर महिलाओं को पहनना चाहिए। अब क्या होता है कि महिलाओं का ऐसा लगता है वक्त बहुत
1: ज्यादा लगता है,
0: पर थोड़ी तैयारी हमने थोड़े एक दो घंटे पहले तैयारी करके रख ली कि पहले से हमने साड़ी अच्छे से प्रेस कर ली, ब्लाउज प्रेस कर लिया, उसके जो उसमें पहनने वाले जो गहने वहने सब निकाल के रखे, तो हम आराम से पहन जा।
1: और जिनको साड़ी पहनने का अभ्यास है तो वो बहुत जल्दी पहन लेते हैं, कुछ पहनों को अभ्यास कम होता है, तो सीखा भी जा सकता है,
0: और आजकल तो सिलवा भी सकते हैं हम साड़ियाँ।
1: हाँ।
0: यानी आप उसमें बिल्कुल एक हुक लगाना है और पल्लू भी उसमें सिला हुआ ही होता है, तो बिल्कुल जितना समय हमें सूट पहनने में लगता है
1: उतना ही समय लगता है, उसी तरह से पहना भी जाता है, लेकिन वो खुद जब पहना जाता है ना सोनाली, जब खुद प्लीज

0: हाँ तो सोनाली, हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया पर हम इतने बिजी हो जाते हैं कि दैनिक जीवन में क्या कुछ करना है इस पर ध्यान हमारा थोड़ा कम हो जाता है और हम सोशल मीडिया की बहसों में उलझे रहते हैं।
1: और हमारी जो सखी है, हमने पूछा था ना कि क्या कर रहे हैं मंदाकिनी जी, तो हमारी एक सखी ने कहा कि हम अचार नहीं बना रहे, हम प्रेस करते हुए प्रोग्राम सुन रहे हैं। और एक साथी लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद हमें पसंद नहीं, हम तो विविध भारती के पेज पर श्रोताओं के अच्छे विचारों को पढ़ते हैं जिससे जानकारी भी मिलती है और आनंद भी आता है।
0: क्या बात है, क्या बात है, छा गया, बहुत अच्छी बात आपने कही, सही बात है।
1: तो ऐसी जब
0: बेतुकी

0: बहसों में पढ़ने से अच्छा है कि हम कुछ सार्थक सुने, और विविध भारती एक ऐसा उनके लिए प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सब कुछ सार्थक होता है, कोई वाद विवाद नहीं,
1: और मनोरंजन के साथ में ज्ञानवर्धन भी होता
0: बिल्कुल,
1: है।
0: एक पन दो का है ना। तो आज हम सोशल मीडिया के वाद विवाद पर, समय की बर्बादी पर बात करने वाले हैं, क्योंकि सोशल मीडिया जो है सोनाली हमारे जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है, महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, और इसके माध्यम से हम दुनिया भर की जानकारी है, समाचार और विचारों को तुरंत जान भी लेते हैं, जुड़ भी जाते हैं, जरूरी भी है, और लोगों को अपनी प्रतिभा को और विचार को व्यक्त करने का ये अवसर भी देता है, मौका भी देता है।
1: मंदाकिनी जी, ऐसा होता है कि विचारों में अंतर होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। हर व्यक्ति की सोच, अनुभव और दृष्टिकोण अलग अलग होता है, अलग अलग विचार समाज की सुंदरता है, लेकिन उन्हें सम्मान के साथ स्वीकारना उतना ही आवश्यक है।
0: हाँ, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए, कोई किस विचारधारा का हो सकता है, कोई किसी विचारधारा का, हम अपनी विचारधारा उस पर थोपे नहीं, और विचारों में आपने का अंतर होना स्वाभाविक है, लेकिन छोटी छोटी बातों से जो बड़े विवाद होते हैं उनसे भी हमें बचना चाहिए। कई बार क्या होता है, किसी पोस्ट पर, किसी फोटो पर, वीडियो पर या समाचार पर एक छोटी सी टिप्पणी से बहस शुरू हो जाती है, और वो बहस इतनी लंबी हो जाती है कि व्यक्तिगत हो जाती है ये चीजें, और एक दूसरे को हम भला बुरा कहने लग जाते हैं, आरोप देने लग जाते हैं।
1: और एक बात है ना मंदाकिनी जी, कि जो शब्द होते हैं ना उसमें भावनाएं नहीं होती है। अब जैसे मैंने आपको ऐसे ही कोई बात हंसते हंसते बोल दी तो आपको बुरा नहीं लगेगा, पर वही बात जब मैं मैसेज के रूप से मैं आपको लिखूंगी तो आपको बहुत ज्यादा बुरा लग सकता है कि इन्होंने ऐसे कैसे लिख दिया।
0: हाँ, हाँ।
1: तो लिखना नहीं, अगर आपको बोलना भी है तो कोई बात आप बोल कर लिखिए, ना कर लिखिए, और जब हम ये लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा समय की भी बर्बादी होती है। तो हम ये समय जो होता है ना बहुत अनमोल होता है, तो सोशल मीडिया पर बेवजह बहस करते करते लोगों को पता ही नहीं चलता कि कितना समय व्यर्थ हो गया। समय है जो परिवार, शिक्षा, काम, स्वास्थ्य और स्वयं के विकास में जो लगाया जा सकता है वो हम बिल्कुल पूरे टाइम बर्बाद कर देती
0: हूँ। इससे क्या होता है सोनाली, हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती
1: है, बहुत ज्यादा बिगड़ती है।
0: हमें शांति चाहिए, मानसिक शांति की जरूरत है ना आजकल, बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हम मानसिक रूप से बीमार से हो जाते हैं, क्योंकि लगातार जो है हम इतनी नकारात्मक चीजें पढ़ते हैं, चर्चाएं पढ़ते हैं, इतना विवाद उसमें देखते हैं, तो मन में तनाव और बेचैनी तो आएगी ही, और हम भी अपनी बात लिखते हैं, कई बार हमें भी गुस्सा आ जाता है, हम भी उसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लग जाते हैं। तो सोचिए, हमें लगता है अच्छा मुझे हरा दिया, ये बात मैं ये लिख देती हूँ,
1: चलिए ये तो मेरी बात मैं लिख कर ही रहूंगा, रहूंगी, है ना।
0: तो ये जब चीजें आती हैं तो आप अच्छी सोच और सकारात्मक ऊर्जा की जगह क्रोध और निराशा से घिरने लगते हैं,
1: और रिश्तों में दूरी आ जाती है। जहाँ गुस्सा है तो वहाँ पर रिश्तों में दूरी बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, और यह ऑनलाइन विचारों का मतभेद व्यक्तिगत संबंधों को भी प्रभावित कर देता है। हमें याद रखना चाहिए कि रिश्ते बहस जीतने से नहीं बल्कि समझ और सम्मान से मजबूत होते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक बात और है कि हम हर विषय पर अपनी टिप्पणी पर अपनी बात कहना बहुत जरूरी समझते हैं, या फिर प्रतिक्रिया दे देते हैं तुरंत, ये बहुत गलत आदत है। आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए,
1: थोड़ा सोचे समझे, संयम से काम।
0: वो संयम यहाँ काम आता है कि हमें क्या कहना है, और समझदारी इसी में होती है सोनाली, कि कौन सी बात महत्वपूर्ण है जिस पर हम अपनी राय दें, या समय की बर्बादी तो नहीं है, हम किस से बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, ये सब भी हमें समझना होगा।
1: और मंदाकिनी जी, एक और बात है, इतने ज्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल होता है कि यानी घृणा मन में उत्पन्न होने लगती है, बहुत कड़वे, बहुत गंदे, बहुत भद्दे, अभद्र भाषा का बहुत
0: इस्तेमाल होने लगता है।
1: तो वो एक गलत है, वो क्या है, एक को देख के दूसरा भी उसी तरह
0: जी, उससे आप देखिए ना समाज में कितना गलत संदेश जाता है। हमारे बच्चे जब इसे पढ़ते हैं तो वो भी यही भाषा सीख रहे हैं, उनके मन में भी वो सम्मान और आदर नहीं होता। कई बार स्त्रियों की फोटो होती है, लोग उस पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे होते हैं, तो जो बच्चा है वो भी यही देख रहा होता है, पढ़ रहा होता है, उसे भी लगता है कि ये सब आम बात है और ऐसा कर देना चाहिए। बड़ा होकर वो भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करने लगता है।
1: सोशल मीडिया के इतने फायदे हैं कि उसका उपयोग हमें ज्ञान बढ़ाने के लिए, अच्छे विचार फैलाने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए और समाज में जागरूकता लाने के लिए किया जा सकता है, पर हो रहा है उल्टा।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये विवाद का मंच नहीं है, संवाद का माध्यम है। आप संवाद करिए, समय का मूल्य समझिए, समय जीवन की जैसा कि सबसे कीमती संपत्ति है, इसको आप जाने, और जो समय एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता, ये हम सभी जानते हैं, तो आप सोशल मीडिया में लिखिए, आप लोग लिखते हैं लगातार, लेखक हैं, बहुत अच्छी बातें लिखते हैं, इतनी अच्छी जानकारियां देते हैं लोग, और आप अपनी बनाइए एक ऐसी जहां पर आप अपनी बात कह रहे हैं, अपने मन की बात, और फिर लोगों के विचार आमंत्रित करें, तो अपनी

0: ऊर्जा उन कामों में लगाएं जो आपके जीवन को, आपकी भावनाओं को, आपके दिमाग को बेहतर बनाती है।
1: यानी सोशल मीडिया स्वयं अच्छा या बुरा नहीं, उसका उपयोग हमारी सोच पर निर्भर करता है। यदि हम हर छोटी बात को विवाद बनाने के बजाय समझदारी और संयम से काम ले तो यही माध्यम ज्ञान जुड़ाव और सकारात्मक बदलाव का साधन भी बन सकता है।
0: बिल्कुल, बहुत ज्ञान है। आप जब सोशल मीडिया पे जाते हैं तो नई नई जानकारियां, हमें अच्छी अच्छी जानकारियां भी मिलती हैं। हम उस पर अगर अपना ध्यान लगाते हैं तो यकीनन आपको बहुत सारी जानकारी पढ़ने को मिलती है, बहुत ज्यादा ज्ञान आपको मिलता है।
1: पुराना जमाना याद कीजिए ना, जब सोशल मीडिया नहीं था तो हमें कितनी सारी किताबों को रेफर करना पड़ता था कि इस किताब में इस लेखक ने इतनी अच्छी बात लिखी, उस किताब में
0: लाइब्रेरी में जाना होता था, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़नी पड़ती थी किताब।
1: तो एक क्लिक पर इतनी सारी यानी ज्ञान का भंडार खुला है,
0: सब कुछ बैठे हुए मिल जाता है। और मुझे तो ये भी याद है सोनाली कि कई बार हमें ऐसे टॉपिक्स पर संवाद लिखने होते थे स्कूल कॉलेज में कि हमें अपने पास या अपने माता पिता के साथ साथ पड़ोसी लोगों के पास भी जाकर कई बार विचार जानने पड़ते थे कि अंकल आप इस विषय के हैं, हमें क्या इस पर कुछ लिखा पाएंगे, है ना। तो ये सब बातें भी हमारे जीवन में हुआ करती थी जब सोशल मीडिया नहीं था। आज तो सब कुछ आपके पास है, तो उसका सदुपयोग करना,
1: उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए कि भाई जो अच्छा है वो अच्छा अच्छा है, नहीं जो अथाह महासागर है इसमें के हीरे मोती हमें चुनना है, ना कि उसकी जो गंदी चीजें या गलत बातें उसे हमें अनदेखा करना है।
0: इसका मतलब ये नहीं हुआ सोनाली कि हम वाद विवाद से बचें, लेकिन अच्छी बातों पर वाद विवाद सार्थक, उसका अंत सार्थक होना चाहिए
1: और उसमें बहुत ज्यादा समय की बर्बादी
0: नहीं करनी चाहिए, है ना। इसलिए इससे जुड़े लेकिन सार्थक कामों के लिए। और अब हम एक छोटा सा
1: ब्रेक लेते हैं।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली और मंदाकिनी जी गाना सुनवाते हैं श्रोताओं को, उसके बाद में फिर हम श्रोताओं के कमेंट्स भी लेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा सोनाली, पहले सुन लेते हैं ये गीत।

0: सोना मेरे सामने भी सोना ही बैठी है सोनाली के रूप में।
1: चलिए हमारे एक साथी लिखते हैं, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग बेहुदा चीजों के लिए ज्यादा हो रहा है, मसलन हास्य व्यंग्य के फूहड़ वीडियो बनाना, फेक न्यूज को वायरल करना, बेसिर पैर की ब्लॉगिंग करना वगैरह। आज के समय की सोशल मीडिया ऐसी बीमारी बन गया है जिससे युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा ग्रस्त है। सिर्फ वाद विवाद ही नहीं, सोशल मीडिया के यूज ने हमारे बहुमूल्य समय को भी नष्ट कर दिया है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद करना समय की पूरी बर्बादी है, क्योंकि ये एल्गोरिदम पर आधारित होते हैं जहां लोग केवल भावनाओं को भड़काने और मानसिक तनाव का काम करते हैं। इससे उत्पादक चर्चा के बजाय केवल नकारात्मकता और अलगाव ही पैदा होता है। वाद विवाद के नुकसान, ऊर्जा और समय की हानि, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की जाने वाली बहसें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती जिससे आपका कीमती समय और मानसिक ऊर्जा व्यर्थ होती है। और इसके अलावा मानसिक तनाव क्रोध अलग होता है, इन्होंने इसको साइंटिफिक तरीके से लिखा है। और इसके साथ ही जो है इन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया कितना हानिकारक है, हमारे विशेषज्ञ इस पर अपनी राय देते हैं। गलत सूचनाओं का प्रसार होता है, ऑनलाइन बहसों में अक्सर बिना पुष्टि के तथ्य साझा किए जाते हैं जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। और समाज में सोशल मीडिया के प्रभाव के लाभ और हानियां भी बहुत हैं। आप उसका उपयोग करें, सीमित करें, और सबसे अधिक किस एप्स पर आप समय बिताते हैं ये भी आपको जानना होगा। और इस पर वो बहुत सारी बातें लिखते हैं।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, आए दिन सोशल मीडिया झगड़े का अखाड़ा बन चुका है, किसी बात को लेकर दो गुटों के बीच झगड़ा होता है। साथी एक लिखते हैं, सोशल मीडिया पर वाद विवाद करके खुद के दिमाग खराब करने बराबर होता है, क्योंकि इस मंच पर विभिन्न देश या प्रदेश से अलग अलग दिमाग वाले लोग जुड़े मिलेंगे जिससे हम कभी जानते ही नहीं, तो उनसे ऐसे बेकार में वाद विवाद हमें क्यों उलझना चाहिए। आप उनके पोस्ट ध्यान से पढ़ ले, अगर वो व्यक्ति और उसके प्रश्न जवाब देने लायक है तो उनसे जुड़े, वरना दूर ही रहे, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं, नौबत भी आ सकती है।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक श्रोता लिखती है कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद में उलझना अधिकतर समय की बर्बादी है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सार्थक चर्चा के बजाय गुस्से और प्रतिक्रियाओं से उलझने उन्हें बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ बहस करने से मानसिक तनाव बढ़ता है और आप का समय जो है व्यर्थ होता है, मानसिक तनाव और ऊर्जा का ह्रास होता है। ऑनलाइन बहस में अक्सर लोग अपनी मर्यादा भूल जाते हैं, कटु शब्दों और आलोचनाओं को पढ़ने से मानसिक शांति हमारी भंग होती है, नकारात्मकता हावी हो जाती है और सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट के जवाब में तर्क वितर्क करने में घंटों निकल जाते हैं। इस समय का उपयोग किसी रचनात्मक कार्य में, पढ़ाई में, कौशल सुधार में किया जा सकता है। बहुत बार लोग जानबूझकर कुछ ऐसी बातें डाल देते हैं जिसे लोग और उत्तेजना में आकर लिखते हैं और धीरे धीरे उस जगह से फिर हट जाते हैं।
1: वहीं एक साथी लिखते हैं कि सोशल मीडिया आज के दौर में संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग समय की बर्बादी का कारण बन सकता है। लोग घंटों तक बिना किसी उद्देश्य के वीडियो देखते, पोस्ट स्क्रॉल करते और अनावश्यक चर्चाओं में लगे रहते हैं। इससे पढ़ाई, काम और परिवार के लिए समय कम बचता है। कई बार सोशल मीडिया की लत व्यक्ति की एकाग्रता और उत्पादकता को भी प्रभावित करती है, इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग सीमित और सार्थक उद्देश्यों के लिए करना चाहिए ताकि समय का सदुपयोग हो सके, जीवन में संतुलन बना रहे।
0: बिल्कुल, एक श्रोता ने लिखा है कि सोशल मीडिया एक मंच है, यहाँ सोच समझ कर ही अपने विचार रखें, अंधाधुंध कुछ भी बोलते रहते हैं लोग, कभी कभी घातक सिद्ध हो जाता है। लोग बदले की भावना रखते हैं और परिणाम स्वरूप कई बुरे काम भी हो जाते हैं।
1: वहीं एक साथ ही लिखते हैं कि इन मंचों पर लोग विचार खुलकर व्यक्त करते हैं, लेकिन इन मंचों पर होने वाले वाद विवाद अक्सर ऐसी दिशा में ले जाते हैं जहां सार्थक चर्चा की बजाय समय और ऊर्जा की

0: बादी होती है। लोग अपनी बात को सही साबित करने के लिए घंटों तक तर्क वितर्क करते रहते हैं, अंत में चर्चा किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के बजाय आरोप प्रत्यारोप और कटुता में बदल जाती है, और ऐसे वाद विवाद हमारा मानसिक तनाव भी बढ़ाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा सोनाली इन्होंने, और एक बात हम भी कहेंगे कि बहुत सारे लोग तो ऐसे भी है सोनाली जो व्यक्तिगत द्वेष को भी उस पर निकाल लेते हैं। मसलन किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हमें कुछ कहना है तो हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लग गए हैं आजकल, और उनके बारे में अभद्र टिप्पणियां अभद्र बातें करने लग गए हैं। तो इस तरह से कितना बुरा लगता है, आप सोचिए कि जब हम किसी व्यक्ति विशेष को लेकर भी टीका टिप्पणी करने लग जाते हैं और अपना मन का विकार इस रूप में निकालते हैं, इससे बड़ी कायरता और क्या हो सकती है।
0: और क्या होता है ना कि ये जो समय इतना मूल्यवान है कि जिस उम्र में हमें अपना करियर बनाना है, कुछ अच्छा पढ़ना है, अच्छे संस्कार हमें अपने अंदर समाहित करना है, उस वक्त हम इन सब बिना काम की चीजों में उलझे हुए हैं, फिर ये समय तो फिर नहीं आएगा ना।
1: बिल्कुल, कभी समय लौट कर नहीं आता, बल्कि आप ही बाद में जो है एक तरह से दुख करते हैं कि हम धोखा खा गए, समय निकल गया और अब पछताई होश किया जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ पर ये बात आती है जो हमने आज का विषय रखा है ना, संयम, वो यहाँ काम आता है ना, कि जीवन में संयम का कितना ज्यादा स्थान है और किस तरह से हमें हर विचार को एकदम तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसके लिए वो संयम रखना चाहिए। तो हमारे श्रोता लिख भी रहे हैं कि भाव, विचार, वाणी और व्यवहार ये संयम के चार स्तंभ हैं। संयम का सही अर्थ है आत्मनियंत्रण, धैर्य और संतुलन। ये किसी भी परिस्थिति में विशेषकर उकसावे, गुस्से या लालच के क्षणों में अपनी भावनाओं, इंद्रियों और इच्छाओं को काबू में रखने की एक मानसिक क्षमता है।
0: एक साथ ही लिखते कि मन, वचन, इंद्रियों और वाणियों पर आत्मनियंत्रण ही संयम है। भगवद गीता में कहा है कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन मित्र है, और जिसने ऐसा नहीं किया उसका मन शत्रु है। तो भैया अपने मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है।
1: वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि संयम मतलब मन, वाणी और कर्म पर स्वयं का नियंत्रण। मन जब कुछ गलत चाहे, जुबान कुछ गलत बोलना चाहे या शरीर कुछ अलग करने की कोशिश करे, तब खुद को रोक लेना ही संयम है। संयम हार नहीं ठहराव है। बहुत अच्छा लिखा है। देखिए, गुस्से में बोला गया एक भी गलत शब्द जीवन भर के रिश्ते को खत्म कर देता है, और संयम से बोली गई बात रिश्तों की मिठास को कायम रखती है। जिसने संयम साध लिया मतलब उसने खुद को जीत लिया।
0: क्या बात है। एक साथ ही लिखते हैं, संयम वो खामोशी है जिसमें जल्दबाजी नहीं होती लेकिन समझदारी की आवाज साफ सुनाई देती है। हर ताकत दिखाई नहीं देती, कुछ ताकतें संयम बनकर भीतर रहती है, सही समय पर अपना प्रभाव दिखाती है। संयम का फल सिर्फ सफलता नहीं मन की शांति भी होता है। जो व्यक्ति अपने शब्दों, भावनाओं और निर्णयों को संतुलन रखता है उसके व्यक्तित्व में अलग ही गरिमा दिखाई देती है। संयम जीवन की पतंगी की वो डोर है जो उसे ऊंचाई तक भी ले जाती है और बिखरने से भी बचाती है। नदी की गहराई और इंसान का संयम दोनों शोर नहीं करते लेकिन उनकी शक्ति बहुत दूर तक महसूस होती
1: है। क्या बात है, बहुत सुंदर लिखा है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संयम वो शक्ति है जो मनुष्य को परिस्थितियों का दास नहीं बल्कि उनका स्वामी बनाती है। आज की तेज रफ्तार जीवन में हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है, ऐसे समय में संयम हमें सिखाता है कि बड़े लक्ष्य धैर्य मेहनत और प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं। एक बीज भी जब वृक्ष बनने में समय लेता है, उसी प्रकार जीवन में उपलब्धि भी समय और निरंतर प्रयास मांगती है। बिल्कुल, हम कई बार अपना आपा खो देते हैं, मेहनत करते हैं और हमें फल नहीं मिलता ना, तो हम अपना संयम खो देते हैं।
0: एक साथी ने लिखा है कि कई बाधाएं, कई कठिनाइयां, कई कांटे मुझे मिले जीवन के पथ पर, परंतु मैंने संयम रखा, हिम्मत न हारी और माता रानी पर अटूट विश्वास रखा, और आज इस मुकाम पर पहुंच गए हूं कि शादी के बाद मेरे संयम को कायम रखने में मेरी धर्म पत्नी ने बहुत सहयोग दिया। मेरा सभी सखियों सखाओं से यही कहना चाहूंगा कि अपने इष्ट पर विश्वास रखें और संयम रखते हुए कठिनाइयों का सामना करें, सफलता जरूर मिलेगी।
1: बिल्कुल सही कहा, और संयम का तो बहुत बड़ा स्थान होना चाहिए जीवन में। आपने देखा होगा सोनाली, अभी कई बार हम पढ़ते हैं जिसका जिक्र हम कई बार करते हैं कि एग्जाम नहीं हुए, एग्जाम में कोई दिक्कत हो गई, हम पास नहीं हुए, उतने नंबर नहीं मिले, तो बच्चे जो है सुसाइड कर ले रहे हैं, आत्महत्या की ओर चले जा रहे हैं। तो ये वही है कि वो संयम जो आपा खो रहे हैं, धैर्य खो दे रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें संयम से काम लेना चाहिए। आज
0: इस
1: नहीं
0: साल
1: तो
0: नहीं तो अगले साल आपको परीक्षा में सफलता मिल ही जाएगी,
1: जिंदगी
0: और इतना सुंदर जीवन है मिला
1: उसको
0: है,
1: हम खत्म कर दें
0: जी। तो बच्चों को ये हमें, और क्या होता है ना, इसमें हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं कि बच्चों ने किसी चीज की जिद की तो हम तुरंत उन्हें ले देते हैं। उन्हें संयम अंदर से सीखने की चीज है कि वे बोला कि आज ही चाहिए, ये डिश आज ही बनना चाहिए, तो तुरंत मम्मियों का प्यार उमड़ पड़ता है कि नहीं आज मांगा है तो आज ही दे देना है, आज उन्होंने कोई खिलौना मांगा है तो आज ही लाकर देना, आज उन्होंने कोई कपड़े की जिद की है तो वही हम लाकर देते हैं। तो हमें भी उन्हें थोड़ा सा संयम से काम ले

0: के लिए कहेगी ठीक है आज टाइम नहीं है तो हम कल जरूर ला के देंगे या दो चार दिन बाद ला के देंगे।
1: बिल्कुल,
0: तो बचपन से ही उन्हें इस
1: ये
0: तरह
1: संयम
0: से
1: सिखाया जाए। और दूसरा वही कि परीक्षा में अंक लाना महत्वपूर्ण है लेकिन अपनी जान से ज्यादा नहीं है, उनको संयम में रहना सिखाएं। कोई बात नहीं बेटा, इस बार आपके नंबर कम आ गए, आप उतने नंबर नहीं ले पाए, अगली बार मेहनत करिए, ना कि आप अपने जीवन को ही
0: समाप्त
1: कर ले, है ना। तो ये संयम हर जगह जरूरी है और अब हमें संयम हमें भी रखना चाहिए बोलने का,
0: गाना
1: सुनाना चाहिए।
0: सुना।

0: मंदाकिनी जी, हमारे
1: जी
0: बहुत सारे साथियों ने, हमारे सखियों ने जो ना अचार और मुरब्बे की बहुत सारी रेसिपीज लिखकर भेजी है। तो आम का मुरब्बा, कच्चे आम इन्होंने लिखा है, कैरी 1 किलो कतलों में कटे हुए, गुड़ 800 ग्राम से 1 किलो बारीक कुटा हुआ, सौंफ 1 छोटा चम्मच, हल्की दरदरी और कलौंजी आधा छोटा चम्मच, इलायची एक छोटा एक पाउडर छोटा चम्मच, उसके अंदर भुना जीरा 1 छोटा चम्मच, काला नमक 1 छोटा चम्मच और लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच। बनाने की विधि है कि आम के कतलों को उबाल ले, अब एक कढ़ाई में बारीक कुटा हुआ

0: गुड़ और आधा कप पानी डाले और पकने दे। गुड़ की चाशनी बनाने पर इसमें उबले हुए आम के कतले डाल दे। इसे मध्यम आंच पर पकने दे। आम के टुकड़े गुड़ की चाशनी को सोख कर एकदम रसीले और पारदर्शी हो जाएंगे। इसी समय इसमें सौंफ, कलौंजी, काला नमक और लाल मिर्च पाउडर भी मिला दे। जब चाशनी शहद की तरह गाढ़ी और एक तार की हो जाए तो इसमें इलायची पाउडर और भुना हुआ जीरा पाउडर डालकर मिला ले। आम का गुड़ वाला मुरब्बा तैयार है। ठंडा होने पर कांच की बरनी में रखे। इसे पराठे के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ खाया
1: जा सकती है। इसका मतलब हमारी सभी बहनें प्रेस करने में नहीं लगी है ना
0: कुछ मुरब्बे और अचार
1: बना रही है। मुझे तो डर था कि आज हमें अचार और मुरब्बा खाने को मिलेगा भी कि नहीं, क्योंकि एक सखी ने लिख दिया था कि वो तो प्रेस कर रही है,
0: और एक सखी कह रही है कि हम बैठ के सुन रहे हैं
1: तो फिर हम क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे ये अचार और मुरब्बे। तो इसका मतलब हमारी सखियां जो है हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़ी हुई है और लगातार जो है मुरब्बा और अचार बनाने की तैयारी भी कर रही है ना। तो मैं पहले एक संदेश सुना दूं, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं।
0: जी।
2: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
3: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
2: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
3: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
2: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
3: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
2: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
1: तो सोनाली, हमारे सभी सखी और सखा जान गए होंगे कि आज के मेहमान कार्यक्रम में 4 बजे ये बातचीत वो सुन सकते हैं।
0: हम भी सुनेंगे इनके साथ में।
1: बिल्कुल, हम तो सुनेंगे ही और साथ में कैरी का अचार या मुरब्बा भी खाते जाएंगे। ठीक है। तो भाई, एक सखी लिखती है कि गुड़ और कैरी का गुजराती स्टाइल का अचार है। इसमें कच्ची कैरी है यानी कच्चा आम, 1 किलो गुड़, 1 किलो छोटे टुकड़ों में कटा हुआ होना चाहिए गुड़, चीनी 1 कप गुड़ के साथ मिलाने से अचार का टेक्सचर अच्छा होता है। अचार का मसाला 200 से 250 ग्राम, राई की दाल, मेथी की दाल, सौंफ, दरदरी, कुटी धनिया का मिश्रण, कश्मीरी लाल मिर्च, 2-3 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर, 3-4 छोटे चम्मच नमक स्वादानुसार, चम्मच आपको हींग लेनी है, तेल लेना है मूंगफली का या राई का, 1 कप गर्म करके ठंडा किया हुआ लौंग और काली मिर्च भी आपको लेनी है, साथ में 10-12। ठीक है। आम को तैयार करना है। कच्चे आम को धोकर अच्छी तरह सुखा लेना है। इसके बाद इसे छीलकर मध्यम आकार के टुकड़ों में काट ले, क्यूब्स जैसे बना ले। आम के टुकड़ों में 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी डालकर अच्छी तरह से इसे मिला ले और इसे ढककर 5-6 घंटे या रात भर के लिए आप छोड़ दें। अगले दिन क्या होगा कि आम के टुकड़ों को छानकर हमें अलग कर लेना है और जो पानी उन्होंने छोड़ा है वो हटा देना है। आम के टुकड़ों को सूती साफ कपड़े पर फैलाकर 3-4 घंटे के लिए पंखे की हवा देनी है ताकि उनके अंदर जो नमी होती है ना वो खत्म हो जाए। फिर मसाला तैयार कर लें। एक बर्तन में अचार का मसाला डालें, हल्दी, हींग भी डाल लें, इसके ऊपर हल्का गरम किया हुआ तेल डाल दें और ढककर कुछ देर के लिए छोड़ दें। मसाले को पूरी तरह ठंडा होने दें। अब इसमें भुना हुआ नमक डालें, कश्मीरी लाल मिर्च डालें, लौंग डालें, काली मिर्च डालें, इन सबको मिलाना है। फिर अचार को कैसे मिलाना है, एक बड़े और सूखे कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन में जो सूखे हुए आम के टुकड़े हैं और तैयार मसाला है उनको डालकर अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें गुड़ और चीनी डाल दें। सभी सामग्रियों को साफ हाथों से या सूखी चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर दें। बर्तन को सूती कपड़े से बांधकर 2-3 दिन तक धूप या छाया में रखें और दिन में 3-4 बार अचार को चम्मच से ऊपर नीचे या हिला लें। 3-4 दिनों में गुड़ और चीनी पिघल कर चाशनी बन जाएगी और आम के टुकड़ों के साथ मिलकर गाढ़ा रसा तैयार हो जाएगा और आप एक गुजराती जो है ये गुड़ कैरी का अचार खा सकते हैं।
0: मेरे तो मुँह में पानी आ गए। फेफले के साथ में कितना अच्छा लगेगा ना।
1: क्या बात है, तुम्हें तो मुरब्बे की भी याद लग रही है।
0: अब मुरब्बा बनाने की सरल विधि है तो इन्होंने कहा है कि 1 किलो फल जैसे आंवला है या फिर कोई भी फल ले सकते हैं और 1.25 किलो चीनी है, 4 से 5 कप पानी है, 4-5 इलायची, फलों को अच्छी तरह से धो ले और फलों को कांटे से गोंद ले ताकि चाशनी अंदर जा सके, हल्का सा उबाल ले उन फलों को और फिर बर्तन में चीनी और पानी मिलाकर एक तार की गाढ़ी चाशनी तैयार करें। चाशनी में फल डालकर धीमे आंच पर पकाएं। जब फल पारदर्शी दिखने लगे और चाशनी गाढ़ी हो जाए तब इलायची पाउडर डालें। ठंडा होने पर साफ सूखे कांच के बर्तन में भरें मुरब्बा जितना पुराना होगा उतना स्वाद और उतना ही अच्छा होगा।
1: हाँ, वही एक सखी ने लिखा है कि हम जो सिंपल सा अचार बनाते हैं वो बता देते हैं। बिल्कुल।

0: वैसा अचार भी बहुत अच्छा लगता है। अभी आम का अचार डालने का सही समय है, वो कह रही है। हम नाप तोल कर नहीं बनाते, बस सबसे पहले कैरी को धोकर सुखा लेते हैं, उसमें थोड़ा नमक हल्दी डालकर उसको रख देते हैं, दूसरे दिन उसका पानी हटाकर थोड़ा सुखा लेते हैं बस। फिर कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म कर लेते हैं, जब थोड़ा ठंडा हो जाए उसमें अचार मसाला डालकर मिला लें और उसमें इन कैरियों को डालकर मिला लें और साफ सूखी कांच की भरनी में डाल दें। कुछ दिनों तक उसे रोज बार बार हिलाएं, तेल ऊपर तक होना चाहिए ताकि अचार जो है खराब नहीं होगा। अगर तेल ज्यादा नहीं डालना हो तो मसाले थोड़ा ज्यादा डाल दें और कैरी को अच्छे से सुखा कर उसमें डालना है और लगभग हिलाते रहना है जब तक कैरी पक नहीं जाती है।
1: और अब क्या करना है?
0: अब तो हमें बहुत अचार खिला दिया है श्रोताओं को हमने।
1: अचार और मुरब्बा खा लिए तो मीठा मीठा गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुन लेते हैं।

0: हमारे एक साथी लिखते हैं कि ये एकदम गलत बात है, ये गीत आप ऐसे वक्त सुनाते हो जब जाने का समय हो जाता है, अभी न जाओ छोड़कर। एक सखी ने लिखा, अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, काम करते करते अब संयम खो दिया और फोन लेकर बैठ गई।
1: लेकिन आपने सही कहा, हमें तो जाना होगा, इसलिए हम कहेंगे कि अब रुकेंगे नहीं नहीं
0: नहीं। तो इजाजत लेते हैं आप सभी को सोनाली पाठक
1: और मंदाकिनी जोशी का।

0: नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आज के मेहमान में मशहूर चित्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत। दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो में हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने एक ऐसे कलाकार को, एक ऐसे आर्टिस्ट को बुलाया है जो कला में माहिर है, जो रंग भरते हैं, जो अपनी पेंटिंग में रंग भरते हैं, जिंदगी में रंग भरते हैं। अखिलेश जी की पेंटिंग्स आधुनिक अमूर्त कला और लोक संवेदनाओं का अनूठा संगम है। उनकी कृतियों में रंग केवल सजावट नहीं होते बल्कि वे भावनाओं की भाषा बन जाते हैं। वे कैनवास पर ऐसी आकृतियां और रेखाएं रचते हैं जो पहली नजर में थोड़ी रहस्यमय लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे दर्शक को अपने भीतर के अनुभवों और स्मृतियों से जोड़ देती हैं। बहुत सारी बातें अखिलेश जी के बारे में हम आपको बताते रहेंगे इस कार्यक्रम में आज के मेहमान में। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला और अपने देश के जाने माने पेंटर अखिलेश जी का विविध भारती के स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं। अखिलेश जी नमस्कार, स्वागत है
1: जी। नमस्कार,
0: कैसा लग रहा है आपको विविध भारती के स्टूडियो में आकर?
1: विविध भारती एक ऐसी चीज है जो बचपन से आपकी स्मृति में है और हम लोग बहुत जब छोटे थे जब से विविध भारती सुनते आ रहे हैं, और खास तौर पे हमारे पिता वो शास्त्रीय संगीत का जो कार्यक्रम आता था
0: संगीत सरिता
1: अभी भी आता है। उसमें हाँ, उसको हम लोग बहुत सुना करते थे। और वो समय कुछ ऐसा था कि आप उस वक्त अपने आप रेडियो के पास होते थे और संगीत सरिता का वो कार्यक्रम सुनते थे। तो हमारे यहाँ वो एक ज्वाइंट फैमिली होने से 10 बच्चे थे, तो सभी के भीतर विविध भारती के साथ एक गहरा संबंध बहुत शुरू से अनजाने ही बना।
0: जी जी। और पिता का जिक्र किया, आपके पिता खुद ड्राइंग शिक्षक थे, मेरे ख्याल से पहले स्वर्ण पदक विजेता, तो आपने क्या चित्रकला की जो पहली तालीम होती है उन्हीं से ली?
1: ऐसा कहा जा सकता है कि मैं जब छोटा था तो हमारे घर में पिता के कारण सारे जो बच्चे थे सभी लोग पेंटिंग करते थे, तो उस दौरान मेरे को पेंटिंग करने में कोई रुचि नहीं थी क्योंकि सब लोग एक ही काम कर रहे हैं।
0: अच्छा।
1: तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं करता था। और मैंने फिर 11th क्लास में पेंटिंग सब्जेक्ट लिया और उसके साथ मैंने अपना जीवन शुरू किया। और फिर अगले साल मैंने कॉलेज में, फाइन आर्ट्स कॉलेज इंदौर का जो बड़ा प्रसिद्ध फाइन आर्ट्स कॉलेज है, वहां एडमिशन

0: लिया और विधिवत कला शिक्षा प्राप्त करना शुरू करी। तो वहां हमारे प्रिंसिपल होते थे चंद्रेश सक्सेना, हमारे टीचर होते थे रामनारायण दुबे, इन लोगों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा और इन लोगों ने एक्चुअली आंखें खोलने का काम किया कि चित्रकला क्या है। हमारे पिता जो थे वो मिनिएचर के मास्टर थे, मतलब मिनिएचर की उनकी बड़ी गहरी समझ थी और वो उसके बारे में बताया करते थे और हमें अजंता एलोरा ले जाना, खजुराहो ले जाना, इस तरह के जो ऐतिहासिक स्थल हैं, जो बड़े मंदिर हैं, वहां ले जाया करते थे और उन सब की शिक्षा वो दिया करते थे, उनके बारे में बताया करते थे। मगर जो कंटेम्पररी आर्ट का जो समझ पैदा हुई मेरी कॉलेज में आने के बाद भी
1: जी, वहीं से पेंटिंग से आपका जुड़ा हुआ।
0: जी हाँ।
1: तो आपके बारे में ये बात प्रसिद्ध है कि 20 बरस की उम्र में ही आपकी पेंटिंग की प्रदर्शनी लग गई थी और बहुत बड़ी पेंटिंग आपने बनाई थी, वो क्या बात है हमारे श्रोताओं को?
0: जी जी, जब मैं 20 साल का था तब मैं कॉलेज के तीसरे वर्ष में पढ़ रहा था और उस वक्त कोई स्टूडेंट वन मैन शो करे ऐसा संभव नहीं होता था, मतलब उसके लिए रास्ता नहीं था कि आप, किंतु मेरे पिता चूंकि खुद चित्रकार थे उनका मेरे को बहुत सपोर्ट था और उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ तुम करना चाहते हो तो जरूर करो। और फिर मैंने एक ड्राइंग का शो किया जो कि 110 फीट लंबा अकेला एक ड्राइंग था जिसको देख करके जाहिर है इंदौर के उस वक्त के जितने हमारे कलाकार दोस्त थे और हमारे वरिष्ठ कलाकार थे उन सभी लोगों को एक अलग रोमांच की बात थी कि गैलरी में आप घुसें और ड्राइंग शुरू हो और गैलरी से जब आप बाहर निकले तो ड्राइंग खत्म हो।
1: क्या बात है
0: तो वो एक शुरुआत थी और मैंने सोचा कि जब हमको एंट्री लेना है आर्ट फील्ड में, यही करना है या यही रहना है, तो फिर एक कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी एक इमेज बने या बनना शुरू हो।
1: जी, तो ये जो इमेज बनाने वाली बात है, फिर आपने अपनी इमेज बनाने के साथ साथ आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की ओर झुका हुआ आपका, तो ये किसी ने आपको सलाह दी या आपने खुद चुना, क्या था आपके मन में
0: उस वक्त? हमारे कॉलेज में एक विषय होता था जो कंपलसरी सभी को करना होता था, वो था कॉपी एनी वेस्टर्न मास्टर। तो चूंकि मैं बचपन से ही मिनिएचर पेंटिंग के किताबें और हमारे पिता के कारण उनसे मेरा एक बड़ा गहरा संबंध था, कांगड़ा वैली के या भसौली या बूंदी या इन सारी कलम से बहुत ही परिचित था मैं, तो मैंने हमारे टीचर से कहा कि मैं एक इंडियन मास्टर को कॉपी करना चाहता हूँ बजाय वेस्टर्न मास्टर के, तो क्या मुझे ये परमिशन होगी और मैं चाहूंगा कि मुझे नंबर भी उसी पे मिले
1: जी जी।
0: और अगर आप कहें तो मैं दो वेस्टर्न मास्टर की कॉपी भी बना के दे दूंगा, मगर मैं चाहूंगा कि मेरे को जांचा परखा इसी से जाए जो मिनिएचर। तो फिर उन्होंने सिलेबस में चेंज किया और मुझको अलाउ किया कि हाँ आप मिनिएचर बनाए। तो उस दौरान मैंने बहुत सारे मिनिएचर उनका गहन अध्ययन किया कि कौन सा बनाना चाहिए। तो उसमें जो मैंने चुना था उसमें तो 200-300 इमेजेस थी, आकृतियां थी, किंतु उसी वक्त एक पेंटिंग मेरे मिनिएचर ध्यान में आया कि इसमें एक अभिसारिका जो है जंगल से गुजर रही है और अपने प्रेमी से मिलने जा रही है। तो जो नायिकाओं के भेद है उसमें अभिसारिका वो नायिका है जो खुद अपने प्रेमी से मिलने जाती है। तो जंगल में शेर चीते और जंगली जानवर और सब चारों तरफ खड़े हैं, भूत प्रेत और चुड़ैल भी हैं, मगर इन सब से निडर निर्भीक, इन सब की तरफ कोई ध्यान न देते हुए वो अपने चली जा रही है। तो मैंने सोचा कि इतने गहरे अंधकार में वो अपना रास्ता कैसे देख रही है? तो वो उसके हाथ में न कोई प्रकाश का स्रोत है, न कोई लालटेन है, न कोई दिया है और वो चली जा रही है। तो फिर ध्यान गया मेरा ऊपर, बादलों में बिजली कड़क रही है, तो बिजली की रोशनी में वो अपना रास्ता देख रही है। तो जब मैंने बिजली की तरफ देखा तो वो बिजली भी बिजली नहीं थी, दो लहराते हुए सांप बने हुए थे सुनहरे रंग के, मतलब बिजली भी नहीं कड़क रही थी, तो वो अपने कामना के प्रकाश में अपना रास्ता देख रही थी। तो ये जो एब्स्ट्रैक्शन था ये मेरे लिए बहुत ही दिमाग को
1: मंथन करने
0: हिला देने वाला था और मेरा ध्यान फिर चित्रकला में अमूर्तन की तरफ गया कि भई हमें अमूर्तन की तरफ ही जाना चाहिए, सोचना चाहिए, अपने को बरतना चाहिए। तो इस तरह से मैंने फिफ्थ ईयर से अमूर्तन में काम करना शुरू किया जो फाइनल ईयर होता था हमारा, और उसमें फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं होती थी उसमें एक विषय दिया जाता था, उसको आपको बनाना होता था। तो हम लोगों को विषय था पनिहारिन, और वो पनिहारिन जो है वो उसमें पांच फिगर बनानी होती थी और वो कुआं और ये सब जो पानी भर

0: इस तरह का कुछ। मैंने उस वक्त फिर बनाया जो चित्र था एब्स्ट्रैक्ट बनाया कंप्लीटली, और मैंने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा मुझे फेल करेंगे और क्या होगा, किंतु मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी, मैं अकेला सारे छात्रों में, हमारे उस वक्त हमारे इंदौर ग्वालियर जबलपुर सबकी एग्जाम एक जगह होती थी, तो हम लोगों की एग्जाम ग्वालियर में हुई थी, तो मैं अकेला फर्स्ट डिवीजन पास हुआ था, बाकी सारे लोग सेकंड डिवीजन में थे।
1: क्या बात है।
0: तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि मेरे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में मुझे नंबर मिले।
1: जी जी।
0: और हमारे जो भी देखने वाले थे जांचने वाले थे उन्होंने ये ख्याल रखा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, तो वो एक शुरुआत थी मेरी अमूर्तन की तरफ जाने की।
1: अखिलेश जी, आप जब ये बता रहे थे कि ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में ये सारे चित्र उकेरते हैं कि जंगल है और वहां पर जंगल में वन प्राणी है और ये सब, तो मेरी आंखों के सामने वो दृश्य पैदा हो रहा है। ये शब्दों के माध्यम से दृश्य पैदा करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन पेंटिंग में किस तरह की चुनौती होती है? ये सारे दृश्य आप बता रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन एक पेंटिंग को एक आम दर्शक देखता है तो कैसे इनको ग्रहण करता है? तो आपके लिए बहुत सारी चुनौतियां होती होंगी, किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, किस तरह की कोशिश आप करते
0: हैं? मैं तो इस तरह की कोई कोशिश नहीं करता हूं कि लोगों को ये समझ में आए, मगर जब हम चित्र देखते हैं तो हम लोग दरअसल पहले से जो हमारे पूर्वग्रह हैं उनसे संचालित होकर के चित्र देख रहे होते हैं। चित्र देखने का एकमात्र ढंग जो है वो समर्पण भाव से देखना है। अगर आप उसको पूरी तरह से अपनी जो भी समझ है उसको छोड़ करके एक मनुष्य की तरह देख रहे हैं, क्योंकि जो आंख मुझे मिली है वही आंख एक दर्शक के पास भी है, और जितना मैं देखता हूं उतना वो भी देखता है, तो मैं उनके देखने पे संदेह नहीं करता हूं और मैं चाहता हूं कि उनका देखना जागृत हो। और उसमें जो चुनौतियां होती हैं चित्र बनाते वक्त, वो चुनौतियां दूसरी तरह की होती हैं, जिसमें रंग एक चुनौती है अपने आप में, फॉर्म एक चुनौती है अपने आप में, और रेखा एक चुनौती है कि आप इनका कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, आप किस रंग के साथ कौन सा रंग लगाएं कि दोनों रंग जो है आपस में संवाद करते दिखें। तो ये जो चीजें होती हैं वो दूसरी तरह की चुनौतियां हैं, जो चित्रात्मक चुनौतियां हैं कायदे से देखा जाए तो। और ये जो सामाजिक चुनौतियां हैं देखने की और समझने की, इसके लिए एक पूरा अलग व्यापार है जो उसको फॉलो करना चाहिए देखने वाले को, या उसको। मैं तो देखता हूं कि जो हमारे जंगल में रहने वाले आदिवासी कलाकार हैं, जब वो भारत भवन आते हैं और भारत भवन की आधुनिक कला दीर्घा में वो प्रवेश करते हैं, और तो मैं देखता हूं कि वो लोग तो सारे चित्रों को खुशी से एंजॉय करते हैं।
1: क्या बात है।
0: तो उनके पास ऐसा कुछ पहले से प्री कंसीव्ड आइडिया नहीं है चित्र का, तो जो चित्र देख रहे हैं उसके साथ वो एकाकार हो जाते हैं तत्काल ही, जैसे कि वो प्रकृति के साथ एकाकार रहते हैं। तो ये जो उनका एक समर्पण भाव है जिसमें वो अपने देखने को पूरी तरह से बरतते हैं, तो मुझे लगता है कि हर मनुष्य ये कर सकता है कि वो अपने देखने को जागृत करके अपना देखना वैसा ही निर्दोष रखे जैसा कि होता है।
1: जी जी। चित्र कला और संगीत का बड़ा गहरा संबंध है। हमने कई पेंटर्स के बारे में सुना है कि वो साथ में रेडियो लगा देते हैं, रेडियो बजता रहता है और चित्रकारी करते हैं। बहुत बड़े बड़े पेंटर्स ने खास तौर से विविध भारती के लिए कहा है, आपने भी इसका जिक्र किया। अभी इस वक्त कौन सा गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं?
0: मैं सुनाना चाहूंगा किशोर कुमार का एक गाना है, वो शाम कुछ अजीब थी।
1: इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद है क्या आपकी?
0: इस गाने से जुड़ी हुई नहीं, ये गाना मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। किशोर कुमार की जो आवाज है उसमें जो कशिश है वो एक इस गाने को खास बनाती है, और उसमें एक विचित्र किस्म की उदासी फैलती है, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती
1: जी,
0: है।
1: जी। और किशोर कुमार हमने सुना है कि आपके घर भी आया करते थे?
0: किशोर कुमार मेरे पिता के साथ पढ़ते थे और क्रिश्चियन कॉलेज में वो लोग पढ़ाई करा करते थे, तो जब वो पहली बार हमारे घर आए तो मेरे दादाजी का एक पायदानी हारमोनियम था घर में, तो उसको देख के किशोर कुमार बहुत ही खुश हुए, और फिर एक नियमित वो हो गया कि वो अपना कॉलेज खत्म करके हमारे घर आ जाते थे, फिर देर रात को ही जाया करते थे, वो सिर्फ गाना गाते थे। और उस वक्त वो इतना शर्माया करते थे, ऐसे हमारे पिता बताते हैं, कि वो कोई अगर बाहरी व्यक्ति आ जाए तो गाना बंद कर देते थे।
1: ओ, क्या बात है। तो ऐसी तमाम यादें होती हैं, हमें लगता है कि जब आप रंग भरते होंगे तो इन यादों को का भी समावेश करते होंगे। फिलहाल हम ये गाना सुनते हैं
0: जी।
2: ओ, शाम, कुछ

0: गाने के बाद हम आते हैं उस मुद्दे पर। अखिलेश जी, आपकी पेंटिंग में, आपकी चित्रकारी में मध्य प्रदेश की आदिवासी संस्कृति, लोक जीवन और बहुत कुछ देखने को मिलता है, एक पूरी परंपरा देखने को मिलती है मध्य प्रदेश की। तो ये बताइए हमें कि ये आपकी खुद की कल्पनाशीलता है या फिर आप जाते हैं, रिसर्च करते हैं, उन आदिवासी लोगों से मिले, उनकी संस्कृति को जाना, खंगाला, बताइए विस्तार से।
1: हाँ, ये हुआ मेरे साथ जब मैंने भारत भवन में ज्वाइन किया और वहाँ पर हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने एक नया देखना इंट्रोड्यूस किया था जिसमें उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और वो साथ साथ एग्जिबिट थे एक ही छत के नीचे। तो उस तरह से मेरा भी संपर्क जो है आदिवासी कला से वहां से शुरू होता है और उसके बाद उन सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर उन के गांव जाना, उनके गांव में जाकर के उनके साथ काम करते हुए समय बिताना, ये सारा चीज जो है उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में। तो वो उनका जो देखना है वो इतना निर्दोष है और उनका जो देखना है उतना गहरी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, वो मुझे लगता है कि एक शहरी कलाकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो अपनी इस आस्था को कहां से अपने चित्रों में प्रकट करें। तो ये जो देखना था और ये मेरा जो उनके साथ संपर्क था, उनके साथ का एक बिताया हुआ समय था, उन सब ने मुझे प्रेरित किया अपनी सीधी साधी अप्रोच की तरफ। तो उसका एक प्रभाव पड़ता ही है। और फिर हम देखते हैं कि अगर पॉल क्ले के चित्र देखें या पिकासो के आखिरी चित्र देखें तो वो लोग भी इसी सिंप्लिसिटी की तरफ आखिर में जाते हैं। जो हुसैन हो चाहे वो चाहे रजा हो, वो अपने मनुष्य होने का एहसास धीरे धीरे जब उन्हें होता है तो वो उसी सादगी, उसी आस्था और उसी मूल जो हमारी भावनाएं हैं उनकी तरफ चले जाते हैं। तो ये चीजें जो है बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज है जिसका रियलाइजेशन आपको पेंटिंग करने के दौरान ही होता है,
0: मिलता है। कोई यादगार घटना या कोई यादगार बात आपके जहन में आ रही इस समय कि आप कहीं गए हों और किसी विशेष घटना से प्रभावित होकर कोई विशेष पेंटिंग बनाई हो?
1: वैसे तो मैं घटना से प्रभावित होकर के या प्रेरित होकर के चित्र नहीं बनाता हूं, क्योंकि ये प्रेरणा के जो स्रोत हैं वो बदलते रहते हैं, वो बदलते रहे हैं। और अब मेरे लिए जो प्रेरणा का स्रोत है, इसके पहले तक ये था कि मेरा पिछला चित्र ही मेरे प्रेरणा का स्रोत होता था, अब मेरे लिए जो रंग हैं वो प्रेरणा के स्रोत हैं, वो

बहुत ही बड़ी चुनौती भी है। मैं देखता हूँ कि हर रंग अपने में एक प्रश्न है जिसको रिजॉल्व करना के लिए पूरा एक जीवन चाहिए है। मतलब आप रंग के स्वभाव को जब जानना शुरू करते हैं तो वो खुद आपको चमत्कृत करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। उदाहरण के लिए जैसे मैंने एक कैनवस पे रंग लगाया मेटेलिक ऑरेंज, जो कि बहुत

0: करे, उसको आगे बढ़ने में, चित्र को आगे बढ़ने मेरी सहायता करे। और तीन चार दिन के बाद मैंने उसके ऊपर एक फ्लोरोसेंट कलर ऑरेंज का डॉट लगाया, और मेरे लिए बहुत ही बड़ा चमत्कार जैसा था कि वो जो पिछला पूरा मेटेलिक ऑरेंज था वो ब्राउन कलर में बदल गया। और तब मुझे एहसास हुआ कि इसके अंदर एक ब्राउन कलर भी छिपा हुआ था जो एक दूसरे रंग के संपर्क में आने से प्रकट हो गया। तो ये जो रंग अपने भेद खोलते हैं किसी एक दूसरे रंग के संपर्क में आने से, ये मेरे लिए सच में बहुत ही एक आश्चर्य की बात होती है और मेरे लिए चमत्कार। आप खुद ही चमत्कृत हो जाते हैं कि ये क्या है। तो इसने मुझे दिशा में डाला कि मैं रंगों के स्वभाव को समझने के लिए उनके साथ लगातार एक प्रयोगात्मक अप्रोच रखूं।
1: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक चित्रकार रंगों से कैसे प्रयोग करता है, कैसे खेलता है। हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता भी हैं जो चित्रकला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन बारीकियों के बारे में बताइए कि ये जो रंगों की बात की, तो आप रंग और रेखा के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं, किन रंगों का ज्यादातर प्रयोग करते हैं और किन रंगों को मिलाकर कौन सा रंग पैदा होता है, आपके पसंदीदा रंग कौन से हैं?
0: हाँ, मेरी पहले तो मेरे पसंदीदा रंग की बात करें तो शुरुआती तौर पे मेरे को लाल रंग बहुत ही पसंद था और वो एक बहुत बड़ी चुनौती भी था, किंतु अब मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे हरी रंग एक बड़ी चुनौती है। पीला रंग लगाना सबसे मुश्किल काम है।
1: हम अपने श्रोताओं को यहाँ बताना चाहेंगे हरा रंग आपको पसंद है और अखिलेश जी हरे रंग की शर्ट पहन के आए हैं, एकदम डार्क हरा, होता हरा और बहुत खिल रहा है इन पर ये रंग जी।
0: हाँ, तो मुझे मतलब फिर रंग बरतते वक्त कैनवास पे मुझे ये भी लगा कि मुझे उसे अपने जीवन में भी बरतना चाहिए, तो फिर मैं अपने कपड़ों में भी उनको ले आया और उस तरह से बहुत ही रंगों से जो डरते हुए लोग हैं, मतलब मैं उस तरह से डर के निसंकोच उनका प्रयोग करने लगा। तो ये जो रंग से आपको प्रेरणा मिलती है ये मेरे ख्याल से सभी दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण है कि आप रंग को जब देखते हैं तो ध्यान से देखें तो आपको उसके अंदर और भी चीजें नजर आने लगती हैं, कई रूप भी नजर आने लगते हैं, कई रेखाएं भी नजर आने लगती हैं। किंतु हम अपने देखने पे हमेशा इतना संदेह करते हैं कि हम उसको समझना चाहते हैं, जो कि एक गलत रास्ता भी हो सकता है। किसी चित्र को समझने की जरूरत नहीं है, उसे देखने की जरूरत है। तो जब आप देखना शुरू करते हैं तो आपके साथ उसका एक संवाद शुरू होता है और वो चित्र खुलना शुरू हो जाता है आपके साथ धीरे धीरे। आप अपने घर में लाके उसको लगाते हैं तो आप उसको रोज अगर देखते हैं तो रोज आपको एक नए कुछ उसमें चीजें नजर आने लगती हैं। तो वो एक तरह से ग्रो भी होता है आपके साथ रहते रहते, जैसे हम लोग भी ग्रो होते हैं वैसे चित्र भी विकसित होता रहता है लगातार। तो ये जो चीजें हैं हर दर्शक को ख्याल रखनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल, यहाँ पर हमें भी ख्याल रखना चाहिए कि एक गाना आना है, तो कौन सा गाना सुनवाएं?
0: मैं चाहूंगा कि भूपेन का एक गाना, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन,
1: मौसम फिल्म का गाना है
0: जी। हाँ,
1: सुनते हैं यही गाना।

0: गाने से पहले बात चल रही थी रंगों की, रंगों की बहुत सारी बातें आपने बताई और एक बात आपने और कहा कि भारत भवन ज्वाइन किया, इंदौर में आपने शिक्षा ली, तो इंदौर से भोपाल की यात्रा के बारे में संक्षेप में बताइए।
1: इंदौर से भोपाल में सीधे नहीं आया था, मैंने दो इंटरव्यूज दिए थे, एक बैंगलोर में दिया था एक भोपाल में दिया था, और संयोग से दोनों जगह मेरा अपॉइंटमेंट मतलब हो गया था। भारत भवन में अपॉइंटमेंट करने में थोड़ा सा टाइम था, तो उन्होंने कहा कि फिर 3-4 महीने लगेंगे, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं 3-4 महीने बेंगलोर चला जाता हूँ। तो फिर मैं बेंगलोर चला गया था और वहां से फिर मैं भोपाल आया। तो 82 में जब भारत भवन की शुरुआत हुई उसी वक्त फिर मेरा भोपाल आना हुआ, और फिर मैंने लगभग 22 साल भारत भवन में काम किया और प्रदर्शनी लगाना, कलाकारों से मिलना, बात करना, तो ये मेरे लिए भी एक बड़ा वो था। और वहाँ के जो निदेशक थे जगदीश स्वामीनाथन, जो हिंदुस्तान के बड़े चित्रकार हैं और बड़े विचारक भी हैं, जिन्होंने चित्रकला के लिए अपना जीवन भी बिताया, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। तो उनके सानिध्य में रह करके भी चित्रकला का संसार प्रकट हुआ
0: जी। और एक हमने घटना सुनी है कि आपकी पेंटिंग की प्रदर्शनी थी और कोई अमेरिकन व्यक्ति आया और उन्होंने आपकी सारी पेंटिंग खरीद ली थी, वो क्या घटना है जरा बताइए।
1: वो मेरा पहला वनमेन शो था बंबई में जहांगीर आर्ट गैलरी में, और ओपनिंग में चस्य हविस करके एक अमेरिकन कलेक्टर थे जो कि सालों से हिंदुस्तान आते थे और हिंदुस्तानी कलाकारों की चित्र खरीदा करते थे, तो वो संयोग से मेरे एग्जीबिशन में आ गए थे। और मैं चूंकि अमूर्त चित्र बनाता हूं, तो उन्होंने मेरे एग्जीबिशन से 4-5 चित्र खरीद लिए, जिसको देख करके मतलब जाहिर है एक अलग तरह का वो फैला, और वो पूरा एग्जीबिशन जो है मेरा आधे घंटे में सेल आउट हो गया था। तो ये मेरे लिए भी एक बड़ी चमत्कार की बात थी। और फिर दूसरे दिन चर्चा हबीज आए, उन्होंने फिर अपने को इंट्रोड्यूस करा और बताया कि भाई मैं हूँ मेरे कलेक्टर और मैं ये काम करता रहता हूँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, एक छोटा सा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। वो और उनकी पत्नी डेविडा दोनों थे, और फिर उन्होंने हमसे बात बात करी, तो काफी रुचि पूर्वक उनसे बात हुई। फिर मुझे बाद में पता चला कि वो हिंदुस्तान के जितने भी खास कलाकार थे उन सब के चित्र जो है वो खरीदा करते हैं, और उनका एक बड़ा कलेक्शन उनके पास था।
0: तो हम सब के लिए कितनी गौरव की बात है, हम सब हिंदुस्तानियों के लिए, कि विदेश से एक बंदा आकर अपने देश की चित्र को, अपने देश की कला को ले जाते हैं, तो हम सब के लिए फख्र की बात है और बहुत अच्छा लगा ये जानकर। मकबूल फिदा हुसैन से आपका नाता रहा है, और तो इनके बारे में बताइए, इनसे कुछ खास बारीकियां सीखने को मिली या आपने पिताजी से ही सब कुछ सीखा आपने?
1: हाँ नहीं, हुसैन

0: साहब से तो बहुत ही कुछ सीखने को मिला और हुसैन साहब के साथ एक ऐसा संबंध बना बाद में जा करके कि उनकी मैंने जीवनी भी लिखी और उनकी जीवनी जब पढ़ी उन्होंने और लंदन में मेरी उनसे मुलाकात हुई तो बोले यार हमारी ऑटोबायोग्राफी से आपकी बायोग्राफी ज्यादा पॉपुलर हो गई है क्योंकि उसका 6 महीने में दूसरा एडिशन छपा था तो इतनी ज्यादा वो बिकी थी। तो हुसैन साहब इस बात से बहुत ही खुश हुए थे, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद कराओ तो अपन लंदन में रिलीज करेंगे। और फिर वो अनुवाद इतने धीमी गति से हुआ, बाय द टाइम जब तक वो अनुवाद पूरा हुआ हुसैन साहब दुनिया में नहीं रहे, तो वो उनकी ख्वाहिश अधूरी रही। एक उनकी दूसरी भी ख्वाहिश थी, उनका 1956 में पहला वन मैन शो हुआ था प्राग में और वहां पर उनके साथ उनकी जो इंटरप्रिटेटर थी मारिया, उनके साथ उनका प्रेम शुरू हुआ और फिर बाद में उनसे वो शादी भी करना चाह रहे थे तो वो हो नहीं सके। और मारिया ने जब ये शादी करने के लिए गए उन्होंने मना कर दिया कि भाई आप दूसरी संस्कृति से आते हैं, मैं दूसरी संस्कृति को बिलोंग करती हूँ तो शायद ठीक से नहीं होगा। तो हुसैन साहब ने उस दौरान उन 4-5 सालों में 3 वन मैन शो किए थे प्राग में और तीनों उनको डोनेट कर दिए थे, गिफ्ट कर दिए थे। तो कई साल बाद 2002 में मैं जब दुबई गया तो हुसैन साहब ने मुझे बताया कि मारिया आजकल ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और एक बड़े फोटोग्राफर से शादी कर ली है उन्होंने और मैं अभी उनसे मिलने गया था तो उन्होंने मेरे 80 चित्र वो जो उनको मैंने भेंट करे थे वापस लौटा दिए और वो उन्होंने 80 चित्र जो है अपने घर के कमरे में पूरे डिस्प्ले कर रखे थे और वो बहुत महत्वपूर्ण चित्र इसलिए भी थे कि वो सारे चित्र 1956 के पहले के थे
1: जी,
0: और हुसैन साहब का हुसैन बनना 1956 में बिटवीन स्पाइडर एंड द लैंप नाम की पेंटिंग से होता है, उसके बाद हुसैन हुसैन बनते हैं। मगर ये सारे काम जो है 50 से लेके 55-56 तक के सारे काम थे और बड़े खूबसूरत काम थे, ये उस चरनी को दिखा रहे थे जो हुसैन साहब ने तय की थी अपने को पाने तक की। वो चाहते थे कि मैं हुसैन और मारिया के प्रेम प्रसंग पर एक नॉवेल लिखूं। तो मैंने कहा कि भाई उसके लिए मेरे को प्राग जाना होगा और आपके साथ ही जाना होगा। तो हुसैन साहब बोले कि हाँ ठीक है, तो तुम अक्सर अक्टूबर नवंबर में आते हो, अगले साल तुम जून में आना, तो मैं जून में फ्री रहता हूँ तो अपन दोनों चले चलेंगे प्राग और फिर मैं आपको उन सारी जगहों को ले जाऊंगा जहाँ हम लोग मिले थे और जो हुआ था। मगर नेक्स्ट ईयर जून 10 को उनकी डेथ हो गई तो वो हो नहीं पाया,
1: ख्वाहिश अधूरी रह गई।
0: तो उन्होंने जितना मुझे बताया था उसके आधार पर मैंने एक नॉवेल की शुरुआत का अंश लिखा हुआ है जिसका नाम है हुसैन और हसीना।
1: जी, तो हम शुभकामना करते हैं कि वो उपन्यास पूरा हो क्योंकि अब हमारी भी दिलचस्पी बढ़ गई है कि हम पढ़ना चाहेंगे। लेकिन जब आप ये बता रहे थे कि उन्होंने सारी पेंटिंग वापस कर दी।

यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं, बाबा कारंत की ऑटोबायोग्राफी भी आपने लिखी है, अब लेखन की बात चली है तो आपके लेखन के पक्ष को भी हम उजागर करना चाहते हैं।

0: अपने श्रोताओं को बता दें कि अखिलेश जी बहुत बढ़िया और इनके भी तो सुंदर कलम की ताकत है, बहुत बढ़िया लेखक भी हैं। तो आप इसके बारे में बताइए, कैसे बाबा कारंत की ऑटोबायोग्राफी लिखने की बात मन में आई, प्रेरणा मिली आपको?
1: हाँ, मैंने है ना ऑटोबायोग्राफी लिखी है हुसैन साहब की और रवि साहब की और जगदीश स्वामीनाथन की, और जो बीबी कारंत थे उनकी ऑटोबायोग्राफी उन्होंने अपने जब आखिरी दिन थे, बीमारी के दिन थे, उस दौरान कन्नड़ की एक प्रसिद्ध राइटर हैं वैदेही, उनको बोल करके अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखवाई थी कन्नड़ में, और उसमें ये हुआ कि उसका एक अंग्रेजी अनुवाद हुआ, और अंग्रेजी अनुवाद तो बाबा कारंत जो है भारत भवन में थे और हम लोगों की बड़ी अच्छी उनके साथ दोस्ती थी और उनके साथ काफी गहरे संबंध भी थे। तो मैंने कहा कि भाई उन्होंने जीवन भर काम जो किया है, ज्यादातर काम जो है हिंदी नाटकों में किया है, हिंदी भाषा में किया है, और स्कंदगुप्त जैसा नाटक किया है, चंद्रगुप्त जैसा नाटक किया है, ये जयशंकर प्रसाद के इतने कठिन नाटक हैं कि जिसको करने के लिए किसी भी डायरेक्टर की हिम्मत नहीं हुई थी, मगर बाबा कारंत एक ऐसे विलक्षण व्यक्ति थे कि उन्होंने स्कंदगुप्त में से स्कंदगुप्त नाटक क्या है वो ढूंढ निकाला। और अगर आप पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का ये नाटक तो शायद आप, मैं भी नहीं समझ पाया कि इसमें नाटक कहाँ है। ही वॉज ब्रिलियंट माइंड एक्चुअली। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का मैंने हिंदी में अनुवाद किया और वो अभी छपने के प्रोसेस में है
0: जी।
1: तो वो इस वर्ष आ जाएगा। ऐसे ही एक मार्क शागाल बड़े पेंटर हुए हैं रशिया के, जो पेरिस चले गए थे, और फिर बहुत ही जो तीन बड़े चित्रकार हैं जिन्होंने काफी बड़े बदलाव लेके आए चित्रकला के संसार में, उसमें मार्क शागाल, पिकासो और मातिस का नाम लिया जाता है। तो उनकी भी जो ऑटोबायोग्राफी थी लावी मतलब द लाइफ, उसका मैंने अनुवाद किया है आप बीती नाम से
0: जी जी।
1: और ये तो आप बीती सबको पढ़नी चाहिए, इसलिए भी कि मार्क शागाल ने अपने को इतने ऊपर से देखा है, इतना ऑब्जेक्टिवली देखा है कि आपको भरोसा नहीं होता ऐसा कि कोई व्यक्ति अपने से बाहर रह करके अपने बारे में इस कदर लिख सकता है। वो यहूदी थे तो यहूदियों पर उस वक्त रूस में जो जुल्म हो रहे थे उन सबका उन्होंने वर्णन किया, उनके परिवार पे जो संकट आते थे यहूदी होने के नाते, यहूदी होने के नाते उनको कई चीजों से वंचित रहना पड़ता था, मास्को में नहीं जा सकते थे यहूदी लोग बगैर परमिशन के, और अगर जाएंगे तो उनके पास एक नौकर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि मैं नौकर हूं। ये सारा उन्होंने भुगता, मगर पूरी किताब में शिकायत का एक स्वर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी उसको पढ़ते वक्त। वो एक सीधे कविता की तरह उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जो कि बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि वो हर किसी को पढ़ना चाहिए
0: जी, जी,
1: कि कोई व्यक्ति अपने को अपने से बाहर रह करके कैसे देख सकता है इतने ऑब्जेक्टिवली।
0: ये बहुत बड़ी बात है और एक वैचारिक समृद्धि भी मिलती है इस तरह की किताबें पढ़कर।
1: हाँ।
0: तो हम सबको पढ़नी है ये किताब। और आपका जो लेखन पक्ष है उसमें और भी बहुत कुछ है, अचंभे का रोना और दरस पोथी और शीर्षक नहीं, इन किताबों में क्या दर्ज है हमारे श्रोताओं को?
1: ये जो मेरी किताबें हैं इन सारी किताबों में मैंने चित्रकला पे और चित्रकारों पे जो बातचीत करी है वो है इन सारी जगह में, और उसमें कई चीजें ऐसी भी हैं जो मतलब पहली बार किसी ने चित्रकला में उसको छुआ है और उस पर बात करी है। तो ये सारे निबंध हैं जो अलग अलग समय पे अलग अलग चित्रकारों के ऊपर भी हैं और चित्रकला के प्रश्नों पर भी हैं। तो ये मेरे निबंधों की किताब है एक तरह से, जो 5-7 है, एक उनके बारे में भी है शीर्षक नहीं, दरस पोथी और अचंभे के रोने के अलावा। तो इस तरह से मतलब काफी लिखने का मेरा कोई पैशन नहीं है, मतलब मैंने जितना भी लिखा है हमेशा किसी के कहने पे लिखा है
0: जी जी।
1: जैसे हुसैन साहब की बायोग्राफी भी उनके कहने पे मैंने लिखी
0: जी।
1: वैसे ही मतलब कभी किसी ने कहा कि स्वामीनाथन पे लिख दो तो फिर स्वामीनाथन की बायोग्राफी मैंने उन पे
0: जी।
1: तो ये सारे जो आर्टिकल्स या जितना भी मेरा लेखन का पक्ष है वो मतलब किसी के आमंत्रण पे है वो
0: जी जी। तो दोनों में से कौन सा आपका पसंदीदा शौक है, पेंटिंग या लेखन?
1: मेरे लिए तो पेंटिंग ही है, मतलब लिखना तो कभी कभार है,
0: कभी
1: मतलब मैंने ऐसा कुछ खास नहीं। अभी इन दिनों में एक किताब लिख रहा हूँ स्वामीनाथन के साथ मेरे जो पर्सनल संबंध थे, इतने साल 9-10 साल मैंने उनके साथ काम किया भारत भवन में, उसके बाद 14-15 साल उनके साथ संपर्क रहा,

0: तो एक लंबा संपर्क था और मेरे लिए भी बहुत आश्चर्य की बात थी स्वामी से मिलना और स्वामी जी को जानना, क्योंकि जब हम लोग 74 में पहली बार दिल्ली गए थे तो वहां पर ट्रिनाल देखने गए थे हम लोग, इंटरनेशनल एग्जीबिशन थी और बहुत एक्साइटेड थे। जब रात को लौट रहे तो वहां कैनॉट प्लेस पे एक हमने बैनर देखा, सिक्स हु डिक्लाइन ट्रिनाले, तो बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसे भी 6 लोग हैं, 6 कलाकार हैं जिन्होंने ट्रिनाल को जो है कैंसल आउट किया। तो धूमिमल आर्ट गैलरी में वो एग्जीबिशन थी, तो हम लोग धक्का मुक्की करके जैसे तैसे अंदर घुसे तो हमें स्वामीनाथन ही दिखे एक चित्रकार की तरह। तो उनसे मतलब ऑटोग्राफ लेने के लिए हमारे सीनियर लोग जो थे, तो मैं तो उस वक्त सेकेंड ईयर में ही था, तो मैं तो सबसे जूनियर था,
1: जी
0: तो सबसे पीछे ही था। तो मैंने भी अपनी स्केचबुक आगे जब बढ़ाई तो स्वामी जी ने एक ऐसे पलट के देखा, मेरे ख्याल से फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड हमारी नजरें मिली होंगी, उन्होंने ऑटोग्राफ करके लौटा दिया और फिर हम लोग चले भी आए।
1: जी
0: फिर जब 81 में मैं इंटरव्यू दे रहा था, इंटरव्यू देने के लिए बैठा था, तो स्वामी जी मेरे पास सीधे आए और बोले हम लोग पहले मिल चुके हैं।
1: क्या बात
0: तो मेरे लिए तो एकदम से
1: है,
0: मतलब
1: आश्चर्य हुआ
0: बहुत ही आश्चर्य था,
1: होगा।
0: क्योंकि मुझे तो याद रहना चाहिए था कि मैं स्वामीनाथन से मिला हूं, पर स्वामी जी को वो इतनी सी झलक उन्होंने देखी, ठीक से देखा भी नहीं होगा शायद, इतनी भीड़ थी,
1: जी
0: इतना सारा क्राउड था। बस उन्होंने वो स्केचबुक लौटाते वक्त एक जो होता है देखना, वो
1: बिल्कुल
0: थी सी नजर, बट ही रिमेम्बर्ड वेरी
1: जी
0: क्लियरली कि हम लोग पहले मिल चुके
1: जी
0: हैं।
1: यहाँ पर याद कीजिए कोई गाना, कौन सा गाना सुनवाया?
0: मैं यहाँ पर मोहम्मद रफी का एक गाना, फिर मिलोगे कभी
1: इस
0: इस
1: बात का
0: बात का
1: वादा
0: वादा
1: कर
0: कर
1: लो,
0: लूँ
1: सुनते हैं ये
0: जी।
1: गाना।
0: फिर मिलोगे कभी इस बात

0: गाने से पहले आपके लेखन पक्ष की बात हो रही थी, कुछ अनुवाद भी आपने किए हैं बहुत सारे, तो उन अनुवाद की किताबों के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: तो एक तो मैं बता चुका हूँ मार्क शागाल की, मैंने ऑटोबायोग्राफी का अनुवाद किया। दूसरा एक बाज बहादुर और रूपमती की प्रेम कथा की एक छोटी सी किताब है, तो उसका मैंने एक अनुवाद किया था। एक स्वीडन के नॉवेलिस्ट हैं अग्निता प्लायल, उनका एक नॉवेल है डॉग स्टार, वो बहुत ही बढ़िया नॉवेल है। और उसमें भी वही बात है कि वो सारी झंझटों तकलीफों और मुसीबतों के जिक्र के बावजूद भी उसमें शिकायत का कोई स्वर नजर नहीं आता है, उसकी जो नायिका है उसका। तो एक मैंने उसका अनुवाद किया, और ये जो बाबा कारंत के ऑटोबायोग्राफी है उसका अनुवाद। तो इस तरह से अनुवाद का कर्म जो है, मैं मतलब अपने पढ़ने के ही एक ढंग को विकसित करने का तरीका है
0: जी। जी बिल्कुल। अखिलेश जी, आपकी पेंटिंग्स बहुत सारे बड़े बड़े संस्थानों में संग्रहित हैं, देश में, विदेश में, यहाँ तक कि फ्रांस, ललित कला अकादमी, महात्मा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान वर्धा और भारत भवन में तो है ही। तो ये जो इतनी सारी पेंटिंग्स का संग्रह है आपके पास, हमारे श्रोताओं को बताइए तकरीबन कितना बड़ा संग्रह है और कैसे किया ये सब मुमकिन? एक आम जिंदगी में एक आम चित्रकार के खाते में नहीं आता है।
1: नहीं, मेरे ख्याल से सभी चित्रकारों के खाते में आता है, और वो बस ये है कि उनको अपने काम पर भरोसा होना चाहिए और उसको लगातार दिखाते रहना चाहिए। मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे अच्छे चित्रकार मेरे दोस्त हैं और अभी भी इंदौर में रहते हैं, बढ़िया काम करते हैं, और सच में वो इतना अच्छा काम करते हैं कि मेरे को उनके काम को देख करके रश्क होता है कि काश मैं भी ऐसा कर सकता था, मगर वो लोग कभी दिखाते नहीं है। तो ये जो एक दिखाना है, प्रदर्शन करना है, ये एक बहुत जरूरी पक्ष है। अदरवाइज कुछ ऐसा हो जाएगा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मतलब हमें ये तो देखना ही चाहिए कि भाई हम जो काम कर रहे हैं तो लोगों तक पहुंचे कैसे। तो वो जो पहुंचना है उसी का एक रास्ता है जिसमें इन सारे संग्रह में वो कलाकृतियां जा पाती हैं, या उसमें लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, तभी वो आपके चित्र को खरीदना चाहते हैं। तो इस तरह का अनुभव भी मेरा रहा है कि जब भी मैंने कहीं शो किया है तो लोगों ने उसको पसंद किया है, और उसमें से कई चित्र जो है ऐसे महत्वपूर्ण कलेक्शन में गए हैं।
0: और ये लोगों के लिए सीखने के लिए भी एक
1: जरूरी है कि हम जो भी काम कर रहे हैं तो उसको हम अगर दिखाएंगे नहीं तब उसके बारे में हम कैसे कुछ तय कर सकते हैं। हाँ, मतलब वो दर्शकों की प्रतिक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना अपना बनाना। तो वो जो बनाना है, खाली वहीं पर चित्र खत्म नहीं होता है, चित्र पूरा होता है जब एक दर्शक उसे देखता है।
0: सही बात है। तो भारतीय संस्कृति और कला का बड़ा ही गहरा संबंध है, और आप अपनी पेंटिंग में भारतीय संस्कृति को और परंपराओं को भी उकेरते हैं, तो ये कैसे होता है उन तमाम श्रोताओं के लिए बताइए जो सीख रहे हैं।
1: हाँ, मुझे ये लगता है कि ये जो कुछ भी हमारी चित्रों में आता है या हमारे स्वभाव में या हमारी बातचीत में या हमारे लिखने में, वो आपके उसी अनुभव से पैदा होता है जो आपने यहाँ रह करके उसको जाना, समझा और भोगा है। तो ये जो संबंध आपका जो बना है अपनी परंपरा से और जो अपनी सामाजिक परिस्थितियों से और जो अपने दृश्य से, जो अपने रंगों से, वो ही आपकी एक स्थायी स्मृति में अनकॉन्शियसली चित्र बनाते वक्त काम करते हैं। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि भाई हमें बहुत जागरूक करके, एक अच्छा चित्रकार जो है वो बहुत कीन ऑब्जर्वर भी होता है, बहुत ध्यान से देखने वाला, वो एक एक चीज समझने वाला, मतलब अपनी तरह से उसको एब्जॉर्ब करने वाला होता है, और वो सारी चीजें अनकॉन्शियसली बाद में आपके काम में दिखाई देती हैं। तो मुझे ये बहुत ही आश्चर्य हुआ था, मेरे जो प्रदर्शनियां हुई वो जापान से लेकर के कैलिफोर्निया तक, मतलब मेरे ख्याल से तमाम देशों में भी, और उसमें ऐसे भी हुआ कि जर्मनी में शो हुआ तो वहाँ भी पसंद किया गया, और जब फ्रांस में हुआ तो वहाँ भी पसंद किया गया, और जब लंदन में हुआ तो, मगर ये तीनों देश ऐसे हैं कि अगर एक तरह के चित्र एक देश में पसंद है तो दूसरे देश में नहीं हो सकते हो।
0: जी जी जी।
1: क्योंकि उन लोगों के बीच में अपनी एक जो देखने समझने की फांक है वो बहुत बड़ी है। तो ये नहीं

0: हो सकता है कि जो जर्मनी में पसंद किया जा रहा है वो फ्रांस और लंदन में भी पसंद हो, या जो लंदन में पसंद किया जा रहा है वो जर्मन लोग भी पसंद करें। तो मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है,
1: जी,
0: क्योंकि
1: जी।
0: जर्मन आदमी भी मनुष्य हैं और बाकी लोग भी जो देख रहे हैं वो सारे मनुष्य हैं, क्योंकि मेरे चित्र कोई गाय बैल जानवर तो देखते नहीं है। तो फिर धीरे धीरे मेरे को ऐसा लगा कि ऐसा कोई फॉर्म नहीं है मेरे इसमें जो कॉमन फॉर्म है, ऐसे कोई लाइन नहीं है जो कॉमन लाइन है, मगर रंग एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को आकर्षित करते हैं, तो वो शायद रंग ही है जो मनुष्य को संबोधित है। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही एनलाइटनिंग चीज थी कि मैं उसके साथ अपने चित्रों को भी समझ पाया कि मेरे चित्र में ऐसी कोई ये बात है जो एक मनुष्य को संबोधित है, चाहे वो जैपनीज हो, चाहे वो मतलब जो चित्र न्यूयॉर्क में पसंद किए जाते हैं वो कैलिफोर्निया में बिल्कुल नहीं होते हैं।
1: जी, जी।
0: और मेरे साथ ऐसा हुआ कि न्यूयॉर्क में भी उतना ही पसंद किया गया जितना कैलिफोर्निया में। तो ये जो चीजें होती हैं, मतलब इसी ने मुझे बाध्य करा कि मैं अपने चित्रों में उस एलिमेंट को समझने की कोशिश करूं जो एक अलग अलग संस्कृति और अलग अलग विचार और अलग अलग जीवन शैली को जीने वाले लोग पसंद कर रहे हैं।
1: जी जी, यहाँ पर आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाए?
0: मेरे ख्याल से हमें वो है जरा खफा खफा,
1: जी सुनते
0: ये
1: हैं
0: वाला सुनता है।

इस गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपके लिए माना जाता है कि आपने पेंटिंग की एक नई परिभाषा गढ़ी है, एक परंपरा को

0: नए सिरे से परिभाषित किया है, तो ये किस तरह से किया है, क्या प्रयोग किए हैं आपने?
1: मेरे ख्याल से जो कलाएं हैं, सभी कलाएं जो हैं भविष्योन्मुखी हैं और वो अपनी परंपरा से कुछ लेती हैं और उसको पुनर्परिभाषित कर देती हैं। तो ये जो एक सतत उसका अपना स्वभाव है जो चलता रहता है, हमारी कलाएं जो हैं अतीत में नहीं झांकती हैं, वो अतीत से जो कुछ भी लेना होता है वो ले लेती हैं और अपने भविष्य में अपने विचरण जारी रखती हैं। तो ये जो उनका स्वभाव है कलाओं का, वो अपने आप ही इसको इस तरह का बना देता है जिसमें आप अपनी परंपराओं से बहुत सारी चीजें सीखते समझते और बरतते हैं और उनका एक नया रूप सामने आता है, वो पुनर्परिभाषित होकर के नए ढंग से आपके सामने आती हैं। तो ये एक संबंध जो है उसका अटूट संबंध है और इसीलिए कलाएं जो है हमेशा नई और आकर्षित करने वाली होती हैं।
0: जी, और हमारे उन श्रोताओं के लिए बताइए कि जो सीख रहे हैं, जो पेंटिंग की आपकी बारीकियां हैं, किन बारीकियों का ध्यान रखते हैं? जैसे बहुत सारी बातें हैं जो सीखते हैं, तो किस तरह का पेपर, ब्रश और रंग का मिलान कैसे करें? वो सब
1: ये जो है इसमें बहुत सारी चीजें तकनीकी रूप से भी ऑपरेट होती हैं और मेरे ख्याल से कोई भी चित्रकार अगर एक अच्छा चित्रकार है तो वो पहले तकनीक को अच्छे से जानता समझता है और फिर उसको बरतता है। तकनीक का गुलाम नहीं होता है, तकनीक उसकी गुलाम होती है।
0: जी जी।
1: तो चाहे हम वाटर कलर करें, चाहे हम पेस्टल कलर करें, चाहे एक्रेलिक, चाहे ऑयल, इन सब के करने का जो ढंग है वो अलग होगा। तो उसको जानना समझना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से हर युवा चित्रकार के लिए ये जो पीरियड होता है अपना कॉलेज का समय, उसका 4 साल का 5 साल का, वो इन सब तकनीकों को सिखाने के लिए एक लंबा समय होता है और वो उस वक्त उसको पूरे तन मन धन से ये काम करना चाहिए कि वो अपने को एक विद्यार्थी की तरह बरते। अभी मैं देखता हूँ कि विद्यालय में जाते से ही वो अपने को आर्टिस्ट की तरह बरतने लगते हैं, जो कि एक गलत रास्ता है। आप हमेशा विद्यार्थी रहेंगे तो आप ज्यादा सीख सकेंगे और मुझे ये भी लगता है कि एक चित्रकार जीवन भर एक विद्यार्थी ही बना रहता है, वो लगातार सीखता ही रहता है, दूसरों के चित्रों से भी सीखता है, अपने चित्रों से भी सीखता है।
0: ये कहा जाता है कि एक चित्रकार के लिए ये जरूरी है जानना कि कौन कौन से रंग को मिलाएं तो अगला रंग बनता है, जैसे आपने बातचीत के दौरान बताया।
1: हाँ,
0: ये भी थोड़ा सा बताएं।
1: ये बहुत ही जरूरी होता है कि है ना, आप रंगों के मेल मिलाप से भी एक नया रंग बनाना सीखते हैं और आप रंगों को पास पास रख करके भी एक नया रंग का अनुभव पैदा करने में सक्षम होते हैं। ये दोनों चीजें आपको लगातार काम करने से ही आती है। रजा साहब अच्छी बात कहते थे कि चित्रकला वो मुश्किल प्रेमिका है, वो उसके पास चली जाएगी, अगर आप 4 घंटे दे रहे हैं तो 6 घंटे वाले के पास चली जाएगी। तो जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं और फिर उसमें अपने अनुभव से उसको बरत सकते हैं।
0: एक चित्र को बनाने में कितना वक्त लगता है ये बताएंगे?
1: इसमें दोनों तरह की चीज होती है। कई बार चित्र जो है खुद भी इतने जिद्दी होते हैं कि वो पूरा होने में 3 महीने 4 महीने लगा सकते हैं और कई बार काम शुरू होते से ही आप उसमें इतना रम जाते हैं कि उसी दिन वो चित्र पूरा होता है। ये एक तरह की परिस्थिति पे भी निर्भर करता है कि कब आप किस मूड में किस तरह से उस काम को शुरू किए हैं और फिर इसमें यात्राएं भी बीच बीच में बहुत सारे व्यवधान पैदा करती है। तो एक चित्र आपने बनाया तो चित्र बनाना हमेशा स्थगन का काम है, आप हमेशा अपने विचारों को रोक देते हैं वहां जहां आपने चित्र छोड़ा है। विचार बहुत तेजी से भागते हैं तो आप अगर उनका पीछा करने लगते हैं तो शायद चित्र बिगड़ सकता है, मगर आप रोक कर रखते हैं अपने को, अगले दिन आते हैं फिर वहीं से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन आते हैं तब भी वहीं से शुरू करते हैं जहां छोड़ा था। तो ये जो एक मुश्किल प्रक्रिया भी है जिसमें आप अपने को रोके रखते हैं, भले ही विचार आपके उससे आगे जा रहे हों मगर आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते
0: और वापस उस चित्र में उस यात्रा में वापस लौटना भी मुश्किल होता है
1: वो।
0: जी, इस पूरी बातचीत में अखिलेश जी आपने बड़ी ही काम की बातें और बड़ी ही प्रयोगशील बातें बताई हैं और इतनी सारी जानकारी के लिए, इतनी दिलचस्प बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान। इसके अंतर्गत हमने सुनी
0: रजनी, मशहूर चित्रकार अखिलेश वर्मा।

0: से ममता सिंह की बातचीत। जाते जाते आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र मुंबई से अनुप्रसारित किया जा रहा था। FM बैंड 102.3 MHz पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त शाम के 5 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड। कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड सुन रहे सभी साथियों को अपने रेडियो साथी अनिल भल्ला का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम आपको सुनाते हैं पुराने नगमे। ये जो गीत हैं दोस्तों, ये सिर्फ गीत ही नहीं बल्कि यादों की एक खूबसूरत यात्रा भी है। इन गीतों को जितनी बार भी सुना जाए उतना ही कम है। हर बार ये गीत एक कानों में मीठा रस घोलते हैं। इन गीतों में छुपी होती है मोहब्बत, अपनापन और बीते सुनहरी दिनों की महक। तो आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म कटी पतंग के इस गीत के साथ। गीत के बोल हैं ये शाम मस्तानी, क्योंकि ये गीत सुनते ही आपकी जो शाम है और भी सुहानी हो जाएगी। और इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतकार है RD बर्मन और इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने।

दोस्तों, ये शाम मस्तानी दिलों को मदहोश कर गई, यादों की महफिल ने हर धड़कन को सराबोर कर गई। अब चलिए उस हसीन सफर की ओर जहां वादियां मुस्कुराती हैं और फिजाएं गीत गाती हैं। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म आज और कल से, और इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने।

साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड अपने साथी अनिल भल्ला के साथ एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी के हिसार केंद्र पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म पत्थर के सनम से, और इस गीत को गाया है मुकेश और लता मंगेशकर ने। धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने।

तू है तो दुनिया कितनी हसी है। सचमुच दोस्तों, महबूब की याद भी क्या चीज है, ना दिन देखती है ना रात देखती है, वो दिल में बस जाए तो हर धड़कन में उसका नाम सुनाई देता है। मोहब्बत का रिश्ता भी बड़ा अनोखा होता है दोस्तों, दूर रहकर भी दिल के सबसे करीब होता है। सांझ ढले तो उसकी याद, सवेरा हो तो उसका ख्याल, जैसे जिंदगी का हर पल उसी के नाम हो जाता है। आइए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं दोस्ती फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने।

आइए श्रोताओं, सुनते हैं मोहम्मद रफी को एक बार फिर से फिल्म उम्मीद में। और इस गीत को संगीतबद्ध किया है रविशंकर ने और लिखा है शकील बदायूं ने।

तेरी आंखों में जो प्यार का समंदर देखा, अपने हर ख्वाब का मुकद्दर देखा, अब कोई और तमन्ना बाकी नहीं, तुझमें ही अपना पूरा जहां देखा।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए

साथियों, ये गीत हमने लिया है वारिस फिल्म से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह ने, लिखा है वर्मा मलिक ने और संगीतबद्ध किया है उत्तम जगदीश ने।

आइए दोस्तों, अब सुनते हैं साथी फिल्म का गीत। और इस गीत को गाया है मुकेश और सुमन कल्याणपुर ने, संगीतबद्ध किया है नौशाद ने और लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने।

मेरा प्यार भी तुम्हें हर पल पुकारता है, खामोशी में भी बस तेरा नाम दोहराता है। दूरी चाहे जितनी भी हो हमारे दरमियान, मेरा दिल हर धड़कन में तुम्हें ही चाहता है।

साथियों, आइए अब सुनते हैं नया दौर फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की आवाज में। लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीतबद्ध किया है ओपी नैयर ने।

साथ हो तुम तो जिंदगी खूबसूरत लगती है, हर खुशी दिल के और भी करीब लगती है। ना मांगो कोई दौलत ना कोई और खजाना, बस तुम्हारा साथ हो तो दुनिया पूरी लगती है। आइए दोस्तों सुनते हैं हमराज फिल्म का गीत महेंद्र कपूर की आवाज में। लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

आइए दोस्तों, अब सुनते हैं फिल्म कभी कभी का ये गीत, मुकेश की आवाज में। संगीतबद्ध किया है खयाम ने और शब्द रचना है साहिर लुधियानवी की।

साथियों, आइए सुनते हैं फिल्म आन मिलो सजना का ये गीत, आनंद बख्शी का लिखा हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ और गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

0: साथियों, अब हमारे भी चलने का वक्त हो गया है, लेकिन आपसे वादा करते हैं अगले कार्यक्रमों में हम आपके साथ बने रहेंगे। आप सुनते रहिए एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी का हिसार केंद्र। आज की इस सुरीली महफिल से अब हमें दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि पुराने गीतों की ये खुशबू आपके दिलों तक पहुंची होगी और कुछ सुनहरी यादों को फिर से जगा गई होगी। मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और जीवन के हर पल को संगीत की तरह सुंदर बनाते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का हिसार केंद्र एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़। अब दीजिए अपने साथी अनिल भल्ला को अनुमति। नमस्कार।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: आप सुन रहे हैं ऐतिहासिक नगरी हिसार की संगीतमय पहचान आकाशवाणी हिसार 102.3 FM।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड FM एंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त शाम के 6 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिनका रिले हम करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रिले की प्रतीक्षा करें।

0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जैमिसिन ग्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिपुरा में 96 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 211 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना से राज्य में 160 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण होगा। इन परियोजनाओं से राज्य की 96 बस्तियों को पहली बार हर मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्राप्त होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया है कि ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई कल शुरू की गई। ये जांच राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के कथित उल्लंघन के मामले में की जा रही है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। घायलों का एसएसकेएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए दुर्घटना स्थल पर हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं तथा स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रमों की रूपरेखा। सबसे पहले जानिए आज शेष रहे कार्यक्रमों के बारे में। प्रभु वंदना का कार्यक्रम भक्ति संगीत आप सुन सकेंगे आज सायं 6:20 पर। सायं 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युवा उमंग और सायं 7 बजे आप सुनेंगे कृषि पर आधारित कार्यक्रम खेती किसाना सेती, जिसका विषय रहेगा खरीफ फसलों के लिए उत्तम बीजों का चयन और बीजोपचार का महत्व। कार्यक्रम ऑर्गन इंडिया सुनिएगा सायं 7:30 पर। यह कार्यक्रम प्रायोजित कार्यक्रम होगा और 7:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारे गांव। रात्रि 8 बजे लुत्फ उठाइएगा फिल्म संगीत का और 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खुला आकाश के अंतर्गत, कार्यक्रम हरियाणा के गलियारे से।

राष्ट्रीय हिंदी समाचारों का समय रहेगा रात्रि 8:45 पर, और रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के प्रसारण।

और आज रात 10 बजे सुनिएगा हमारे केंद्र से कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने। यह कार्यक्रम व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित होगा और व्हाट्सएप के माध्यम से फरमाइश भेजने के लिए हमारा नंबर रहेगा 9792-5352-72। राष्ट्रीय हिंदी समाचारों का समय रहेगा रात्रि 11 बजे। आइए श्रोताओं, अब आपको बता दें हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। कल प्रातः 5:51 पर हमारे केंद्र की प्रातःकालीन प्रसारण सभा शुरू होगी। प्रातः 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक रंग। कार्यक्रम सुप्रभात का समय रहेगा प्रातः 7:40 पर और नमस्ते हिसार कार्यक्रम आप सुन सकेंगे प्रातः 10 बजे। कल प्रातः 11 बजे सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT भाग 1314 है। कल साय 5 बजे सुनिएगा हमारे केंद्र से कार्यक्रम थारी महारी पसंद। कार्यक्रम भक्ति संगीत का समय रहेगा साय 6:20 पर और कल साय 6:30 से आप सुनेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच ICC T20 महिला विश्व कप के अंतर्गत क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त शाम के 6:10 होने को हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से प्रादेशिक समाचार। रिले की प्रतीक्षा करें।

0: के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री से जुड़े कथित तो वायरल वीडियो प्रकरण फर्जी रिपोर्ट मामले में कार्रवाई होगी। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने फर्जी रिपोर्ट से संबंधित पूरे मामले में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की मांग की। हरियाणा सरकार ने कहा क्लर्क के पद पर सभी नियमित नियुक्तियां मानव संसाधन विभाग द्वारा की जाएंगी। हरियाणा डाक परिमंडल द्वारा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में एन जनरेशन थीम पर आधारित आधुनिक डाकघर का उद्घाटन किया गया और अंबाला दूरसंचार सर्कल के प्रधान महाप्रबंधक कृष्ण बिहारी मीणा ने ग्रामीण युवाओं से भारत नेट उद्यमी योजना से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री से जुड़े कथित वीडियो प्रकरण से संबंधित फर्जी रिपोर्ट मामले में कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने आज पटियाला के रोड़ेवाल स्थित गुरुद्वारा साहिब में संत बलवंत सिंह जी की बरसी पर आयोजित समागम को संबोधित कर रहे थे। गुरुद्वारा साहिब में नतमस्तक होने के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया।
1: ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤੇ ਵੱਡੀ ਔਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੋਚਣੇ ਦੀ ਗੱਲ।
0: उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और पूरे प्रकरण की गहन जांच कराई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी में हरियाणा की एक प्रयोगशाला का नाम सामने आया है जिसके आधार पर कथित रिपोर्ट तैयार होने की बात कही जा रही है।
1: देखिए मैंने रात जानकारी लिखी है कि किसी ने एप्लीकेशन दिखती थी कि आपके इतने यहाँ पर कोई लेबोरेटरी पे रिपोर्ट आई है और वो गलत है, तो पूरी जानकारी ली। जानकारी भी जो तथ्य सामने आए से दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार का जेड़ा हुआ है अपनी कमी न छुपाने है तो दुर्भाग्यपूर्ण।
0: जांच के माध्यम से यह पता लगाया जा रहा है कि इसके पीछे कौन लोग हैं और इसका उद्देश्य क्या था। दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ नियम अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी इतनी निम्न स्तर की राजनीति नहीं करती कि गुरुओं के नाम पर लोगों की आस्था विश्वास और भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि भाजपा गुरु परम्परा का सम्मान करने वाली पार्टी है। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित वायरल वीडियो प्रकरण तथा उससे संबंधित सामने आए गंभीर आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूरे मामले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की मांग की है। चंडीगढ़ स्थित विधायक दल कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सुश्री रेखा शर्मा ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक और पंजाब का युवा चिट्टे और अन्य नशों की भयावह समस्या से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर राज्य की सर्वोच्च धार्मिक संस्थाओं की गरिमा को लेकर विवाद उत्पन्न किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्टों में सामने आए तथ्यों और शिकायतकर्ता जसप्रीत सिंह द्वारा सार्वजनिक रूप से लगाए गए आरोप अत्यंत गंभीर हैं। गौरतलब है कि गत 16 जून को गुरुग्राम स्थित एक होटल में लुधियाना के पुलिस आयुक्त स्वपन शर्मा तथा पुलिस अधीक्षक जशनदीप गिल कथित रूप से शिकायतकर्ता को मिले थे। सार्वजनिक रूप से सामने आए दावों के अनुसार इस बैठक का उद्देश्य मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े विवादित वीडियो को लेकर एक अनुकूल फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार करवाना था। मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि बैठक के सीसीटीवी फुटेज मौजूद हैं तथा कथित व्हाट्सएप चैट्स भी सामने आई हैं, जिनमें रिपोर्ट के विभिन्न हिस्सों में बदलाव, निष्कर्षों को संशोधित करने तथा रिपोर्ट को विशेष दिशा देने संबंधी चर्चाएं दिखाई गई हैं। हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि हरियाणा लिपिकीय भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम 2026 के लागू होने के बाद क्लर्क के पद पर सभी नियमित नियुक्तियां मानव संसाधन विभाग द्वारा की जाएंगी। इनमें सीधी भर्ती के माध्यम की जाने वाली नियुक्तियों के साथ साथ अनुकंपा आधार पर की जाने वाली नियुक्तियां भी शामिल होंगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि अब अनुकंपा आधार पर नियुक्ति से संबंधित सभी मामलों की जांच हरियाणा सिविल सेवा अनुकंपा वित्तीय सहायता अथवा नियुक्ति नियम 2019 के अनुसार की जाएगी। संबंधित

0: विभाग अध्यक्ष की संस्तुति तथा हरियाणा अधीनस्थ लेखा सेवा कैडर के अधिकारी द्वारा सत्यापन के उपरांत ऐसे मामले आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए मानव संसाधन विभाग को भेजे जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। हरियाणा डाक परिमंडल द्वारा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आज एन जैन थीम पर आधारित नवीनीकृत डाकघर का उद्घाटन किया गया। मुख्य महा डाकपाल सचिन किशोर ने कहा कि यह डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण तथा युवा पीढ़ी को डाक विभाग से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस डाकघर में बच्चों के लिए फ्री वाईफाई की सुविधा है। स्पीड पोस्ट में उन्हें 10% की छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पहल की शुरुआत की थी। आज यह आधुनिकीकृत डाकघर कृषि विश्वविद्यालय में जनरेशन एन को समर्पित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज ने कहा कि समय के साथ आए बदलाव को भारतीय डाक विभाग ने भी अपनाया है। आज डाकघर द्वारा पासपोर्ट सेवा से लेकर ई पुस्तकालय, मुफ्त वाईफाई व कैफे जैसी अनेक सुविधाएं दी जा रही हैं।
1: माननीय मंत्री जी का जो सपना है अपनी युवा पीढ़ी को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ते हुए यहाँ पे डिजिटलाइजेशन और जितनी भी सेवाएं हैं वो सभी को दे सके, और इसकी शुरुआत जो है वो विश्वविद्यालयों से स्कूलों से की गई है। भारत सरकार का प्रयास है कि 500 से अधिक इस प्रकार के आधुनिकृत और सुधारीकृत डाकघर जो है वो पूरे देश में बनाए जाएंगे।
0: अंबाला दूरसंचार सर्कल के प्रधान महाप्रबंधक कृष्ण बिहारी मीणा ने ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं से भारत नेट उद्यमी योजना से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया है। प्रधान महाप्रबंधक ने कहा कि भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने तथा युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत नेट उद्यमी योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारत नेट उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में BSNL सेवाएं उपलब्ध कराने वाले एजेंट के तौर पर काम करते हैं।
2: भारत नेट उद्यमी हमारे बेसिकली ग्रामीण क्षेत्र में सर्विसेज देने वाले एजेंट होंगे, और ये लोग जब हमसे 4B एग्रीमेंट के साथ जुड़ते हैं तो 50% इनको कमीशन दिया जाएगा। और इस स्कीम से अभी भी हमारे बहुत से उद्यमी 2 से 2.5 लाख का जो है कमीशन उठा रहे हैं। तो मेरा सभी नवयुवकों से अनुरोध रहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा इसके साथ जुड़े और एक आत्मनिर्भर भारत के तहत वो अपना स्वरोजगार स्थापित करके आत्मनिर्भर बने।
0: उन्होंने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच मौजूद डिजिटल अंतर को कम करना है। भारत संचार निगम लिमिटेड ने ग्रामीण उपभोक्ताओं को सस्ती एवं बेहतर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नया ब्रॉडबैंड प्लान शुरू किया है। इस योजना के तहत मात्र 259 रुपये प्रति माह में 25 MBPS की हाई स्पीड इंटरनेट सेवा तथा 700 GB डेटा उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को एक OTT सेवा भी निःशुल्क प्रदान की जाएगी। यह जानकारी देते हुए अंबाला दूरसंचार सर्कल के प्रधान महाप्रबंधक कृष्ण बिहारी मीणा ने कहा कि यह प्लान विशेष रूप से ऑनलाइन शिक्षा, वर्क फ्रॉम होम, डिजिटल भुगतान, वीडियो स्ट्रीमिंग तथा अन्य ऑनलाइन सेवाओं की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। सरकार समर्थित इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी और नागरिकों को बेहतर इंटरनेट सेवाएं प्राप्त होंगी। हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, पंजाब के मुख्यमंत्री से जुड़े कथित वायरल वीडियो प्रकरण फर्जी रिपोर्ट मामले में कार्रवाई होगी। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने फर्जी रिपोर्ट से संबंधित पूरे मामले में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की मांग की। हरियाणा सरकार ने कहा, क्लर्क के पद पर सभी नियमित नियुक्तियां मानव संसाधन विभाग द्वारा की जाएंगी। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जी आकाश
1: प्रादेशिक समाचार आप सुन रहे थे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से FM 102.3 MHz पर। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। अब वक्त है कार्यक्रम भक्ति संगीत का। आइए आप और हम मिलकर सुनते हैं कार्यक्रम भक्ति संगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति संगीत एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त शाम के 6:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे

कार्यक्रम युवा उमंग। आज युवा उमंग कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा वराहगिरी वेंकट गिरी के बारे में चर्चा आप सुनेंगे, और सुर्खियों में रहेगा बढ़ता तापमान और सुलगते एसी, कारण बचाव और युवाओं की जिम्मेदारी, और गवर्नेंस ऑन पोर्टल के बारे में भी आपको बताया जाएगा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवा उमंग, और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी सुषमा।

0: नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी हिसार के युवा उमंग कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं सुषमा।
1: मैं हूं पुनीत। आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी हिसार का युवा उमंग कार्यक्रम।
0: जी हां पुनीत, आज हम अनेक विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर वीवी गिरी के बारे में, जिन्हें मजदूरों का मसीहा भी कहा जाता है। तो चलिए मैं आज आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति मजदूरों की आवाज उठाते उठाते देश का राष्ट्रपति बन जाए तो पुनीत आप उसे क्या कहेंगे?
1: सुषमा, तो मैं उन्हें देश का सुपर हीरो, संघर्ष का सुपर हीरो कहूंगा।
0: जी बिल्कुल पुनीत, और ऐसे ही सुपर हीरो थे वरहागिरी वेंकटागिरी, जिन्हें हम वीवी गिरी के नाम से जानते हैं।
1: तो सुषमा, आजकल जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स बढ़ाने में लगे रहते हैं, लेकिन वीवी गिरी जी ने तो मजदूरों का विश्वास जीतकर इतिहास बना दिया।
0: जी बिल्कुल पुनीत, सही कहा। उनका जन्म 10 अगस्त 1894 को बहरामपुर में हुआ था। बचपन से ही वे पढ़ाई में बहुत ज्यादा तेज थे और आगे की पढ़ाई करने के लिए भी उन्हें आयरलैंड भेज दिया गया था।
1: यानी कि उस समय में भी विदेश में जाकर पढ़ाई करना उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी।
0: जी बिल्कुल पुनीत, लेकिन वहां उन्होंने सिर्फ पढ़ाई नहीं की बल्कि स्वतंत्रता और अधिकारों की लड़ाई भी करी और उनके विचारों से प्रभावित भी हुए।
1: तो आप कहना चाहते हैं कि वो विदेश गए थे डिग्री लेने, लेकिन लौटे देश का जज्बा लेकर।
0: जी बिल्कुल पुनीत, भारत लौटने के बाद उन्होंने मजदूरों के अधिकारों के लिए काम करना शुरू कर दिया था, और उस समय मजदूरों को बहुत कम सुविधाएं मिलती थी, इसलिए उन्होंने उनके लिए आवाज भी उठाई थी।
1: तो जिस प्रकार उन्होंने मजदूरों के लिए आवाज उठाई थी, तो क्या हम उन्हें एक यूनियन लीडर भी कह सकते हैं?
0: जी बिल्कुल पुनीत, कह सकते हैं। वे भारत के सबसे प्रतिभाशाली श्रमिक नेताओं में गिने जाते हैं। रेलवे कर्मचारियों सहित लाखों मजदूरों की समस्याओं को भी उन्होंने सरकार तक पहुंचाया था।
1: तभी लोग उन्हें मजदूरों का मसीहा कहते हैं।
0: उनके बारे में कई मजेदार तथ्य भी हैं।
1: सुषमा, क्या आप उनके जीवन का जुड़ा हुआ कोई रोचक किस्सा हमारे श्रोताओं को बताएंगे?
0: जी हाँ पुनीत, वीवी गिरी ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीता था।
1: तो आप ये कहना चाहती है कि बिना किसी बड़े राजनीतिक दल के साथ से जुड़े वे सीधे राष्ट्रपति बन गए?
0: हाँ, वे सीधे राष्ट्रपति भवन गए थे। 1969 का राष्ट्रपति चुनाव भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित चुनाव में से एक माना जाता है।
1: मतलब उस समय भी लोगों ने व्यक्ति की योग्यता को महत्व दिया था।
0: जी हाँ पुनीत,
1: एक छोटी कल्पना कीजिए श्रोताओं, अगर उस समय सोशल मीडिया का ट्रेंड होता तो वहां पर हैशटैग चलता, हैशटैग लेबर लीडर टू प्रेसिडेंट।
0: जी हाँ पुनीत, और लोग लिखते जिसने मजदूरों की सुनी है अब पूरा देश उसकी सुनेगा।
1: क्या बात है सुषमा, ये तो बहुत बढ़िया स्लोगन है।
0: जी हाँ पुनीत, उनका राष्ट्रपति बनने तक का सफर भी बहुत मजेदार रहा था। राष्ट्रपति बनने से पहले वीवी गिरी कई महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे थे।
1: तो श्रोताओं, हम सुषमा से जानते हैं वो कौन से महत्वपूर्ण पदों पर रहे थे।
0: जी पुनीत, जैसे कि वे उत्तर प्रदेश, केरल, मैसूर राज्य के राज्यपाल बने थे। इसके अलावा भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे थे।
1: यानी उन्हें प्रशासन, राजनीति और समाज सेवा तीनों क्षेत्रों का काफी अनुभव हासिल था।
0: हाँ पुनीत, और यही अनुभव उन्हें राष्ट्रपति पद तक लेकर गया था।
1: सुषमा जी, आज के युवाओं को उनसे क्या सीख मिलती है?
0: अनेक सीख मिलती है, जैसे कि किसी काम को छोटा मत समझो।
1: सही बात।
0: अगर कोई व्यक्ति किसी समस्या में है तो उनके लिए काम करो, उनका सम्मान करो।
1: और साथियों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये वीवी गिरी जी के विचार थे।
0: बिल्कुल पुनीत, वीवी गिरी ने कई वर्षों तक समाज की सेवा की, तब जाकर देश के संवैधानिक पद मिले थे।
1: तो सुषमा जी, क्यों ना एक छोटा सा क्विज हो जाए ताकि हम हमारे श्रोताओं को भी कुछ ज्यादा जानकारी वीवी गिरी जी के बारे में दे पाएंगे।
0: जी हाँ पुनीत, तो चलिए मैं आपसे पूछती हूँ पुनीत कि वीवी गिरी को किस वर्ग का सबसे बड़ा

0: हितेशी माना जाता था।
1: सुषमा, जिस प्रकार उन्होंने काम किया मजदूर वर्ग के लिए और अन्य वर्गों के लिए भी, तो उन्हें हम मजदूर वर्ग का एक हितैषी मान सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। वे भारत के कौन से राष्ट्रपति रहे?
1: वे भारत के चौथे राष्ट्रपति रहे थे और उनका जो राष्ट्रपति चुनाव था वो सबसे चर्चित चुनाव रहा भारत के इतिहास में।
0: अच्छा, तो बताइए कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान उन्हें मिला?
1: उन्हें भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था।
0: जी बिल्कुल। उन्हें अनेक सम्मान और उपलब्धियां भी प्राप्त हुई थी, जैसे कि 1975 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था।
1: श्रोताओं, यह सम्मान उनके राष्ट्र निर्माण और श्रमिक कल्याण में योगदान के लिए दिया गया था।
0: सही कहा पुनीत, वे केवल राष्ट्रपति नहीं थे बल्कि समाज के कमजोर वर्गों की आवाज थे।
1: अगर आज वीवी गिरी युवाओं से बात करते सुषमा, तो वो उन्हें क्या कहते?
0: वो तो यही कहते, सिर्फ अपने लिए नहीं समाज के लिए भी सोचो,
1: अधिकारों के साथ कर्तव्यों को भी याद रखो,
0: और शायद कहते कि मेहनत का कोई और विकल्प नहीं होता।
1: दोस्तों, वीवी गिरी का जीवन हमें बताता है कि एक साधारण परिवार का युवक भी अपने संकल्प और मेहनत से राष्ट्रपति बन सकता है,
0: और यह भी कि एक सच्चा नेता वही होता है जो सबसे कमजोर व्यक्ति की आवाज बने।
1: इसलिए वीवी गिरी जी सिर्फ भारत के राष्ट्रपति नहीं बल्कि मजदूर वर्ग के सच्चे साथी और युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे।
0: तो चलिए श्रोताओं, हमारी चर्चा यूं ही जारी रहेगी। अब सुनते हैं एक गीत।

0: चलिए श्रोताओं, अपने विषय पर आते हैं जो है हीट वेव, गर्मी से जंग समझदारी के संग।
1: श्रोताओं, अगर आजकल आपको लग रहा है कि सूरज ने धरती को अपना तवा समझ लिया है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं।
0: बिल्कुल पुनीत, सुबह 9 बजे ही ऐसा लगता है जैसे दोपहर के 2 बज रहे हों।
1: और बाहर निकलो तो गर्म हवाएं ऐसे लगती है जैसे किसी ने हेयर ड्रायर चेहरे पे चला दिया हो।
0: जी हाँ पुनीत, लेकिन मजाक से हटकर अगर हम बात करें तो आजकल बेहद महत्वपूर्ण विषय बन गया है हीट वेव, यानी कि लू, जिस पर हम चर्चा करेंगे।
1: तो सुषमा, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि हीट वेव आखिर क्या है।
0: जी पुनीत, जब किसी क्षेत्र का तापमान सामान्य से बहुत अधिक हो जाता है और कई दिनों तक लगातार गर्म हवाएं चलती हैं, तब हम उसे कहते हैं हीट वेव, यानी कि लू।
1: यानी कि ये जो गर्म चलने वाली हवाएं हैं या जो हीट वेव्स हैं, ये सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है।
0: जी हाँ पुनीत, भारत में हर साल हजारों लोग गर्मी से प्रभावित होते हैं, इसलिए जागरूक रहना बहुत जरूरी है।
1: तो सुषमा, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। अगर आपको गर्मी में एक चीज चुननी हो, मोबाइल या पानी की बोतल?
0: मुझे लगता है समझदार युवा पानी की बोतल ही चुनेगा।
1: क्योंकि मोबाइल की बैटरी खत्म होने पर चार्जर मिल जाएगा, लेकिन शरीर में पानी की कमी हो गई तो बड़ी परेशानी हो सकती है।
0: जी हाँ पुनीत, अब बात करते हैं युवाओं को कुछ आम गलतियां जो वो करते हैं।
1: सबसे पहली गलती, दोपहर में 1 बजे क्रिकेट खेलना।
0: और दूसरी, धूप में घूमना और कहना मुझे कुछ नहीं होगा।
1: और तीसरा, कि कोल्ड ड्रिंक को पाने का एक विकल्प समझ लेना।
0: और फिर पूरा दिन पानी न पीना और शाम को एक साथ 4 गिलास पानी पी लेना।
1: तो ऐसा बिल्कुल ना करें।
0: हीट वेव के अनेक लक्षण भी हो सकते हैं पुनीत।
1: तो सुषमा, हमें बताइए कि हीट वेव के कैसे लक्षण है और हम उन्हें कैसे पहचाने?
0: जी हाँ पुनीत, कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं जैसे कि तेज सरदर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, अत्यधिक थकान हो सकती है, शरीर का तापमान भी बढ़ सकता है, उल्टी या मतली आ सकती है, बेहोशी भी हो सकती है।
1: तो श्रोताओं, यदि ये लक्षण दिखाई दे तो तुरंत छायादार स्थान पर चले जाएं और डॉक्टर से संपर्क करें।
0: जी हाँ पुनीत, क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर का लगभग 60% हिस्सा पानी से बना हुआ होता है?
1: सुषमा, इसीलिए क्या गर्मियों में शरीर को लगातार पानी की आवश्यकता होती है?
0: जी हाँ पुनीत, यही कारण है कि डॉक्टर बार बार पानी पीने की सलाह देते हैं, चाहे प्यास लगे या ना लगे।
1: तो क्या सुषमा, गर्मी से बचने के लिए कोई देसी उपाय हैं जिन्हें हम रसोई से कर सकते हैं, या कोई रसोई के ऐसे सुपर हीरो?
0: जी बिल्कुल पुनीत, सबसे पहले जैसे कि छाछ है,
1: फिर नींबू पानी भी है,
0: नारियल पानी
1: या आम पन्ना,
0: और तरबूज, खीरा, खरबूजा जैसे मौसमी फल हैं।
1: यानी दादी नानी के जो नुस्खे हैं वो आज भी सुपर हिट हैं।
0: जी हाँ पुनीत, चलिए एक छोटी सी कल्पना करते हैं। सोचिए अगर सूरज बोल सकता तो क्या कहता?
1: शायद कहता, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, पेड़ तुमने काटे हैं।
0: अरे वाह, और यही एक बड़े

0: की ओर ले जाता, वो है जलवायु परिवर्तन।
1: सुषमा, वैज्ञानिकों का मानना है कि बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन के कारण हीट वेव की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है।
0: जी हाँ पुनीत, और इसलिए ही खुद को बचाना ही नहीं बल्कि पर्यावरण की रक्षा करना भी जरूरी है।
1: तो श्रोताओं, पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए,
0: पानी को भी बचाना चाहिए
1: और बिजली की अनावश्यक खपत को भी हमें कम करना चाहिए।
0: जी हाँ दोस्तों, युवाओं में ऊर्जा बहुत होती है लेकिन गर्मी में उत्साह के साथ सावधानी भी जरूरी है।
1: दोस्तों, दोपहर में 12 से 4 बजे तक अनावश्यक बाहर ना निकलें।
0: हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने चाहिए।
1: टोपी, छाता और सनग्लासेस का उपयोग आप जरूर करें।
0: और घर से निकलते समय पानी की बोतल साथ रखना ना भूलें।
1: तो सुषमा, क्यों ना एक छोटा सा क्विक फायर राउंड हो जाए जिसमें जल्दी जल्दी प्रश्नों के उत्तर देने होंगे।
0: जी हाँ पुनीत बिल्कुल।
1: तो पानी या कोल्ड ड्रिंक?
0: पानी।
1: छाछ या चिप्स?
0: छाछ।
1: पेड़ लगाना या सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना?
0: पेड़ लगाना।
1: 2 बजे क्रिकेट या शाम 6 बजे क्रिकेट?
0: जी 6 बजे क्रिकेट।
1: क्या बात है, बहुत शानदार आपने सभी जवाब हमें दिए।
0: दोस्तों, हीटवेव कोई साधारण मौसम नहीं है बल्कि एक गंभीर चुनौती है।
1: लेकिन थोड़ी सी सावधानी, सही खानपान और पर्याप्त पानी हमें सुरक्षित रख सकता है। सुषमा
0: जी हाँ पुनीत, और याद रखिए, गर्मी से घबराना नहीं है, समझदारी से मुकाबला करना है।
1: श्रोताओं, हमें खूब पानी पीना है, स्वस्थ रहिए और पर्यावरण को बचाइए।
0: तो चलिए चलते हैं थोड़ा मनोरंजन की ओर और सुनते हैं एक गीत।

0: तो चलिए दोस्तों, अब अपने विषय पर वापस लौटते हैं और नजर डालते हैं कुछ न्यूज हेडलाइंस पर।
1: भारत में हीट वेव पर नई रिपोर्ट, चौंकाने वाला दावा, क्लाइमेट चेंज बना सबसे बड़ा कारण।
0: 13 साल में इंडिया में हीट वेव के दिन डबल हो गए हैं। 2013 में 100 दिन थे, अब 200 दिन हो चुके हैं।
1: दिल्ली एनसीआर में भी बढ़ती गर्मी, लोगों को न जाने कब मिलेगी राहत।
0: मानसून ने पकड़ ली है रफ्तार, कई राज्यों में भारी बारिश, दिल्ली यूपी हरियाणा में भी आंधी तूफान अलर्ट।
1: बढ़ती हीट वेव के कारण दिल्ली में गर्मी का कहर, सड़कों पर पसरा सन्नाटा।
0: उत्तर प्रदेश में गर्मी से राहत, आईएमडी ने इन जिलों के लिए जारी किया अलर्ट।
1: मॉनसून की बड़ी रफ्तार, लेकिन उत्तर भारत में अभी भी नहीं मिलेगी गर्मी से राहत।
0: अल नीनो को लेकर WM की चेतावनी, बदल सकता है दुनिया का मौसम।
1: हीट वेव के कारण पूरे देश में लगातार गर्मी का माहौल बढ़ता जा रहा है।
0: तो श्रोताओं, चर्चा का विषय यही समाप्त होता है।
1: कैसा लगा आपको हमारा युवा उमंग कार्यक्रम? आकाशवाणी हिसार के फेसबुक पेज पर कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और आप यदि किसी नए विषय पर चर्चा चाहते हैं तो हमें फेसबुक पेज पर कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी हिसार 102.3 MHz पर। धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा उमंग FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त शाम के 7 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती किसाना से ती।

0: नरेंद्र भाई राम राम।
1: और अंजुबान आपने भी राम राम, और खेती किसाना सेती कार्यक्रम सुन वाले सारे बाण भाइया ने भी राम
0: राम
1: राम।
0: राम। नरेंद्र भाई, आज इस कार्यक्रम में आप बातचीत करेंगे कि खरीफ की फसलों में जो बीजों का चुनाव है, बढ़िया बीजों का चुनाव किस प्रकार तक कर सकते हैं किसान भाई। और दूसरी जो बातचीत आप बतलाओगे वो यह है कि बीजोपचार का महत्व क्यों है, क्यों बीज उपचारित बीजों का महत्व बताया जाता है किसान भाइयों को, और वैज्ञानिक क्यों कहे हैं बार बार कि आप जब भी किसी भी

0: बीज का बिजाई करें तो वो उपचारित बीज का ही इस्तेमाल करें ताकि आपकी पैदावार पे अच्छा असर पड़े।
1: बिल्कुल अंजुमान, देखो का अगर इलाज तो परहेज अच्छा, पहले
0: हाँ
1: अगर आप ये बीज का उपचार कर लेंगे तो अपनी जो फसल होगी वो बहुत बढ़िया होगी।
0: और सही बात है नरेंद्र भाई। और खरीफ के मौसम की जब आप बात करें, खरीफ की फसलों की आप बात करें तो उसमें जैसे कि धान, बाजरा, मक्का, मक्की, ग्वार, मूंग, उड़द, लोबिया, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, तिल और अरंड, इस प्रकार की फसलें शामिल हैं। और फसलों में अधिक पैदावार लेने के लिए सबसे जो जरूरी बात है वो है कि उत्तम बीजों का चुनाव। उत्तम का मतलब ये है कि अच्छी गुणवत्ता वाले बीज ताकि पैदावार अच्छी हो। और उपचारित बीज का मतलब होता है कि आप जो आपकी बिजाई करेंगे अपनी फसल में बीजों की, तो कम से कम आपकी लागत आएगी क्योंकि उसमें बीमारी और कीटों का प्रयोग कम से कम होगा।
1: बिल्कुल अंजुमान, आपने सही कहा कि देखो का इलाज तो परहेज अच्छा, मैंने शुरुआत में भी कहा था अगर आप बीजोपचार करके करेंगे तो आपका जो भी पौधा होगा वो बिल्कुल हृष्ट पुष्ट होगा, और जब वो पैदा हो जाएगा ना तो उसके बाद आपका जो फल आएगा वो बहुत बढ़िया तरीके का होगा।
0: जी, और देखो फसलों में अधिक पैदावार जो लेनी है तो उसमें उन्नत किस्म के बीजों के साथ साथ बीज का स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी है। इसमें कुछ फसलों में तो कुछ ऐसी बीमारियां आम हैं जो रोगग्रस्त बीजों के द्वारा ही पैदा हुए हैं, यानी कि आपने अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता वाला बीज और बीमारियों से रहित बीज का अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया तो वो बीमारी उस फसल में आवा ही आवेंगी। और अगर आपका बीज बीमार है तो फसल ने काफी नुकसान पहुंचेगा और इसके अलावा फसल की गुणवत्ता पर भी इन बीमारियों का बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए जरूरी हो जाए है नरेंद्र भाई की अच्छी पैदावार लेने के लिए अच्छी किस्मों के साथ साथ अच्छे बीज, रोग रहित बीज के प्रयोग करने की भी आवश्यकता है। और बीज को अगर आपने उपचार करना है तो उसमें लागत बिल्कुल ना के बराबर आती है, बहुत ही देसी तरीके हैं। आप अगर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं, उसका भी तरीका है बीजों को उपचारित करने का। और जो रासायनिक तरीके से खेती कर रहे हैं किसान भाई, उनके लिए भी बीज उपचार का उतना ही महत्व है।
1: और इसके लिए देखो कृषि विश्वविद्यालय आपको समय समय पर हिदायत भी देवे कि आपने किस तरीके से बीज का उपचार करना है, और अंजुमान तो आज है ना पूरा पिटारा लेके आई इसके ऊपर।
0: नहीं, ये देखो आज का जो विषय है अपना ऐसा ही है। देखो चाहे तो रबी की फसल हो चाहे खरीफ की फसल हो, अब आप भी अपने कार्यक्रम के माध्यम तो बता दे रहा वहां भैया ने कि या तो चाहे मिट्टी पानी की जांच हो, चाहे किस्मों का चुनाव हो, चाहे वो खेत की तैयारी हो, चाहे प्रबंधन की बात हो, चाहे वो बीज को उपचारित करने की बात हो, तो अपने जो कार्यक्रम का उद्देश्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार की जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाएं ताकि उनकी फसल को, उनके खेत को अच्छे से अच्छा लाभ दे सके। खेत में जैसे स्वस्थ उनकी मिट्टी का, स्वस्थ मिट्टी का निर्माण हो सके। और मिट्टी पानी की जांच भी इसी बात पर निर्भर है कि अगर आपकी मिट्टी कमजोर है कहीं से अपने खेत की मिट्टी, तो उसको किस प्रकार से स्वस्थ बनाया जा सकता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। मैं देखो जब तक अपनी अपनी मिट्टी की जांच करा के अपनी उसकी गुणवत्ता को बनाए के नहीं रखेंगे तो तब तक आप एक अच्छा बीजोपचार के साथ है ना आप अच्छी पैदावार नहीं ले सकते, और
0: जी
1: अच्छी पैदावार आप तभी लेंगे जब कृषि वैज्ञानिक आपके खेत के ऊपर वह आपने कितना खाद डालना है, कौन से खाद की कमी है, कौन से पोषक तत्व तो बहुत जरूरी है, कौन से पोषक तत्व तो आपके खेत में पूरे हैं, इन चीजों का बहुत महत्व है। और उन्हीं महत्व को देखते हुए हमने किसानों को उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता पड़ा करे।
0: जी अब बात आओ कि उत्तम बीज का चुनाव किसान भाई क्यों कर रहे हैं। वैसे तो देखो तजुर्बा बहुत ज्यादा है किसान भाइयों के पास और उन कर भी रहे हैं, आजकल पढ़े लिखे और जागरूक किसान है तो उनको और खेत का अनुभव बहुत सालों का है, पीढ़ियों दर पीढ़ियों का अनुभव उनके पास है, तो वो खुद भी बहुत सावधानी बरते हैं। लेकिन फिर भी कई बार मित्रता के नाते या रिश्तेदारी के नाते कई बार गलत चुनाव अगर बीज का हो जाए है, गलत जगह से बीज लिया जाओ है, तो उसमें फिर काफी नुकसान किसान भाई ने फसल के रूप में उठाना पड़ सके है।
1: बिल्कुल देखो अंजुमान, हम तो यही कहेंगे जो भी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा या दूसरे कृषि विश्वविद्यालय उन द्वारा जो भी अनुमोदित जो आपको बताया जाए उन्हीं बीजों को अगर आप अपने खेत में काम में लेंगे, और आपने कहा कि जो अपने जो किसान भाई है कई बड़े प्रगतिशील किसान है उनको भी इन चीजों की काफी नॉलेज होती है, तो आप उन सबका सहयोग लेकर के अगर अपने खेत में काम करेंगे और सही बढ़िया बीज लेके अपने खेत में बोएंगे तो अच्छी पैदावार आप में जरूर मिलेगी।
0: और प्रमाणित बीज का इस्तेमाल करें हमेशा, और हमेशा जो बीज ले हुए हैं वो कृषि विभाग, सरकारी संस्थाओं या प्रमाणित डीलरों से ही आप अपना बीज लेकर आवें, खरीद के ले आवें। और बीज लेने के साथ साथ जो भी चाहे बीज लें, चाहे दवाई लें, चाहे आप और कोई मिनरल मिक्सचर पशुओं के लिए लें, तो आप अपना पक्का बिल उससे जरूर लें ताकि कल ने कोई ऊंच नीच 19-20 हो जाए है तो आप उसके ऊपर अपना जो कंपनसेशन है, जो भी नुकसान की भरपाई है वो आप

0: ले सके।
1: बिल्कुल
0: और एक चीज और है, जब आप किस्मों का चुनाव करते हैं या बीजों का चुनाव करते हैं, जलवायु के अनुरूप और अपने क्षेत्र की जो मिट्टी है और मौसम के अनुसार ही किस्मों का चुनाव करें। और इसके लिए आपने बताया दिया कि जो भी सर्टिफाइड दुकानें हैं या विश्वविद्यालय है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है, या वैज्ञानिकों द्वारा जो भी रेकमेंड किए गए बीज हैं
1: बिल्कुल
0: उन्हीं का चुनाव करें, उसी जगह से चुनाव करें ताकि अच्छे पैदावार आप ले सकें। और बीज उपचार की जब आप बात करें तो बीज उपचार का महत्व, जैसे कि आपने शुरू में बातचीत करी थी कि किस प्रकार से क्यों उपचारित होने चाहिए बीज, ताकि कोई भी आ गए कीट बीमारी आपकी फसल में ला ना गए। अगर उपचारित बीज है तो फिर वही बात आज है, सावधानी बढ़िया है उपचारते तो परहेज बढ़िया है उपचारते तो सावधानी बरते हैं शुरू में ही। और नमक का घोल है जैसे बीज को किस प्रकार, या धान या बाजरा जैसी फसलों के लिए किस उपचारित बीज के लिए जो विधि है, 10 लीटर पानी में 1 किलोग्राम साधारण नमक घोले और इनमें बीजों को डाले, जो बीज तैरने लगे उन्हें,
1: अलग कर दें।
0: इसका मतलब वो स्वस्थ नहीं है,
1: बिल्कुल
0: उन्हें हटा दें, और नीचे बैठने वाले स्वस्थ बीजों को साफ पानी से धोकर सुखा दें। अंकुरण क्षमता होनी चाहिए बीज के अंदर, बीज साफ 80% से अधिक अंकुरण क्षमता वाले होने चाहिए। और इस प्रकार से, और नीम कोटेड जो होते हैं नीम से भी आप उपचारित कर सकते हैं, नीम के गोड़ से। और ये जो फफूंद नाशक के बाद कीटनाशक दवाओं से उपचार कर सकते हैं आप, ताकि शुरुआती कीटों से बचाव हो सके। तो और कुछ देसी तरीके भी हैं जो किसान भाई हमेशा अपनावे हैं कि फफूंद नाशक, कीटनाशक और कल्चर को भी कभी एक साथ न मिलाएं, और इसके उपचार के बाद 10-15 मिनट का अंतराल दें ताकि हमेशा, और इन बीजों का उपचार जब आप करते हैं तो इनको हमेशा छांव में सुखाएं।
1: हाँ, कई भाई बात देखे हैं कि आप हमें बहुत ज़्यादा गीला कर दे हैं और उसने छाँव में भी नहीं सुखाऊँ, तो आप उसमें देखो हाथ फेरते रहें ताकि आपका बीज में नमी भी बनी रहे और आपका बीज बहुत बढ़िया तरीके से, आप उसमें एक तो छटाव हो जाता है जब हाथ मारते हैं तो आपको पता
0: जी
1: चल जाएगा कि हमारा बढ़िया बीज कौन सा। और मान लिया थोड़ा बहुत, आपने शुरुआती दौर पर भी कहा था कि जो बीज ऊपर आ जाए उसमें अलग कर देंगे।
0: जी और बीजोपचार, मान लो जब बता दें थोड़ा हा कि खेती के एक, आजकल तो इसको वैज्ञानिक पद्धति के रूप में जाना जाओ है कि बीजोपचार पद्धति है, एक वैज्ञानिक पद्धति
1: बिल्कुल
0: जो बेहतर फसल उत्पादन का मजबूत विकल्प है किसान भाइयों के लिए। और बीज उपचार पद्धति अपनाकर किसान फसल को रोग मुक्त कर सकते हैं, उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी हासिल कर सकते हैं किसान भाई। और किसानों को सावधानी से बीजों का उपचार करना जरूरी है ताकि अनेक रोगाणु कवक, जीवाणु, विषाणु व सूत्रकृमि के जो भी लक्षण दिखे वो इनमें से हटाए जा सके, और इसकी वजह से बीजों की गुणवत्ता और अंकुरण के साथ फसल की बढ़वार, रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाए है, उत्पादकता और उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। और इसीलिए बीज भंडारण से पहले अथवा बुआई से पहले जैविक या रासायनिक अथवा दोनों के द्वारा, ये दोनों तरीकों से ही बीज को उपचारित करना जरूरी है।
1: कहने का मतलब अनीता, देखो जुबान आपने सही कहा है कि अगर आप बीजोपचार नहीं करेंगे ना तो आप एक अच्छी पैदावार नहीं ले पाओगे। जितनी बातें बताई गई हैं, पूरी हिदायत दी गई है, उनका पूरा अनुसरण करके अगर किसान भाई अपने खेत पर काम करेंगे तो आपको एक अच्छी पैदावार भी मिलेगी और अच्छी गुणवत्ता वाली फसल भी आपके खेत में पैदा मिलेगी,
0: जी
1: और जब अच्छी पैदावार होगी तो देखो भाई भाव भी अच्छा मिलेगा।
0: जी तो इन सब बातों का किसान भाई अगर ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप एक अच्छी पैदावार किसी भी फसल में, चाहे वो खरीफ की है चाहे वो रबी की है, और अच्छी किस्म का अगर आप चुनाव करेंगे तो चाहे वो फलों की खेती है, फूलों की खेती है, अच्छी पैदावार सब्जियों की खेती में भी किस्मों का चुनाव करना बहुत जरूरी है। और इस तरीके से किसान भाई खेती को एक लाभदायक व्यवसाय का रूप दे सकें।
1: अंजुबान आपने बात तो बहुत बढ़िया बता दी, लेकिन ये भैया का मनोरंजन कराना भी जरूरी है, तो
0: जी
1: सुनेंगे एक रागनी।
2: करे रा

0: नरेंद्र भाई, या तो भैया ने सुनी रागनी और आप बातचीत कर रहे थे कि बीज उपचार या बीजों के जो चुनाव है, बीजों की किस्मों का, किस प्रकार के उन्नत बीजों का चुनाव करना चाहिए, बातचीत करी थी आपा ने। और इसके साथ साथ एक बात और बतावांगे किसान भैया ने, मान लो कि अच्छे बीज का भी चुनाव कर लिया, उन्नत बीज का चुनाव कर लिया, बीज को उपचारित भी कर लिया, लेकिन खेत प्रबंधन पे भैया का ध्यान थोड़ा सा कम गया है, तो अगर वहाँ किसी भी प्रकार की जड़ ढील भाई ने बरत दी है, चाहे वो खेत की तैयारी है, चाहे वो फसल का चुनाव है। देखो, पहले तो बीज का चुनाव करने से पहले तो बात आव है कि आपने फसल का चुनाव करना है
1: बिल्कुल
0: कि कौन सी फसल आपने कौन से किल्ले में लगानी है, और उस किल्ले में फसल लगाने से पहला ये देखना है कि उस किल्ले में आज से पहले कौन कौन सी फसल ली जा चुकी है,
1: कहने का
0: और
1: मतलब है फसल चक्र अपनाना भी जरूरी है।
0: फसल चक्र भी जरूरी है और खेत प्रबंधन बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: खेत प्रबंधन में आप खेत की तैयारी से लेकर आप अपना, जैसे एक जो रिकॉर्ड हो है, कोई भी बिजनेसमैन है अपने सारे व्यवसाय का हिसाब किताब रखा है नरेंद्र भाई, कि मैंने आज इतना का फायदा हुआ।

0: पिछली बार इतना सामान ले आया था, इतना का बिक गया, इतना मेरा खर्चा हो गया, तो वो सारा जो लागत और खर्च का और
1: लेखा जोखा
0: आमदनी का
1: पूरा
0: जो
1: रखना।
0: लेखा जोखा है वो किसान भाई ने रखना पड़ेगा। इसी प्रकार पीछे आप एक कार्यक्रम में बातचीत कर रहे थे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सोयल हेल्थ कार्ड की बात कर रहे थे, वो भी एक तरीके से रिकॉर्ड है किसान भाइयों के पास। अगर किसान भाई अपने खेत का प्रबंधन अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है ये लेखा जोखा किसान भाई के पास होना चाहिए। यानी कि जब आपने मिट्टी की जांच कराई थी या आपने पानी की जांच कराई थी तो कौन से पोषक तत्वों की उसमें कमी थी, कौन से अधिकता में थे, तो वो रिकॉर्ड अगर आपके पास होगा और कौन सी फसल इस किल्ले पर ली थी, और जब आप उस फसल चक्र को बदलने की सोच रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इस फसल ये इस किल्ले में यह फसल आप लेने लग रहे थे, मान लो कपास लेने लग रहे हो इतने सालों से, और अगली बार आप इसने बदलाव करने की सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि कपास की खेती में लागत ज्यादा है या आमदनी कम है, या आप नई कोई पद्धति से कोई किसी भी प्रकार की खेती करना चाह रहे हो, तो भी आपने एक बार जो है अपने जमीन की या अपने पानी की ट्यूबवेल का जो पानी है उसकी जांच कराने की जरूरत पड़ेगी। ये तो है लेखा जोखा आपकी जमीन का, तो ये भी खेत प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कदम
1: हिस्सा
0: है,
1: है।
0: हिस्सा है इसमें। तो खेत प्रबंधन के का मेरा मतलब है कि आपको पहले से योजना बनानी पड़ेगी, कौन सी खेती करनी है, कौन सी फसल लगानी है, कौन सा किल्ला में लगानी है, और अगली बार कौन सी फसल लगानी है, क्योंकि पिछली फसल के जो शेष हैं या पोषक तत्व हैं वो अगली फसल पर भी उसका प्रभाव डालें।
1: बिल्कुल अनुपाण, आपने बहुत बढ़िया बात बताई और इतने ज्ञान ज्ञान की जो बात करी है, अगर इन सारी चीजों को आप अपना खेत पर अपना करके आप एक अच्छी कृषि के ऊपर काम करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाओगे और किसी भी तरह का आपको घाटा नहीं होगा, और आप एक अच्छे कृषक के रूप में आप दूसरों को भी ये चीजें बता सकेंगे।
0: प्लानिंग योजना की बात करी है, ये तो योजना का हिस्सा है। पांच हिस्सों में प्रबंधन को देखा जावे है, सारी दुनिया में जा कितने भी बात करें नरेंद्र भाई प्रबंधन की, तो पांच, चाहे वो खेत प्रबंधन है, चाहे वो फसल प्रबंधन है, चाहे वो कृषि क्रियाओं का प्रबंधन है, तो पहले तो योजना बनेगी, योजना के बाद उस योजना को छोटे छोटे भागों में बांटा गया होगा, फिर ये उस पर न्यू इस बात का निर्णय लिया जाओगा कि कौन सा काम कब करना है, किसके द्वारा करा जाओगा, कौन सी विधि अपनाई जाएगी इसमें। मान लो कि आपने डिसाइड कर लिया, निर्णय ले लिया कि इस किले में मान लो कोई मूंग की खेती होनी है या कोई सब्जी लगानी है आपने, सपोज करो मान लो आलू लगाने हैं आपने, और वो आलू लगाने के लिए आपने मिट्टी पानी की सही बढ़िया जांच करवा ली। उसके बाद फिर ये है कि इस आलू को कितने, मतलब इस आलू की फसल को फसने पकने के लिए, तैयार होने के लिए कितने हिस्से होंगे, मतलब कितने कदम इसको,
1: आगे बढ़ना
0: हाँ जी,
1: पड़ेगा।
0: कितने प्रकार के कृषि क्रियाएं इसमें करनी पड़ेंगी। उसके बाद फिर जो कार्य है उसको छोटे छोटे भागों में बांटा जाएगा, ये भी बताया उसमें कि कितनी लागत आओगी, कितना इसमें लेबर लगेगा, कितने घर के लोग इसमें शामिल होंगे काम करने में, और उसके बाद फिर वही फसल की कटाई का तरीका कौन सा होगा, फिर कि उसको जो मार्केटिंग की, जब
1: हाँ
0: मंडी में
1: बिल्कुल,
0: लेकर
1: मंडी
0: जाओगे तो उन किन
1: है,
0: बातों का
1: भंडारण
0: ध्यान,
1: है।
0: हाँ भंडारण किस प्रकार का, कई बार ऐसा होता है कि फसल आपके घर आ गई है तैयार होके, फसल पक के तैयार हो गई है, चाहे वो नकदी फसल है, चाहे वो कोई सब्जी की फसल है, चाहे कोई फ्रूट है। देखो फ्रूट तो जल्दी खराब होने वाला है, तो उसमें अलग प्रकार का प्रबंधन की जरूरत पड़ेगी, और फिर ये सारी कृषि क्रियाएं करने के बाद फिर वो मार्केटिंग की बात आओगी, तो ये सारा जो है ये प्रबंधन का हिस्सा है, खेत प्रबंधन में शामिल हुआ। तो मान लो आपने, ये तो एक छोटा सा भाग है कि आपने बीज का चुनाव कर लिया या जमीन का चुनाव कर लिया और फिर उसमें उपचारित बीज का, कई बार भाई सारा काम कर ले हैं, उपचारित बीज भी लगा दिया आपने, दवाइयों का भी छिड़काव कर दिया आपने, खाद प्रबंधन भी कर दिया, रासायनिक खाद है या जैविक खाद है, जिस भी प्रकार की विधि का आप इस्तेमाल करते हो आपने कर लिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो जो उम्मीद कर रहे हैं किसान भाई की, कार मैंने इतना मुनाफा हो जाएगा और ये सारा खर्चा जो है मेरा लिकट जाएगा इसमें, खर्चा खर्चा लिकटना जरूरी कौन नरेंद्र भाई, लाभ कमाना जरूरी है।
1: बिल्कुल लाभ कमाना, बिल्कुल बड़ी बड़ी बात है। देखो अगर आप घाटे का सौदा करोगे तो फायदा क्या होया। हर व्यक्ति चाहेगा कि मुझे लाभ हो, लाभ तभी होगा अगर आपकी सही योजना होगी
0: जी
1: हर तरीके से। चाहे आपने बाजार में मंडीकरण की बात हो, आपको पता होना चाहिए कि आपकी जिन्स का भाव ज्यादा से ज्यादा किस मंडी में मिलेगा, आप वहीं ले जाए। आपके पास ट्रांसपोर्ट का प्रबंधन सारा होना चाहिए हर तरीके से, और आपकी जब फसल वहां तक पहुंचे कोई खराब भी ना हो, उसके लिए कोल्ड स्टोर की बात हो चाहे दूसरी ओर प्रबंधन करने की बात हो, कहने का तात्पर्य कि आपने हर चीज के ऊपर बारीकी से काम करना पड़ेगा, और जब तक हम बारीकी से काम नहीं करेंगे ना तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे।
0: जी बिल्कुल सही बात है, आपने खेत की तैयारी से लेकर फसल का चुनाव और फसल की कटाई, भंडारण और मार्केटिंग के तक, यानी कि उसकी बिक्री के बाद भी जो प्रबंधन प्रक्रिया वो चलती रहती है ताकि अगली

0: हल्की फिर भिजाई की
1: बिल्कुल
0: बात शुरू हो जाए, तो आपको अपने खेत पर निगरानी रखने की जरूरत है। और जब तक फसल मंडी में नहीं पहुंच जाती, तब तक आपको सारी जो कृषि क्रियाएं हैं वो पारस

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती किसाना सेती, FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम ऑर्गन इंडिया।
1: दोस्तों, आप सुन रहे हैं AIR FM हिसार, और अब समय हो गया है ऑर्गन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार का।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: नमस्कार, मैं मीनू ऑर्गेन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में आपका स्वागत करती हूं। ऑर्गेन इंडिया दिल्ली की एनजीओ पराशर फाउंडेशन की पहल है जो अंगदान, उत्तक दान और देह दान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम करती है। आज के कार्यक्रम में हम अंगदान से जुड़ी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आए हैं।
2: आप सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार, मैं हूं आरजे सागर। आज टाइम जो शो आप सुन रहे हैं उसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। इसको आप लोगों तक पहुंचाने का श्रेय जाता है ऑर्गेन इंडिया को। दोस्तों, हम यानी कि ऑर्गेन इंडिया काम कर रहे हैं इस एक दिशा में कि हम ज्यादा से ज्यादा जागरूकता लोगों तक पहुंचा सके। आज हमारे साथ हैं हर्षवर्धन साहब। हर्ष साहब के बारे में बात थोड़ा सा आपको बताएं तो, किडनी रेसिपिएंट है यानी कि इनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और इन्होंने रिसीव करी थी। रिसीवर को रेसिपिएंट बोला जाता है। इनको किडनी दी थी इनकी माता जी ने। इनकी उम्र है 38 वर्ष। तो सबसे पहले स्वागत करेंगे हर्ष जी, आपका स्वागत है।
3: थैंक यू।
2: कैसे हैं आप?
3: मैं बहुत ठीक हूँ, आप बताइए।
2: मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। हर्ष, थोड़ा सा हमें अपने चाइल्डहुड के बारे में बताइए कि आप किस तरह के घराने में पैदा हुए, लाइफस्टाइल कैसा था उस परिवार का।
3: मैं

0: में एक छोटा जगह है दौसा के पास, मेरा गांव है भांडारे। तो मेरा जन्म वहाँ हुआ 1985 में। मैं एक राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, रेगुलर फैमिली होती है मेरी क्लास, उसी तरह का हमारा परिवार था।
1: फिर भी किस तरफ रुझान रहा आपका चाइल्डहुड से ही, क्या स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा था या एक सेडेंट्री बच्चे थे, किस तरह की चीजें थी?
0: नहीं, मेरी एक्चुअली फैमिली में सभी लोग तो आर्मी से जुड़े हैं या स्पोर्ट्स से जुड़े हैं। तो मैं भी, मेरे जब स्कूल टाइम था सबसे हैंडबॉल खेला करता था, तो स्पोर्ट्स तो शुरू से ही हमारे मतलब परिवार में ही रहा है।
1: तो बेसिकली स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आप आते हैं, तो एक्टिव आपकी लाइफ रही शुरू से ही, उस तरह थोड़ा रुझान ज्यादा रहा होगा फिजिकल वर्कआउट करना। तो काफी हद तक मैं ये यहाँ पर अंदाजा लगा सकता हूँ कि जंक फूड ये सब चीजें नहीं खाते होंगे, नहीं कंज्यूम करते होंगे आप।
0: अभी आज के समय में तो मतलब कुछ कुछ लोग खाने लगे हैं, लेकिन उस वक्त जब मेरा मतलब टीनेजर वाली एज थी, उस वक्त तो बड़ी रेस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी, अवॉइड ही करते थे।
1: ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके डायग्नोसिस से पहले के जीवन के बारे में जानना इसलिए ज्यादा जरूरी होता है कि हम लोग जो लिसनर्स इस टाइम आपको सुन पा रहे हैं, उन लोगों तक ये चीज जरूर पहुंचा पाए कि क्या क्या गलतियां होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं जो आमतौर पर हम लोग कर देते हैं, जिनको बाकी लोग अवॉइड करते हैं। तो कोई भी ऐसी गलती या मिस्टेक, या आप कह सकते हैं कि आपके एंड पर बॉल ड्रॉप हुई, जहां पर कोई चीज स्किप हुई, बता पाए जो हमारे लिसनर्स के काम आ पाए, तो इट वुड बी ग्रेट हेल्प।
0: मैं आपको बताऊं, मेरा जो डिजीज हुआ था ना, मैं बाई बर्थ मुझे एक ही किडनी था, और वो भी मुझे पता नहीं था, ना मेरी फैमिली को किसी को पता था। जब मैं 17 साल का था तब मुझे ऐसा ही बैक पेन हुआ, तो हमने हमारे डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कुछ टेस्ट कराए, तो उनको कुछ डाउट हुआ कि कुछ ना कुछ इशू है, तो उन्होंने फिर मुझे नेफ्रोलॉजिस्ट को रेफर किया। तब मुझे जाके पता लगा कि मेरे बाई बर्थ एक ही किडनी है, और वो भी मतलब धीरे धीरे श्रिंक हो रही है, और मे बी इन फ्यूचर वो बिल्कुल काम करना कभी बंद कर दे। तो कुछ लाइफस्टाइल डिजीज भी आप नहीं कह सकते हैं मेरे वाले केस में, लेकिन हाँ, बाकी जो आज की डेट में जो किडनी डिजीज यंगस्टर्स में हो रही है, उसके बहुत बहुत बहुत ज्यादा जो कारण है वो लाइफस्टाइल है, जंक फूड है, और आज की जो लाइफस्टाइल है, लोग बिल्कुल अपनी सेहत को ध्यान नहीं देते हैं, फिटनेस को नहीं देते हैं, तो वो एक कारण होगा।
1: जी। हर साहब, अगर मैं अगर आपसे बात करना चाहूँ, तो एक तो ये पॉइंट हुआ कि आप एक किडनी के साथ ही हुए थे, तो क्या मैं इसको रेयर ऑफ द रेयरेस्ट बोल सकता हूँ या कॉमन है ये?
0: नहीं, इसको रेयर आप बोल सकते हैं, कि हर, जैसा मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि हर 10 लाख में एक आदमी ऐसा होता है जिसके एक ही किडनी होती है।
1: ओके, क्या उससे हमारी बॉडी की फंक्शनलिटी में कोई फर्क पड़ता है?
0: नहीं, देखिए, इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी।
1: ओके,
0: जिनकी एक ही किडनी थी, उन्होंने अपना पूरा जीवन बहुत अच्छा, पूरी उम्र पाई, आई थिंक इन द एज ऑफ 80 उनकी डेथ हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि किसी की एक किडनी है तो उसको कोई फर्क पड़ता है, थोड़ा सा उस किडनी पर एक ही किडनी होगी तो उससे 2 किडनी काम करेंगी और एक सिंगल किडनी काम करेगी, तो लोड ज्यादा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत आपकी कोई थ्रेड है आपके लाइफ के ऊपर।
1: तो ये क्या कंडीशन थी जो डॉक्टर्स ने बोला कि आपकी किडनी श्रिंक हो रही है धीरे धीरे?
0: एक्चुअली मेरे केस के अंदर मतलब जेनेटिकली डेवलप नहीं हो पाई।
1: ओके,
0: तो जब मैं मतलब छोटा एज में था, तो इतना जितना जरूरत होती थी उतना किडनी ने काम किया, लेकिन उसका ग्रोथ नहीं हुआ। तो जैसे ही उम्र बढ़ी, जब उसको काम ज्यादा करना पड़ा, तब वो धीरे धीरे फिर खराब होना स्टार्ट हो।
1: 17 की उम्र में बैक पेन हुआ, टेस्ट कराया तो पता लगा एक किडनी है, यहाँ तक की कहानी हमको समझ में आ गई। उसके बाद का क्या प्रोसेस रहा ट्रांसप्लांट के पहले? और जी
0: देखिए, 2007 में मुझे पता लगा था मुझे एक ही किडनी है, तो जो मेरे डॉक्टर थे उन्होंने मुझे बताया कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, आप आराम से पूरी लाइफ इस एक सिंगल किडनी पे भी आप निकाल सकते हो, जस्ट आपको अपना लाइफस्टाइल जो भी है वो चेंज करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हाई स्ट्रेस का कुछ काम नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मेरे स्कूल टाइम हैंडबॉल खेला करता था, तो सबसे पहले तो मेरा गेम ही छूट गया। जैसे मुझे पता लगा, तो डॉक्टर ने सबसे पहले तो मुझे मना किया कि आपको इस तरह के गेम्स नहीं खेलने जिसमें बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस लेना पड़े, अपनी आपके बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा जोर है, किडनी को ज्यादा काम करना पड़े। मैं उसके बाद अब देखिए, मेरा जो ट्रांसप्लांट हुआ 2017 में हुआ, तो 2007 से 17 तक 10-11 साल तक मैं एकदम हेल्दी लाइफ मैंने जी, और शायद भगवान को यही मंजूर था कि 2017 में जाके मेरा वो जो किडनी थी वो बिल्कुल बंद हो गई, और डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि अब बात हो गया तो डायलिसिस करना पड़ेगा।

0: करेगा या ब्लड ड्रॉप्स करेगा।
1: तो बंद जो आपकी किडनी हुई काम करना, क्योंकि एक ही थी वाजिब सी बात है, कितना टाइम लगा उसको बंद होने में 2007 से लेकर जब तक वो फुल्ली ऑपरेशनल वे में बिल्कुल गायब हो गई वहां तक?
0: जी, तो आप देखिए 2007 से 2017 लगभग ये मेरे हिसाब से 10 साल से कुछ ज्यादा ही समय है कि 10 साल के बाद जाके वो उस कंडीशन आई। वो भी हो सकता है क्योंकि देखिए वो एज हम मेरी फिर ऐसी थी 17 साल के बाद वाली कि हम कॉलेज भी जाते थे तो कुछ कुछ स्टार्ट कर दिया अपना जंक फूड खाना भी, फ्रेंड्स के साथ पार्टीज करना भी। तो हो सकता है कि वो जो डिसिप्लिन जो लाइफ नहीं जी पाया वो अपने कॉलेज टाइम में, तो हो सकता है वो 10 साल में इसीलिए खराब हो गई।
1: ओके, तो 10 साल में आपके एंड पर आप कह सकते हैं कि डिसिप्लिन लाइफ आपकी पीछे छूट गई थी। क्या डॉक्टर्स ने आपका माइंड मेकअप किया था इस चीज के लिए कि एक पॉइंट ऐसा आ सकता है?
0: मेरे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने मुझे डे वन से ही मेरा माइंड मेकअप करना स्टार्ट कर दिया था। इनफैक्ट मैं जितने में हर 6 महीने में डॉक्टर्स को दिखाने जाता था तो वो मतलब हर बार थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके मुझे बता देते थे कि ये कंडीशन होती है, आपको मतलब ऑल्टरनेट जो थेरेपी है उसकी ओर जाना पड़ सकता है, या तो ट्रांसप्लांट पे जाओ या डायलिसिस पे जाओ, जो बिल्कुल बंद हो जाएगी। क्योंकि मेरे क्रिएटिनिन जो लेवल था 2007 में कुछ 1.23 था जब डायग्नोस हुआ, लेकिन वो ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए 4.5 तक पहुंच गया 10 साल में। तो जी, तब डॉक्टर्स ने बोला कि बोला आपको हो सकता है आपको बहुत जल्दी ट्रांसप्लांट करवाना पड़े या डायलिसिस कराना पड़े। मेरा माइंड मेकअप मेरा भी और मेरी फैमिली का भी ऑलरेडी डॉक्टर्स ने पहले ही कर दिया था।
1: सिम्टम्स जान सकता हूँ मैं, जब पूरा कंप्लीट फेलियर हुआ उस टाइम पे क्या सिम्टम्स आते थे आपकी बॉडी में?
0: देखिए ये बहुत मतलब ये लोग किडनी डिजीज को साइलेंट किलर बोलते हैं और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं ही हूँ कि मैं मुझे जिस दिन मैं ट्रांसप्लांट करवाने गया हूँ उस दिन तक भी कोई सिम्टम नहीं, और सिर्फ एक बार मुझे जो 2007 में पेन हुआ था वही वो सिम्टम आया था। शायद भगवान को वो मुझे बताना था कि भाई तेरे को ये इशू है और तेरे को अगर, बाकी 10 साल तक मुझे कोई सिम्टम आए नहीं किसी भी तरीके की।
1: तो बेसिकली आप मॉनिटरिंग कर रहे थे रेगुलरली, इसलिए आपको 2017 में पता लगा कि अब इसकी फंक्शनलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है, राइट?
0: जी।
1: हर्ष साहब, हम अपने शो के आखिरी फेज में हैं, अब थोड़ा सा पोस्ट ट्रांसप्लांट लाइफ के बारे में बताइए। अब कैसा जीवन है, कैसा महसूस करते हैं, जीवन को लेकर नजरिया बदला है नहीं बदला है, जो भी चीजें आप बताना चाहें।
0: देखिए ट्रांसप्लांट के बाद तो डेफिनेटली मैं बहुत अच्छा ही फील करता हूँ, क्योंकि एक फेज तो मेरी लाइफ में ऐसा आया था कि परिवार में एकदम डर का था कि अब इसका ट्रांसप्लांट हो रहा है क्या होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो अब ट्रांसप्लांट के बाद जो लाइफ है वो बहुत अच्छी है, मतलब फिटनेस की तरफ भी हम बढ़ गए हैं और एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। लाइफ स्टाइल जो चेंज मुझे अपनी टीनेज में करनी थी वो शायद मैं ट्रांसप्लांट के बाद अब कर पा रहा हूँ।
1: आपकी माता जी का जीवन कैसा है?
0: वो एकदम स्वस्थ हैं और अपने सारे रूटीन के जो भी काम है वो खुद ही अपने आप करती हैं, तो कोई किसी तरह का कोई मेडिकेशन उनका नहीं चल रहा है। अपना ऑर्गन डोनेट करने के बाद कुछ समय के लिए 3 महीने के लिए शायद चला था, उसके बाद से उनका कोई मेडिकेशन नहीं है, कोई उनको किसी भी तरह की कोई इश्यूज नहीं है डोनेट करने की वजह से।
1: जी, तो जी।
0: बहुत हेल्दी लाइफ जी रही है वो।
1: उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो ऑर्गन डोनेशन इस कॉज के बारे में जानना ही नहीं चाहते हैं?
0: देखिए हमारे देश में अभी इतनी अवेयरनेस है नहीं, अब जिस परिवार पे बीतती है ना शायद वही इस कॉज के बारे में जानना चाहता है ऑर्गन डोनेशन के बारे में, लेकिन एक कॉमन मैन तो उस बारे में शायद बात ही नहीं करना चाहता है। तो बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है शायद अवेयरनेस की हमारी कंट्री में, तो शायद जितना भी ये बैकलॉग है जो लोग इंतजार कर रहे हैं ऑर्गन की, अगर हम अवेयरनेस इसी तरह बढ़ेगी जैसे ऑर्गन इंडिया बहुत कर रही है बहुत अच्छा काम, अगर लोगों में अवेयरनेस आएगी तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कई लोगों को मेरे जैसे तो अच्छा जीवन मिल पाएगा।
1: जी, और ऑर्गन्स हमें डोनेट भी करने चाहिए। एक चीज मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि 8 लोगों को नया जीवन दिया जा सकता है एक इंसान जब इस दुनिया से जाता है अगर वो अपने ऑर्गन्स डोनेट करते, तो 8 लोग, और आप यकीन नहीं मानेंगे कितने लोग हैं जो हर साल अपना दम तोड़ देते हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि अब शायद इस वेटिंग लिस्ट में उनके नाम को वेटिंग लिस्ट से हटा दिया जाएगा, उनको ऑर्गन मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर शो को समाप्त करना चाहूंगा। हर्ष साहब, कोई भी ऐसी चीज जो मैं ना पूछ पाया हूँ और आप कहना चाहते हो कृपया करके प्लीज फील फ्री।
0: मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा आपके श्रोताओं को कि अंगदान के बारे में जागरूक हो, अंगदान के लिए आप प्लेज करें, अगर आपके जीवन

0: जीवन के बाद अगर किसी को जीवन मिल सकता है तो इससे बड़ा दान आपके जीवन में कोई नहीं होगा। आप कहीं भी की मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में कितना भी पैसा दे दें, लेकिन अगर आपने किसी जीवन दे दिया किसी को तो उससे बड़ा दान दुनिया में कोई नहीं है। तो आप अनुदान करें, ज्यादा से ज्यादा अनुदान करें।
1: एक टर्म यहाँ पर सर ने यूज करी है, दैट इज प्लेज। प्लेज एक फॉर्म होता है एक तरीके से, आप प्रण लेते हैं कि मैं अपने अनुदान करूंगा, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने परिवार को जरूर इत्तला दें, क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता है, वो इवेंट होता है और जब टीम आती है अंग लेने के लिए, अगर परिवार मना कर देता है, किसी भी तरीके से भी ऑब्जेक्शन रेज करता है, तो वो वैलिड नहीं माना जाता है। इसलिए प्लेज फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि आपके अंग निकाल लिए जाएंगे या मेरे अंग निकाल लिए जाएंगे अगर मैं प्लेज फॉर्म साइन करता हूं, तो उसका मतलब ये है कि मैं इस अभियान का हिस्सा बन चुका हूं। लेकिन जरूरी है कि इसके बारे में पता हो ज्यादा से ज्यादा लोगों को। हमारी वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं organindia.org, जाकर आप चेक कर सकते हैं प्लेज के बारे में। प्लेज अगर आप साइन करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना वो जो पेनफुल टाइम था उसको रीविजिट करने के लिए। थैंक यू सो मच, इट मींस अ लॉट टू अस।
0: थैंक यू सागर जी।
1: थैंक यू दोस्तों, अब इसी नोट पर आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, फिर मुलाकात होगी फिर लौटेंगे लेकर एक और शो। लेकिन तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खैरियत से रहें। नमस्कार, गुड बाय।
2: फिर लौटेंगे ऑर्गन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में। दोस्तों, अंगदान से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप ऑर्गन इंडिया की वेबसाइट organindia.org पर जा सकते हैं या उनके टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120 3648 पर संपर्क कर सकते हैं। अंगदान के बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सबको प्रेरणा दें।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: धन्यवाद। नमस्कार।
2: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं AIR FM हिसार और अब समय हो गया है ऑर्गन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार का।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम ऑर्गन इंडिया FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम महरे गांव के अंतर्गत गुलाब सिंह खांडेवाल की कुछ रागनियां।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
1: आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
2: बेटा बेटी जगदास की ओ से

दुष्ट पदार्थ दूर करोगे।

भाई मात पिता और बेटा बेटी जितने लोग व्यवहार

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे गांव के अंतर्गत गुलाब सिंह खांडेवाल की कुछ रागनियां FM 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 8 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस गीत के साथ जो हमने लिया है फिल्म 1942 ए लव स्टोरी से, और इस गीत को लिखा है कुमार सानू ने, और इसके संगीतकार हैं RD बर्मन। आइए सुनते हैं ये गीत।

आइए अब सुनते हैं, पापा कहते हैं फिल्म से ये गीत। इस गीत को गाया है उदित नारायण ने, संगीतकार हैं राजेश रोशन और लिखा है जावेद अख्तर ने।

आइए श्रोताओं सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म रहेगी राजा और इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। शब्द रचना है समीर की और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

आइए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत राजा हिंदुस्तानी फिल्म से। समीर ने लिखा है और संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने। गायक कलाकार हैं कुमार सानू और अलका याग्निक।

आइए श्रोताओं सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म कोई मिल गया से, और इस गीत को गाया है शान और कविता कृष्णमूर्ति और बेबी स्नेहा ने, लिखा है नासिर फराज ने और संगीत पद किया है राजेश रोशन ने।

साथियों, इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। रात्रि के 8:30 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का हिसार केंद्र FM बैंड 102.3 MHz पर। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम खुला आकाश के अंतर्गत कार्यक्रम हरियाणा के गलियारे से।

कार्यक्रम हरियाणा के गलियारे से इस कार्यक्रम में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा के गलियारे से ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपको रूबरू कराता है हरियाणा की समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और लोक परंपराओं और मेहनतकश लोगों से। साथियों, आप जानते हैं कि हरियाणा वह धरती है जहां कुरुक्षेत्र में धर्म और कर्म का संदेश दिया गया। हरियाणा का अर्थ है हरि और आना, मतलब भगवान का आना, जहां की मिट्टी में वीरता, सादगी और भाईचारे की खुशबू बसी हुई है। ये प्रदेश अपनी लोक संस्कृति, रागनियों, पारंपरिक खेलों, खेती किसानी और देश को दिए गए खिलाड़ियों व सैनिकों के लिए पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में जाना जाता है। साथियों, कहा भी गया है कि देसा में देस हरियाणा, जहां दूध दही का खाना, दूध दही का खान पान, रंग बिरंगे मेले, लोकगीत और यहां के लोगों का सीधा सादा जो स्वभाव है, हरियाणा की पहचान है। साथियों, हरियाणा की संस्कृति जितनी समृद्ध है उतने ही रंग बिरंगे हैं यहाँ के गीत और नृत्य। हरियाणवी फिल्मी गीतों में लोक संस्कृति की मिठास, गांव की खुशबू और जीवन की सादगी झलकती है। जब इन मधुर गीतों पर नृत्य की छटा बिखरती है तो दोस्तों देखने वालों का मन भी झूम उठता है। तो आइए आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपको सुनवाते हैं कुछ हरियाणवी फिल्मी गीत। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

0: साथियों, हरियाणा केवल एक प्रदेश ही नहीं है, बल्कि संस्कृति, परंपरा और वीरता और मेहनत का एक जीवंत उदाहरण है। यहाँ की मिट्टी में इतिहास की गूंज है, लोक गीतों में अपनापन है और लोगों के दिलों में अतिथि के लिए सम्मान है। यही हरियाणा की असली पहचान है।
1: हाय, क्या होया?
2: दर्द
1: किट हो गया?
2: उरे उरे

साथियों, इसी गीत के साथ कार्यक्रम हरियाणा के गलियारे से यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे राष्ट्रीय हिंदी समाचार, जिनका रिले हम करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और रात्रि 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के प्रसारण, और इस कार्यालय किया जाएगा आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र मुंबई से।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्र

0: की सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
2: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
3: The Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
0: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
4: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूह के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने

0: अल्बा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
1: थ्रू डेब्री फ्री मिशन मैनेजमेंट सिस्टम।
2: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देश भर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
3: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, NDRF, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से अभिरूप भट्टाचार्य जी।
2: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजाली स्थित पोसा में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन जो ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
4: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूँ। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहाँ राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की

0: उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
1: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरी और कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लक्ष्य में INS कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अंबरीश सक्सेना।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 94.66 पर बंद हुआ।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 से खेले जाएंगे। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम आपके लिए। मैं सभी सुनने वालों को सलमा का नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए आशा भोसले की आवाज में। नगमनिगार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं राहुल देवबर्मन और फिल्म का नाम है समाधि।

आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में अगला गीत। नगमा निगार है हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन और फिल्म का नाम है सूरज।

है तुमसे प्यार मुझे मेरे राजदार, जितने

0: विविध भारती पर आ रही है साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में, शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की, संगीत रचना कल्याण जी आनंद जी की, और फिल्म का नाम है इशारा।

आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में वो नगमा जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत है मदन मोहन का और फिल्म का नाम है पूजा के फूल।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए लता मंगेशकर की आवाज में। इंदिवर के बोलों को संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी ने और फिल्म का नाम सुन लीजिए हिमालय की गोद में।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, तर्ज है शंकर जयकिशन की और फिल्म का नाम है संगम।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में बाबूलाल चतुर्वेदी का प्रोग्राम था दिल्ली से।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने भी फोन किया, कहने लगे यहाँ हम डोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गाते नहीं, एक लाइन सुनाया जाता, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पूरे पकाए दूर के। मैं उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पूरे पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने कूदे प्याली में।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: आज के फनकार।

करिश्मा कपूर फिल्म इंडस्ट्री के एक बेहद सम्मानित कपूर परिवार की सदस्य हैं। परदादा पृथ्वीराज कपूर, दादा राज कपूर, पिता रणधीर कपूर और माँ बबीता की लाडली बेटी करिश्मा प्यार से पुकारी जाती हैं लोलो। वैसे घर में कोई इन्हें लोली माँ तो कोई लोला भी कहता है।

करिश्मा कपूर परिवार की ऐसी पहली महिला सदस्य हैं जिन्होंने फिल्मों में प्रवेश किया। हालांकि इससे पहले उनकी मां बबीता और चाची नीतू सिंह भी फिल्मों से जुड़ी थीं, लेकिन कपूर परिवार से जुड़ने के बाद उन्होंने फिल्मों से नाता तोड़ लिया। और जब करिश्मा ने फिल्मों में काम करने की बात अपने परिवार के सामने रखी तो उनकी ये बात मानने के लिए कोई राजी नहीं हुआ और तब उनका साथ दिया उनकी माँ ने और इस तरह करिश्मा आ गई फिल्मों में। तब उनकी पहली फिल्म आई प्रेम कैदी।

करिश्मा को अपने फिल्मी करियर को संवारने में उनकी माँ बबीता ने हर कदम पर उनका साथ दिया और करिश्मा ने भी अपनी मेहनत और लगन से साबित कर दिया कि फिल्मों में आने का उनका फैसला गलत नहीं था।

करिश्मा कपूर के शुरुआती फिल्मी करियर में आने वाली ज्यादातर फिल्में गोविंदा के साथ आईं और बाकी की फिल्मों में भी करिश्मा के डांसेज और खूबसूरती का करिश्मा उनकी एक्टिंग पर हावी रहा।

करिश्मा कपूर एक संवेदनशील अभिनेत्री हैं, ये बात बताने का मौका करिश्मा को नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो खुद भी कहीं ना कहीं ऐसे मौके की तलाश में थी और आखिर ये मौका उन्हें दिया श्याम बेनेगल ने। फिल्म थी जुबैदा।

0: अपने अभिनय का एक और रूप उन्होंने दिखाया शाहरुख और माधुरी के साथ, फिल्म थी दिल तो पागल है।
1: मुझको हुई ना खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर।

करिश्मा कपूर की कुछ और चर्चित फिल्में थीं अनाड़ी, खुद्दार, राजा बाबू, कुली नंबर वन, बीवी नंबर वन, शक्ति, राजा हिंदुस्तानी, साजन चले ससुराल। आइए सुने कुछ सुरीली झलकें।

हाय हाय मिर्चे, उफ उफ मिर्चे, उफ उफ मिर्चे, उफ।

करिश्मा के करिश्माई हुस्न और जादुई अदाकारी का दीवाना तो पूरा जमाना है, और शायद ये बात वो भी अच्छी तरह जानती हैं, इसीलिए फिल्मों से नाता तोड़ना वो भी नहीं चाहेंगे।

0: रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के लिए आलेख और स्वर अमरकांत का था। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई के प्रसारण, जिनका रिले आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से किया जा रहा था। एफएम एंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त रात के 10 बज चुके हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने।

दोस्तों, कहा जाता है कि कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, बल्कि जिंदगी के कई खूबसूरत पलों के साथी बन जाते हैं। समय बदलता है, दौर बदलते हैं, लेकिन अच्छे गीतों की मिठास हमेशा बरकरार रहती है। आज हम कार्यक्रम में लेकर आए हैं ऐसे ही चुनिंदा और यादगार फिल्मी नगमे, जिनकी फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हम तक भेजी है व्हाट्सएप के माध्यम से। साथियों, ये ऐसे गीत हैं जो कभी होठों की मुस्कान बने, कभी दिलों का सुकून बने और कभी पुरानी यादों का सहारा। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने। और सबसे पहले आप नोट कर लें हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9729253272, 9729253272। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस पहले मैसेज के साथ। इस मैसेज को हमें भेजा है संभाजी चौक सिडको न्यू नांदेड़ महाराष्ट्र से सुधाकर गायकवाड़, विकास गायकवाड़, प्रीति गायकवाड़, आशा, दीपांजलि, दीक्षा बागमारे, शशांक बागमारे। और साथ में इन्होंने लिखा है कि हम इंतजार में बैठे हुए हैं। तो सुधाकर गायकवाड़ जी, हमने आपका इंतजार खत्म कर दिया और कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपका जो मैसेज है हमने शामिल कर लिया है। इसी के साथ ही हमें अगला मैसेज प्राप्त हुआ है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। ये हमारे श्रोता हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से ये हमें संदेश भेज रहे हैं। ये हमारे श्रोता रहेंगे वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, और गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता का हमें संदेश प्राप्त हुआ है। ये हमारे श्रोता हैं बुलढाणा वडशिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभा ताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार, और बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमित कुमार का मैसेज हमें मिला है। और मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज काजल, सीमा,

मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलबीर सिंह, ये हमें सभी श्रोता मैसेज कर रहे हैं जिला मुरादाबाद ग्राम तुल्लाहपुर उत्तर प्रदेश से। इसी के साथ ही हमें मैसेज प्राप्त हुआ है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा, अमित कुमार राय, हैप्पी राय दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से हमारे श्रोता रहेंगे, प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय का मैसेज हमें मिला है। जॉन डिकैस्ट्रो, रोजे डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो, ये हमारे श्रोता हैं जनकपुरी सहारनपुर से, इन्होंने हमें मैसेज किया है। और बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी, जयश्री मेहत्रे, अंजलि करवा और बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टवूल, पीडी कुलथे का हमें संदेश प्राप्त हुआ है। मंडी आदमपुर बाईपास से रणधीर लटीवाल उर्फ धीरू भाई और परवीन बगड़िया और सुशील लाठीवाल का मैसेज हमें प्राप्त हुआ है। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र के श्रोता रहेंगे पीएस नाहवकर, निर्मला और विशाल नाहवकर। मलकापुर महाराष्ट्र से सोपान तायडे, नारायण इंगले और आशीष मुरहेकर का हमें मैसेज प्राप्त हुआ है। करणवीर हाउस भुच्चो कैंचिया बठिंडा पंजाब के हमारे नियमित श्रोता हैं प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन और अभिजोत इनके साथ हैं। और गांव फरासी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी का मैसेज हमें मिला है। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा का मैसेज हमें मिला है। और ये हमारे श्रोता रहेंगे गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह का मैसेज हमें प्राप्त हुआ है। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार, ईशान छिपा का मैसेज हमें प्राप्त हुआ है। और भोपालगढ़ राजस्थान से इनके नाम हमने शामिल कर दिए हैं। और इसके साथ अगले हमारे श्रोता रहेंगे आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, साइना और निवान शर्मा का मैसेज हमें मिला है। और ये हमारे श्रोता हैं ततरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा। आइए सुनते हैं इन सभी साथियों की पसंद पर लता मंगेशकर की आवाज में गाइड फिल्म का ये गीत।

साथियों, हार कर बैठ जाना जिंदगी का उसूल नहीं, नई शुरुआत करना ही असली हौसला है। जब दिल में फिर से सपने जाग उठें, तभी तो कहा जाता है कि आज फिर जीने की तमन्ना है। बढ़ते हैं अगले मैसेज की ओर। दुर्गा कॉलोनी हांसी से हमारे श्रोता हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू का मैसेज हमें मिला है। चरखी दादरी हरियाणा से नम्रता, खुशबू, खुशदीप प्रोग्राम में शामिल होते हैं और गांव चुल्ली देशवाली, जिला हिसार से मास्टर ओम प्रकाश गढ़वाल, डडोली से रघुवीर मंडेरना, मास्टर विनोद जाखड़, मास्टर इंद्र मोहन शर्मा और राम निवास पांडु का हमें मैसेज मिला है। सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा नाजिया, आफिया इब्राहिम, सद्दाम और अदीब गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से मैसेज कर रहे हैं। और इसी के साथ ही हमें मैसेज मिला है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जगवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज का मैसेज हमें मिला है। अजीत नगर मलोट पंजाब से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर और रौनक दीप कौर का मैसेज हमें मिला है। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गोड़ हमें संदेश भेज रहे हैं। और इसी के साथ ही हमें सेक्टर 18 जगाधरी, जिला यमुनानगर हरियाणा से विनय मोहन, मीनाक्षी पलोमा व डॉक्टर ईशानी का मैसेज हमें मिला है। और ये हमारे श्रोता रहेंगे जिन्होंने हमें मैसेज किया है। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे का मैसेज हमें मिला है। और ये हमारे श्रोता रहेंगे बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब पलक, लुगना और यश मंसूरी का मैसेज हमें मिला है। हमारे श्रोता लगातार हमें संदेश भेज रहे हैं। हम शामिल करते हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां का मैसेज इन्होंने भेजा है। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हमें संदेश किया है। और ये हमारे श्रोता रहेंगे गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार और रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा का मैसेज हमें मिला है। इसी के साथ ही हमें संदेश किया है।

हमारे श्रोता हैं एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी और किरण खुराना, लव्या आरव खुराना और एस के पप्पी का संदेश हमें मिला है। आइए सुनते हैं इन सभी साथियों की पसंद पर अमर फ्रेम फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में।

कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। साथियों, लोग हर बात पर अपनी राय देते हैं। आप कुछ करें तो भी बातें होती हैं और कुछ ना करें तो भी बातें होती हैं। इसलिए समझदार वही है जो सही रास्ते पर चलते हुए दूसरों की बेवजह बातों को

दिल से ना लगाए। बढ़ते हैं अगले मैसेजेस की ओर। मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद यासीन और शमसुल कमर राही का मैसेज हमें गंजडू डवारा से प्राप्त हुआ है। और इसी के साथ ही हमें ये मैसेज भेजने वाले श्रोता हैं हमारे लोको कॉलोनी लोहारू हरियाणा से बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार, बरखा, योगेंद्र कुमार चिंडालिया, नरेंद्र कुमार और सभी इनके परिवार के सदस्यगण हमें मैसेज कर रहे हैं। और इसी के साथ ही हमें मैसेज मिला है विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, गौरी सुरलकर, मोताला महाराष्ट्र से ये हमें संदेश भेज रहे हैं। और ये हमारे श्रोता रहेंगे रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जीएस नायक, शोभा नायक और समस्त इनके परिवार के सदस्यगण हमें मैसेज कर रहे हैं। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनम अब्बासी, अशफ अब्बासी, रसीद वारसी का संदेश हमें मिला है। गांव चौधरीबाद से राजू अग्रवाल, केशव दक्ष, प्रयाग प्रियंशी का मैसेज हमें मिला है। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब के हमारे श्रोता रहेंगे विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलमपुरी, रामा, पालीपुरी और सुनील पाठक हमें संदेश कर रहे हैं। और इसी के साथ ही हमें अगला संदेश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं गांव हीपर सोगा, तहसील लोसा, जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानू शेख, बाबा शेख, सिमर शेख और कृष्णा शेख ने हमें मैसेज भेजा है। गंजडू डवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी का संदेश हमें मिला है। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक हमें संदेश कर रहे हैं। और इसी के साथ ही मामूलवाड़ी महाराष्ट्र के श्रोता रहेंगे सोपान तायड़े, बसंत राव भोजने, पीएस नहवकर और तुषार करांगले का मैसेज हमें मिला है। लुधियाना पंजाब शिक्षित परीक्षित हमें संदेश कर रहे हैं। आइए सुनते हैं सभी साथियों की पसंद पर प्रेम रोग फिल्म का गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की युगल आवाजों में।

दोस्तों, भंवरे हमेशा फूल खिलाते रहें और आपका जीवन भी फूलों की तरह महकता रहे। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म सुहाना सफर से। आवाजें रहेंगी आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। पसंद किया है आप सभी ने। हमारे श्रोता हैं गांव जा खुद राजस्थान से, शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीप

दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक। इसी के साथ ही हमें मैसेज किया है हमारे श्रोता मंटू शर्मा, सोनू शर्मा, सुशीला शर्मा, लीलाधर शर्मा और सुशील वर्मा। इन्होंने हमें मैसेज भेजा है गांव शेरड़ा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से। मनाली हिमाचल प्रदेश से हर्ष, विनय, विनीत, रोजस और चंडीगढ़ से शेफाली, शेफी, डेविस, विमला और सतीश अनेजा का मैसेज हमें मिला है। हमारे श्रोता हैं अग्रोहा से महेंद्र सिंह हुड्डा, देवंती हुड्डा, नरेंद्र हुड्डा, अंकिता हुड्डा, सुमू हुड्डा, तानिया हुड्डा का मैसेज हमें मिला है। और इसी के साथ ही हमें ये मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किसुतासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत का मैसेज हमें प्राप्त हुआ है। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आजाद का मैसेज हमें मिला है। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा हमें संदेश लिख रहे हैं। और अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री घोड़के, यज्ञेश घोड़के, जिला छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से इन्होंने संदेश भेजा है। और अंभई तहसील सिल्लोट से ये हमें मैसेज कर रहे हैं। ये हमारे श्रोता हैं गांव पनिहार चक हिसार से विनोद टेलर, साहिल दहिया, कृष्णा कहना, लड्डू और ममता और इनके समस्त परिवार के सदस्यगण हमें मैसेज कर रहे हैं। और चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, विमला अनेजा का मैसेज मिला है। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से, विनोद खड़से का मैसेज हमें प्राप्त हुआ है। और ये हमारे श्रोता रहेंगे संदीप मक्कड़, मनोहर लाल गांधी, धर्मवीर दिल्ली वाले, कमल सहानी, जोगिंदर पाल मक्कड़, संजय, इन्होंने नाम लिखा है लेकिन ये हमें समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। और इसी के साथ ही हमें इन श्रोताओं ने मैसेज किया है पींगा वाला चौक गुराया जलंधर पंजाब से ये हमें संदेश भेज रहे हैं। और श्रोताओं से एक गुजारिश है कि कृपया करके वो हमें जो भी नाम भेजें वो स्पष्ट अक्षरों में लिखकर भेजें और थोड़ा सा बीच में गैप दें, स्पेस दें, ताकि हम अच्छे ढंग से उस नाम को हम पढ़ सकें। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू का मैसेज हमें मिला है। अमीर हुसैन, बेगम तैयबा शेख, फौजिया शेख, काहिल हुसैन, अरहान हुसैन और परिवार के सभी सदस्य ये हमें पटियाली रोड गंजू डोवारा से मैसेज कर रहे हैं। फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाडी खेड़ा, विशाल खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा और सभी इनके परिवार के सदस्यगण हमें मैसेज कर रहे हैं। और पदमपुर श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा का मैसेज हमें मिला है। इसी के साथ ही हमें मैसेज करने वाले श्रोता हैं छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबे पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश का मैसेज हमें मिला है। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह का मैसेज हमें मिला है। ये हमारे श्रोता रहेंगे पांढर कबड़ा से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे और धनश्री बुरांडे का मैसेज हमें मिला है। आइए सुनते हैं इन सभी साथियों की पसंद पर सुहाना सफर फिल्म का ये गीत।

साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने अपने रेडियो साथी अनिल भल्ला के साथ आकाशवाणी के हिसार केंद्र पर एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9792-53-272।

साथियों, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो खून के रिश्तों से नहीं, बल्कि विश्वास, अपनापन और साथ निभाने की भावना से बनता है। सच्चा दोस्त वही होता है जो खुशी में तो आपके साथ हो, लेकिन मुश्किल समय में भी आपका हाथ थामकर आपके साथ खड़ा रहे। दोस्ती की इस खूबसूरती और समर्पण को बड़े ही भावपूर्ण ढंग से दिखाया गया है। कार्यक्रम के अगले गीत में याराना फिल्म का दोस्तों ये गीत है और आवाज रहेगी किशोर कुमार की। ये फिल्म दो दोस्तों के अटूट रिश्तों की कहानी है, जहां दोस्ती किसी मतलब से नहीं बल्कि दिल से निभाई जाती है। और इस गाने की फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं, आप हैं झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। और इसी के साथ ही हमें ये मैसेज आया है नर्मदा पार्क मंगलवेढ़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। और इसी के साथ ही हमें फौजियों के गांव बांडा हेड़ी से मास्टर जगदीश चंद्र जांगड़ा, सतबीर हठी और कृष्ण और मुकारब टेलर सुरेंद्र पप्पू का हमें मैसेज मिला है। ये हमारे श्रोता रहेंगे जिन्होंने मैसेज किया है सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे, रेहान शेख का मैसेज हमें मिला है और रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर, जसपुर उत्तराखंड से ये हमें संदेश कर रहे हैं। और ये हमारे श्रोता रहेंगे जिला रतलाम मध्य प्रदेश से जगदीश धाकड़, नायमा श्रीमती रंजूबाई धाकड़ और युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ का मैसेज हमें प्राप्त हुआ है। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश और अपनी फरमाइश हमें भेज रहे हैं। धाड़ी नांदूरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्या बाठे का संदेश हमें मिला है। गांव हीरावाली फजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा का मैसेज हमें मिला है। और ये मैसेज हमें आया है, इन्होंने मैसेज किया है लदावली जिला मुरादाबाद से। हमारे साथी हैं अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना। कांकेर संबलपुर से फागुरान यादव, ज्योति यादव, जस्वी यादव का मैसेज हमें मिला है। और ग्राम पंजोनिया जिला जालौन से सत्येंद्र चंसोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसोलिया का मैसेज हमें मिला है। इसी के साथ ही हमें ये मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता रहेंगे बागपत उत्तर प्रदेश से ममता ढींगिया और कुणाल ढींगिया। सुनते हैं सभी साथियों की पसंद पर याराना फिल्म का ये गीत।

साथियों, हमें कुछ मैसेज और प्राप्त हुए हैं। हमारे श्रोता हैं सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली और सुरेश नारंग, और बावड़ी गेट भिवानी से रोशनलाल पचेरवाल, उमेश पचेरवाल, योगेश, कुलदीप, उपेंद्र, युवान, प्रेम खटक, धर्मवीर खटक, कार्तिक और कायत और सभी इनके परिवार के सदस्यगण और मित्रगण हमें मैसेज कर रहे हैं। हमारे नियमित श्रोता हैं गांव जेवरा हिसार से वीरेंद्र भ्याण, शमशेर भ्याण, सुरेंद्र, मनोज भ्याण और सभी इनके परिवार के सदस्यगण हमें मैसेज कर रहे हैं। और इन्होंने एक बहुत ही सुंदर सा मैसेज हमें लिखकर भेजा है कि दोस्ती में दिमाग मत लगाओ, ये दोस्त बार बार नहीं मिलते, क्योंकि बाजार में मिलता है सामान जरूरत का, जरूरत पर खड़े होने वाले यार बिल्कुल नहीं मिलते। तो वीरेंद्र जी, बहुत ही अच्छा संदेश आप

ने हमें लिखकर भेजा है। चौटाला हरियाणा से दारा पंडित संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा और राम कुमार भादु का मैसेज हमें मिला है और ये हमारे श्रोता हैं शेरवानी स्कूल गंजडू द्वारा उत्तर प्रदेश से, अफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबदा अंसारी और आलिया अंसारी का मैसेज मिला है। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से हमारे श्रोता हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल और घरोंडा करनाल से विजेंद्र कुमार जयजान जी हमें मैसेज कर रहे हैं। हिसार हरियाणा से ही हमारे श्रोता हैं रोहित, कुसुम, अरमान और सुहानी का मैसेज हमें प्राप्त हुआ है। राजधानी रायपुर से नीलू मेघ, नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार और पूरा परिवार इनका हमें संदेश भेज रहा है। निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, धनोरी, तेलीवाला से ये हमें मैसेज कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले मैसेज की ओर। दाऊद सराय सहारनपुर के श्रोता हैं अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सिर मुजक्कर साबरी और जरीफ फंसारी का मैसेज हमें मिला है। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, अफरीम कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा का मैसेज हमें मिला है। ग्राम कुष्टा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण होगाणे, योगिता हागोणे और कुमारी प्रियाली पार्थ और इनके समस्त परिवार के सदस्यगण हमें मैसेज कर रहे हैं। इसी के साथ ही हमें मैसेज भेजने वाले हमारे अगले हैं जो श्रोता रहेंगे वो हैं गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन और इनके परिवार के सदस्यगण हमें मैसेज कर रहे हैं। मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी का मैसेज मिला है और इसी के साथ ही हमें ये मैसेज मिला है। हमारे श्रोता रहेंगे मंडी हरजीराम मलोट पंजाब से, नथुराम शर्मा, ललित शर्मा, इंद्राज, सुरेश शर्मा और देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया, तुषार देव तामोरिया, डॉली बेबी, पूजा तामोरिया, राधिका और प्रभा देवी तामोरिया, मास्टर अल कबीर ये हमें मैसेज कर रहे हैं। कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोदा छत्तीसगढ़ से ये हमें संदेश भेज रहे हैं। इसी के साथ ही हमें सोनू रविराज गुलशन लक्की जालंधर सिटी पंजाब से हमें संदेश इन्होंने भेजा है और इसी के साथ ही हमें अगला मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता रहेंगे जैन मंदिर वाली गली कुरावली से रशीद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी का मैसेज हमें मिला है और ये हमारे श्रोता हैं मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक का संदेश हमें मिला है। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजया महोबिया, कविता, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, ईशु बाबा, सपना, शिवी, सलोनी और पेंटर बाबू का संदेश हमें मिला है। नेवासा खुपटी महाराष्ट्र से बंडू लोहार पोपलघट, माया शिवांश, चंद्रकला पोपलघट, देवीदास पोपलघट का हमें संदेश मिला है और ये हमारे श्रोता हैं मैसेज किया है इन्होंने। दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा का संदेश मिला है। गांव चौधरीवास से मांगेराम सतोड़ और इनके परिवार के सदस्यगण हमें मैसेज कर रहे हैं। बापू कॉलोनी अब्दुल्ला मस्जिद मध्य प्रदेश से बेबी शालिया डावर, बेबी हलीमा, बेबी जिक्रा और बेबी आयशा खत्री का मैसेज हमें मिला है। सुनते हैं इन सभी साथियों की पसंद पर कार्यक्रम का अंतिम गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

इनके साथ आवाज रहेगी मोहम्मद रफी साहब की, फिल्म रहेगी प्रोफेसर। साथियों, प्यार और अपनापन जब दिल में बस जाता है तो दूरी और समय भी उसकी यादों को मिटा नहीं पाते। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जीवन के हर मोड़ पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। चाहे मुलाकातें कम हो जाएं, लेकिन यादें हमेशा साथ रहती हैं। सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

दोस्तों, आप हमें जब भी आवाज देंगे हम चले आएंगे, लेकिन अब हमारे चलने का वक्त हो गया है। अब दीजिए इजाजत अपने साथी अनिल भल्ला को, और हमारा व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 9792-53-272। रहेगा इंतजार आपके सुझावों का, आपकी प्रतिक्रियाओं और आपके पसंदीदा गीत और आपके संदेश का हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार, शुभ रात्रि। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is really our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के

0: अरतला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकारी SSKM मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज AI आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और RFID सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार, जिनका रिले किया जा रहा था आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। FM 102.3 MHz पर आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। रात्रि के 11:05 हो चुके हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। प्रातः 5:51 पर हमारी आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।